फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे, मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, लोगो, जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ।

वही रात के अंधेरे से सुबह की रोशनी फाड़ निकालता है और उसी ने रात को मुझे आराम ठहराया और सूरज और चांद को जरिया शुमार बनाया है। ये अल्लाह के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं जो गालिब और इल्म वाला है।

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

listening. FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: 8 AM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Tuesday 23rd of Rabiul Thani, October the 6th, 2026. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister has approved the establishment of special farms to boost livestock exports. Pakistan has expressed its full support for the sovereignty, territorial integrity and security of Saudi Arabia. The United Nations Secretary General has arrived in Islamabad on a three-day official visit to Pakistan. The Chairman Senate says Pakistan looks forward to further strengthening parliamentary engagement with Bangladesh. 101 FM.
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
3: Government securities में invest करना है. आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है.
2: बैंक जाने की क्या जरूरत है? इन्वेस्टपार्क है ना?
3: इन्वेस्टपार्क?
4: जी हाँ, इन्वेस्टपार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें. ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार. इन्वेस्टपार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें.
3: इन्वेस्टपार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा.
5: दिस इज FM 101.
6: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मवेशियों की बरामदात में इजाफे के लिए खसूसी फार्म के क्याम की मंजूरी दी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सलामती के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। 19 साल से कम उम्र ख़वातीन खिलाड़ियों की सैफ अफ्रीकी T20 सीरीज में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश फैसलाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगे।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: आपके लिए FM 11 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक म्यूजिक
2: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक वन अबव FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

Non mancare, somma cum laude.

Dial now 111 111 FM.

आपके लिए FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक म्यूजिक।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अली से खबरें सुन रहे हैं। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में मवेशियों की बरामदात बढ़ाने की गर्ज से दरामद शुदा मवेशियों की अफजाइश के लिए खसूसी फार्म्स कायम करने की मंजूरी दी है। शुमाली वज़ीर-ए-आज़म में सिक्योरिटी फोर्सेज की खुफिया इत्तला पर मबनी कार्रवाई के दौरान 5 खवारिज हलाक हो गए हैं। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के 3 रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद में हैं, जिसके दौरान वो पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सिंध के गवर्नर ने कहा है कि ज़राअत मुल्की मईशत के लिए बुनियादी हैसियत रखती है।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम
3: फॉर लेटेस्ट न्यूज़ हेडलाइंस। आफ्टर
4: आपने एफएम 101 ट्यून किया,
5: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
6: आप सुन रहे हैं एफएम 101।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम एफएम वाले वन सुनने वाली तमाम खूबसूरत बातों को इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, जिंदगी के रंगों को खूब इंजॉय किया जा रहा होगा और उस इंजॉयमेंट में एफएम 101 को अपने साथ रखे हुए होंगे। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ आपके अपने आज जुबैर शफीक आपके अपने प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज में। लेडीज लाउंज में मेरा आपका साथ हुआ करता है हर मंगल की सुबह 11 से 1। करते हैं इस आत में बहुत सारी बातचीत, मौज मस्ती प्लस हल्ला गुल्ला through your comments, through your messages and through your calls. बहुत सारी गॉसिप होती है हमारी खवातीन के हवाले से, बच्चों के हवाले से, घर के हवाले से, घरदारी के हवाले से और इसके साथ साथ शॉपिंग के हवाले से। करते हैं वो तमाम बातें जो आपके दिल में हैं, करते हैं वो तमाम बातें जो कोई किसी से कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। हम कहते हैं हमारा प्लेटफॉर्म है ना, आए और कह जाए लेकिन तहजीब के दायरे में रहते हुए, समझ रहे हैं ना, तहजीब के दायरे में रहते हुए। एद्रो में प्रोग्राम शुरू किया, कौन कॉल कर रहा है मुझे, क्यों कॉल कर रहे हैं आपको नहीं पता, अभी मैं कॉल अटेंड नहीं करूंगी। तो क्या कहते हैं आप, कहते ये हैं कि आज है जी 6 अक्टूबर और अक्टूबर का महीना आ गया, पत्ते झड़ने का मौसम है। हेलो, ये पत्ते झड़ने का मौसम है ना, पत्ते उगने का, नए पत्ते आने का, बहार। तो पत्ते झड़ते कब कब है, सितंबर में, दिसंबर में, अक्टूबर में नए पत्ते आने हैं जी और दिसंबर में वो झड़ जाने हैं जी। यही जिंदगी है, कुछ लम्हों का साथ होता है और उन लम्हों के साथ को अगर अच्छे से ना गुजारा जाए तो झड़ तो जाना ही है। लेकिन यहाँ पे मेरा नेट क्यों नहीं आ रहा। एनीवेज एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे मैं अपनी पोस्ट अपडेट कर चुकी हूँ, उस पर कॉमेंट करके हमारे साथ रहिएगा, बताइएगा कि आप कहाँ से सुन रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, मैसेज करने के लिए जाना है मोबाइल की राइट ऑप्शन में, 101 स्पेस नाम पैगाम सेंड कर देना है उसको 4471 पे, 4471 पे भेजे गए पैगाम जो हैं वो मुझ तक पहुंच जाएंगे और मैं उनको ऑन एयर शामिल करूंगी। जो लोग मुझे लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं जुबिया शफीक के पेज से। बढ़ते हैं एक अदद ब्यूटीफुल से कलाम की तरफ और फिर वापस आते हैं, आके करते हैं मजीद बातचीत। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आपने करनी है वो क्या करनी है, आपने मुझे कॉल करनी है 04221100101, लेकिन अभी कॉल नहीं करनी, कॉल करेंगे आप मुझे 12 बजे के बाद, क्योंकि 12 बजे के बाद ही मैं आपकी कॉल्स लूँगी, उससे पहले तो ऑफ या शायद कोई एक दो कॉल ले लूँ, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं है। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही मजे वाला होने वाला है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं, खासकर खवातीन का प्रोग्राम है ना, तो खवातीन के प्रोग्राम में खवातीन की बात जब तक ना करें वो बात अधूरी रहती है। ये अलग बात है कि खवातीन के प्रोग्राम में अक्सर ज्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं मर्द हजरात। नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, आप ये सही नहीं कह रही हैं, आप हमारा जो एक्सपेंस है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं ये सब बातें कहने के लिए। तो भाई लोग भी आ जाएं, मैसेजेस करें, स्टिक अराउंड।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: आप सुन रहे हैं FM 101।

वेलकम बैक टू दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो. इट्स मी जुबैर शफीक. आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज. और लेडीज लाउंज में मेरा आपका साथ हुआ करता है हर मंगल की सुबह 11 से 1. आज के प्रोग्राम की मैं कह रही थी कि एक खास बात यह है कि खवातीन के हवाले से जो है ना वो हमने थोड़ी सी बात करनी है. हमने बात क्या करनी है, हमने बात ये करनी है कि खवातीन कहा जाता है कुछ खवातीन के बारे में ये मशहूर है कि वो थोड़ी सी एक्सप्रेसिव होती हैं. वो चीज़ों को एक्सप्रेस कर देती हैं और वो चाह रही होती है सामने वाला बंदा भी एक्सप्रेस करे, यानी कि वो उनकी तारीफ़ करे. अगर वो अच्छी लग रही हैं, उन्होंने कोई काम किया है, उस काम के हवाले से जो है उनको सराहा जाए. और इसके साथ साथ उसका कुछ उनको फ़ायदा भी हो ना, इन दी सेंस ऑफ शॉपिंग. अगर उन्होंने कोई घर में काम किया और वो काम किसी को पसंद आया, कोई खाना बनाया वो खाना उनको पसंद आया, तो फिर क्या हो, फिर हो ये कि उनको एक पार्टी दी जाए और उस पार्टी में उनको अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेकर दिए जाए, उनको अच्छे अच्छे जूते लेकर दिए जाए. उनको आजकल तो भाई इतनी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग का दौर है, और टिकटॉक हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, आप कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म देखो, वहाँ पे ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं. और उन ऑनलाइन चीज़ों में ख़वातीन जो हैं वो दर्जे अव्वल पे आती हैं जो ऑर्डर कर रही होती हैं. अब मर्द हजरात जब बेचारे घर को आते हैं तो उनको पता चलता है आज खाना बहुत अच्छा बना है. जब खाना बहुत अच्छा बन जाता है ना, फिर वो कहते हैं वाह आज तो बहुत अच्छा खाना बनाया. फिर वो कहती है अच्छा चले, फिर ना मैंने क्या किया भला, मैंने एक ऑर्डर किया है सूट और वो बाज़ार से तो इतना महंगा मिल रहा था, लेकिन यहाँ जो है ना वो गेट 1/1 फ्री में मिल रहा है, डील लगी हुई है. उस डील में ले दें एक मेरे लिए, एक आपकी बहन को या आपकी अम्मा को ले दूंगी. तो बहन और अम्मा को जब लेकर देने की बात होती है वो कहते हैं चले कोई नहीं, एक तीर में दो शिकार हो जाएंगे, तो ले देते हैं. बाद में बेचारे को पता चलता है कि ये तो हैंड हो गया, ये तो बाजार से और भी ज्यादा सस्ता था, और ये जो डील है ना ये एक के बजाय तीन में मुझे निकल गई. ऐसा होता है ना. वैसे आप रिलेट कर रहे हैं ना मेरी बात से. आज अच्छा हमारे एक लिस्नर हैं, उनका मुझे अब नाम शायद इजाज़ साहब हैं, वो अक्सर कहा करते हैं, कहते हैं आप खर्चा बढ़ाने की बातें करती हैं अक्सर. आज मैं वैसे खर्चा कम करने की बातें कर रही हूँ. बच्चों के जी स्कूल शुरू हो चुके और उसके बाद उनके कुछ स्कूल्स में जो है वो फर्स्ट टर्म चल रहा है और कुछ स्कूल में सेकंड टर्म चल रहा है, लेकिन ये है कि टर्म चल रहा है कोई ना कोई, या फर्स्ट चल रहा है या सेकंड चल रहा है. सेकंड ईयर वालों का रिजल्ट आ गया, फर्स्ट ईयर वालों का भी रिजल्ट आना है. सेकंड ईयर वाले जिनको रिजल्ट आ गया अब वो कोई दो दो महीने के शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो सिलाई सीख रहे हैं, बच्चियां जो हैं वो सिलाई सीख रही हैं, और कुछ कंप्यूटर, कुछ खानादारी, कुछ बेकिंग, मतलब इस तरह के बहुत सारे मामला चल रहे हैं ज़िंदगी में. और जहाँ इतने सारे मामला चल रहे हैं ना, वहाँ एक मामला ये भी चल रहा है कि मौसम का कोई पता नहीं चल रहा. दो दिन लगता है कि सर्दियाँ आ गई फुल टाइम, और उसके बाद तीसरे दिन जो है ना वो फिर दोबारा से वैसा ही मौसम हो जाता है. आप जी मुझे लाइव पे ज्वाइन कर सकते हैं, ज़ुबैर शफीक के नाम से पेज है, वहाँ पे जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइव शो में आ सकते हैं. इसके साथ साथ एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे आप जा सकते हैं, और ऑफिशियल पेज पे जाके आपने भला क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने कमेंट करना है. एक्चुअली जैसा दौर हो गया है ना, जैसी चीज़ें चल गई हैं, जैसी चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ पे अगर किसी ने पिकनिक पे जाना हो, क्योंकि ये आगे आने वाला जो ये मौसम है इसमें अक्सर दिल करता है कि आप कहीं घूमने जाओ, आप फिरने जाओ, लेकिन हालातों वाक़यात ऐसे हैं कि जिसमें अकेला बंदा जो है ना वो इस पर सर्वाइव नहीं कर सकता. अगर आपके पास गाड़ी है तो अपने दोस्त को कहें कि जी आप फ्यूल डलवा लें, मिलजुल के जो है ना वो हम घूम फिर लेंगे. क्योंकि इस तरह आसानी हो जाएगी, जिंदगी भी आसान हो जाएगी और सफर भी आसान हो जाएगा. आजकल तो मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ ने भी जाना है ना, तो जो ये जो वाइफ को आप खर्चा देते हैं ना, कहो पेट्रोल डलवाओ, कहीं कहाँ से मैं महीने का खर्चा देता हूँ ना, अपनी पॉकेट मनी जो है वो खर्च करो. नदीम अब्बास को शामिल कर रही हूँ. तेनू प्यार हो गया,
हमारे साथ साथ रहिएगा, पॉकेट मनी जो है वो खर्च करो। नदीम अब्बास को शामिल कर रही हूँ।

वेलकम बैक, दिस इज एफएम मोनावला हॉय लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबे शफीक। 11:26 हो चुके हैं और क्या मैं बात कर रही थी, मैं बात ये कर रही थी कि आपने मुझे लाइव पे मुझे ज्वाइन किया मोहम्मद तारिक साहब ने, कहते हैं आज लग रहा है कि पूरा पूरा इरादा है आपका खर्चा बढ़ाने का। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज देखें, आज मैं आपके हक में बात कर रही हूँ, आज मैं कह रही हूँ

मिलजुल के चले ना। आज मैं बेगमाद का खर्चा बढ़ाने के चक्कर में हूँ, ये अलग बात है कि वो खर्चा तो आपसे ही आना है। अच्छा जी, अमरजा चौधरी साहब आ गए, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने का। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हमारा बेग को सलाम कहते हैं। अच्छा जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, फिट फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिद खान हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस शो, थैंक यू जी। अमरजा चौधरी साहब हैं, सलाम किया सबको। ओके, शमसी रेडियो लिस्टर क्लब की तरफ से मोहम्मद नईम टेलर हमारे साथ हैं, हमारी पूरी टीम को आप सुन रहे, हमारी टीम मैं पढ़ने लगी थी, हमारी पूरी टीम को आप सुन रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी टीम आपको सुन रही है, गुड आरजे, थैंक यू जी। रेहाना खान बकर से हमें सुनती हैं, बहुत शुक्रिया। फरी आपी को सलाम कह रही है, मोहम्मद तारिक, थैंक यू जी, पहुंच गया आपका सलाम। शमीम आपी को भी सलाम कहते हैं, तमाम खूबसूरत समातों को भी कहते हैं। ओके हो गया, बस एक सलाम नहीं कहा आपने तो मुझे नहीं कहा, दुनिया पूरी को सलाम कह दिया। नहीं, मुझे भी कहा है। कहती है अस्सलाम वालेकुम ज़ुबिया अभी, क्या हाल है? अल्लाह आपको सलामत रखे और हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। एम रमजान सिराज हमारे साथ है जैज रेडियो पर, ठीक हो गया। कहते बहुत शोर आ रहा है जैज रेडियो पर 101 की नश्रिया, जैज रेडियो भी कोई होता है? अच्छा अब देखते हैं हम कि क्या है इधर। अकबर खान है हमारे साथ जी, कहते हैं हर थका हुआ दिल मीठे लफ्जों का मुंतजर होता है, मुआशरे में कहत सिर्फ रोटी का नहीं एहसास का भी है। अच्छी बात की आपने। कराची से हमें सुन रहे हैं इफ्तखार अहमद हमारे साथ हैं जी, पढ़ती हूँ इफ्तखार आपका मैसेज। तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि एक्सप्रेसिव होना, अपनी बात को दूसरों तक कन्वे करना, कह देना, आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छी आदत है या फिर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए? अगर कोई इंसान एक्सप्रेसिव है तो उसको किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, और अगर कोई इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है तो फिर उसको रिलेशनशिप में कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है? आप एक्सप्रेसिव हैं या नहीं है ये भी मुझे बताइएगा। एक्सप्रेसिव इन द सेंस, आपको किसी भी रिश्ते में, बहन भाइयों का रिश्ता हो गया, आपके फैमिली का कोई रिश्ता है, कोई भी रिलेशनशिप है, उसमें अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आपने कह देना है कि मुझे पसंद नहीं आ रही, और अगर पसंद आ रही है तो आपने कह देना है कि मुझे पसंद आ रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, कुछ लोग ऐसे मीसने होते हैं ना, उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती लेकिन फिर भी वो जाहिर कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं सही है, ओके है, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुट रहे होते हैं। और फिर इसका नतीजा क्या होता है, एक्सप्रेसिव ना होने का मुझे लगता है नतीजा एक बहुत बड़ा होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ें अंदर ही अंदर रह के घुटन बहुत ज़्यादा भर जाती है, जो हम अक्सर बात करते हैं कि घुटन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और घुटन वो सिर्फ अंदर ही अंदर नहीं होती, वो रिश्तों में भी पैदा हो जाती है। खामोशी जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं उस रिश्ते को कहीं ना कहीं ख़त्म कर रही होती है। ये अलग बात है कि हम शुरू में समझ नहीं रहे होते, ये जो हम कहते हैं ना एकदम से रिश्ता ख़त्म हो गया, वो एकदम नहीं होता, उससे पहले बहुत सारे साइन होते हैं, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि सामने वाले इंसान को आपकी कोई बात बुरी लगी और आपको पता नहीं चला, आपको उसके एक्सप्रेशन फील हो जाते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। असद जाने बिलो देकर देखा, फिर पेट्रोल की बात कर रहे हैं, वो कहना है टिकट कटाओ लाइन बनाओ, यानी कि पैसे दो, मैंने पेट्रोल डलवाना है। ज्वाइन कीजिएगा जी एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे, जाइएगा, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, अमरजा चौधरी साहब आ गए, बहुत शुक्रिया जी। ज्वाइन करें हमें एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे, जाएं, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कॉमेंट करें, कॉमेंट करके मेरे साथ शामिल हो जाएं, और जिस जिसने साथ जाना है ना, बस ठीक है, लाइन बना लो फिर।

असा ते जाना है बिलो दिखाए किने किने जाना है बिलो दिखाए दसो जरा जी आपका अपना प्रोग्राम लेडीज लाउंज और 11:37 हो चुके हैं। आज मैं बात कर रही हूँ कि एक्सप्रेसिव होना यानी कि अपने जज्बात का इजहार कर देना, अपने दिल में आप जो सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, आप अगर किसी को बता देते हैं या रिश्ते को चलने के लिए, रिश्तों को अच्छा चलने के लिए एक्सप्रेसिव होना जरूरी है या फिर खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, या फिर उस इंसान की बात को अगर बुरी भी लगी है तो नजरअंदाज कर देना चाहिए, या फिर अगर कुछ बुरा लगा तो फिर वो बता देना चाहिए, कुछ अच्छा लगा तो बता देना चाहिए, ये मुझे आपने ज़रूर बताना है। अच्छा, एक और चीज़ में जो आपसे कहना चाहूँगी या मेरे जहन में जो चीज़ आ रही थी, मैंने कहा था कि इस पर भी बात करेंगे। बाज़ दफ़ा इंसान ने बहुत कुछ सोचा होता है ना अपनी ज़िंदगी में, इंसान ने अपनी एक प्लानिंग की होती है, एक प्लान इंसान का खुद का होता है, एक प्लान होता है अल्लाह ताला ने उसके लिए मुंतखब किया होता है और वो प्लान चल रहा होता है। अब आपकी तरफ ने आपने नेक्स्ट 3 मंथ की, 4 मंथ की, 5 मंथ की एक प्रोसेस किया होता है, एक प्लानिंग की होती है कि मैंने इस तरह से ज़िंदगी को गुजारना है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में करनी है, अब नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होने वाला है, नेक्स्ट मंथ से मैंने ये काम पे जो है ना फोकस करके इसको शुरू कर देना है। एकदम से कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो प्री प्लान नहीं होती है, जो प्लान से टोटली अपोजिट साइड पे जाती है और आप कहते हो कि ये इस एक चीज़ की वजह से मेरी सारी प्लानिंग जो है ना वो धरी की धरी रह गई है और आप कहते हो कि यार अब मैंने तो ये सारी चीज़ें करनी थी लेकिन अब ये जो एक मामला हो गया है इसकी वजह से तो सारा मामला ही ख़त्म हो गया है, सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। उस टाइम पे आप क्या करते हैं भला? उस टाइम पे क्या आप खुद को किस्मत के आसरे पे छोड़ देते हैं या फिर जो चीज़ चल रही है उसकी तरफ उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं कि ठीक है वक्त के साथ साथ अब चीज़ें जिस तरफ मोड़ होंगी करते जाएंगे, या फिर उसकी ओपोजिट डायरेक्शन में जाके क्या करते हैं आप, ओपोजिट डायरेक्शन में जाके आप स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं चीज़ों को बेहतर करने की, और दोनों सूरतों में सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे लगती है, आपको क्या लगता है कि आप में क्या स्टैमिना है? बाज़ दफ़ा होता है कि जो आपने सोचा है वैसा नहीं हुआ तो फिर आप फिर उसको करने के लिए मेहनत करेंगे या फिर ऐसा होगा कि आप कहेंगे ठीक है जो हो रहा है इसके साथ चलते हैं ना। ये भी मुझे बताना है, पोस्ट अपडेट हो चुकी है FM 101 के ऑफिशियल पेज पे, उस पर आपने कमेंट करना है और कमेंट करके आंसर जरूर किएगा, बताइएगा जो मैंने आपसे पूछा। वैसे तो आप इन दोनों चीज़ों में किसी का भी जो चीज़ आपके जहन में आती है, जिसका आंसर आपके जहन में आता है, आप उसका आंसर कर सकते हैं। उस्मान अली हमारे साथ मौजूद हैं। ओके, सलाम टू ऑल कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मा आजम हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जुबिया, आप भी कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सजाद अली लाडला हैं, कहते हैं कि तमाम सुनते समातों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। ओके, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं जी, अपने अल्फाज का ख्याल रखो, तुम्हें नहीं मालूम वो किसी के जहन में कितनी बार गूंजेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने, और ये सजाद है ना, ये बहुत अच्छा शायर है भाई, अक्सर जो है मैसेंजर पे इसकी कुछ नज़में गज़लें आई होती हैं और मैं अक्सर सुनती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ पढ़ते हैं, फिर मज़े की बात ये है। वेल डन सजाद। क्या ख्याल है, यहाँ पे एक अदद लगाते हैं गाना एतबार, किसका है? सरमद कदीर का है, और इस गाने को सुनें और फिर हम वापस आते हैं, आके करते हैं बाकी की बातें। और मैं आपसे आज क्या पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि एक्सप्रेसिव होना देखो ना ये कितना एक्सप्रेसिव बंदा है। भाई ऐसे प्यार का क्या करना है जो आपने बताना ही नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुम्हारी केयर करता हूँ या करती हूँ। यार बाज़ दफ़ा सुनना अच्छा लगता है ना।

आपका क्या मानना है, ये मुझे आपने बताना है कि आपको क्या लगता है कि रिश्तों में, रिलेशंस में होना, एक्सप्रेसिव होना ज़्यादा अच्छी बात है या फिर खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए बाज़ जगहों पे, या फिर खामोश रहना चाहिए? और ये मुझे आपने बताना है। एफ़ एम 101 के ऑफिशियल पेज पे आप जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है और उस पर कॉमेंट करेंगे, कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, इसके साथ साथ एक अदद गाना लगाने लगी हूँ, वो गाना इंजॉय करेंगे, उस सॉन्ग को सुनेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा, और मुझे ये बताएंगे कि रिलेशन। इसके साथ साथ मैंने एक और आपसे बात पूछी थी, वो बात क्या थी भला? मैं ये पूछ रही थी, चलो वो तो वैसे ही मैंने एक बात की थी, अगर आप इस पे बात करना चाहें तो कर सकते हैं, कि ज़िंदगी जब आपको उस रास्ते पे ले जाती है जो आपका मुंतखब करदा नहीं होता, फिर आप क्या करते हैं, क्या करते हैं भला? वो लहरों की उल्टी असम चलते हैं या फिर लहरों के साथ बहना शुरू कर देते हैं?

0: लैला। और ये जी हमने अली जफर को शामिल किया था अपने प्रोग्राम में, और यहाँ पे टाइम जो है 11:52 हो चुके, और मेरे साथ आपने रहना है, यानी कि हमारे साथ रहना है ठीक 1 बजे तक। आज हम बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में एक्सप्रेसिव होना या किसी भी रिश्ते में एक्सप्रेसिव होना जो है वो किस हद तक दुरुस्त होता है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप क्या अपने रिश्तों में एक्सप्रेसिव हैं, और एक्सप्रेसिव रहने के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं ये आपने मुझे बताना है। एक्सप्रेसिव होने के और नॉन एक्सप्रेसिव होने के, यानी कि अगर आप अपनी बात जो है दूसरों तक नहीं रखते और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे जो हैं वो इसको जज करें। अब हर इंसान का अपना एक प्रोस्पेक्टिव है, हर इंसान का अपना एक नज़रिया है, उस नज़रिए के मुताबिक वो सोचता है। अक्सर लोग कहते हैं कि वो बड़े बूढ़ों की एक कहावत है कि जिसको बैठा हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा उसको खड़े होकर क्या दिखाना है, क्या ही बताना है कि मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन कुछ जगहों पे ये भी कहा जाता है ना कि अगर किसी को नहीं नज़र आ रहा तो उसे बताओ तो सही कि मैं मौजूद हूँ। हो सकता है उसका ध्यान ना गया हो सकता है आपको किसी की कोई बात ऐसी कोई बात बुरी लग गई जो इंटेंशनली वो नहीं कर रहा या नहीं कर रही, उसके जहन में वो चीज़ मौजूद नहीं है, वो उस अंदाज से नहीं कहना चाहता था या उसके माइंड में वो चीज़ें नहीं चल रही थी, लेकिन आप उस चीज़ को फील कर गए। बाज़ दफ़ा कम्युनिकेशन जो होती है, बल्कि अक्सर टाइम जो है वो कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को बचा देता है, रिश्तों को बचा देता है। लेकिन जहाँ पे कम्युनिकेशन का स्टार्ट किसी एक तरफ से ही चल रहा है और दूसरा इंसान जो है वो उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, दूसरा इंसान सिर्फ इस बात पे ही लगा हुआ है कि कोई ना कोई गलती निकले और उस गलती को मुद्दा बना के जो है ना वो मैं इस रिश्ते से थोड़ा सा पीछे उठूँ और मुद्दा भी सामने वाले के सर पर डाल दूँ, मतलब सारा जो है ना वो मलबा उसके सर पर डाल दिया जाए और उस रिलेशन को ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ पर मेरे ख्याल से खामोशी इख्तियार करना बेहतर बात होती है। और ये बहुत जल्द पता चल जाता है किसी भी रिश्ते में, जब आप 3 से 6 महीने गुजारते हो तो आपकी आपको एक दूसरे की बहुत सारी आदत का पता चल जाता है, बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान किस कैलिपर का है, आपने उसको कितना ज़्यादा जो है ना वो सर पे चढ़ाना है, आपने उसकी बात को कितना वैल्यू करना है। बस दफ़ा हम किसी की बहुत ज़्यादा, मतलब कोई इंसान बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहा है आपसे किसी भी रिश्ते में, बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हो रहा है, नाराज़गी का इस्तेहार कर रहे हैं, तो एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, बहुत दफ़ा मनाने की हम कोशिश करते हैं, हम कहते हैं कि यार इसको मना लिया जाए, नहीं रिश्ता ख़राब ना हो, लेकिन फिर सामने वाले की एक आदत बन जाती है, वो उन नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना के जब आपके साथ बहस करना शुरू करता है या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है रिश्तों में रिस्पेक्ट करना होती है ना, इज्जत करना एक दूसरे की। अगर इज्जत नहीं कर रहे कोई एक इंसान दूसरे की इज्जत नहीं कर रहा, ये रिश्ते में आपस एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे हैं आप, तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि वो रिश्ता चल सकता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि सामने वाला इंसान जो बार बार आपको मना रहा है तो वो खामोश हो जाता है। अब आप आदी हुए होते हो, आप कहते हो जी तुम बदल गए हो, ये तुम बदल गई हो, उस टाइम पे होता ये है कि वो इंसान बदला नहीं होता, आपके बदलाव ने उसको बदलने पे मजबूर कर दिया होता है, वो बोल बोल के थक चुका होता है ना कोई चीज, तो कोई भी चीज वन साइडेड नहीं चलती। एक्सप्रेसिव रहने की जहां हम बात करते हैं, जहां हम बात करते हैं कि आप एक्सप्रेस चीज़ों को करवाएं, तो मेरा ख्याल जो है वो ये है, चले मैं थोड़ा सा अपना ख्याल भी बता देती हूं ताकि आपको, अब जब आप कॉल करें मुझे या मैसेजेस करें तो आपको थोड़ा सा जो है वो टॉपिक ओपनली डिस्कस करके आप बात को ब्रीफली कर सकें, आप समझ सकें कि मैं कहना क्या चाह रही हूं। मैं कहना ये चाह रही हूं कि जब रिलेशनशिप में आप मौजूद होते हैं तो एक इंसान को अगर सामने वाले की कोई बात बुरी लग रही है, कोई अच्छी लग रही है, तो क्या उसको बताना चाहिए या फिर खामोशी से तमाशा देखना चाहिए, खामोशी अख्तियार कर लेनी चाहिए, नहीं बताना चाहिए, और क्या ये नहीं बताने के नुकसान होते हैं रिलेशन में। और अगर बहुत ज़्यादा बोल दिया जाए, बाज़ दफ़ा कह दिया जाए भाई मुझे तुम्हारी ये आदत भी पसंद नहीं है, ये आदत भी पसंद नहीं है, तो वो भी सामने वाला गुस्सा ही ना कर जाए कि अगर तुम्हें मेरी कोई भी आदत पसंद नहीं है, बाज़ दफ़ा होता है ना, तो वो कहे अगर तुम्हें मेरी कोई भी आदत पसंद नहीं है तो फिर ठीक है जाओ, इधर क्या कर रहे हो, कोई एक लफड़ा थोड़ी ना है। एनीवेज जी, आप हमारे साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं FM 101 के ऑफिशियल पेज पे, आप जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कॉमेंट करेंगे और कॉमेंट करके मेरे साथ शामिल हो जाएंगे, मुझे बताएंगे कि आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे बताएंगे कि रिश्तों में जो हैं वो एक दूसरे की कोई बात अगर अच्छी लगी या बुरी लगी तो आप बोल देते हैं, आप रिलेशनशिप में एक्सप्रेसिव हैं या नहीं हैं ये मुझे आप बताएंगे। इसके साथ साथ कमेंट के अलावा आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 4471 पे, अपने जाएंगे मोबाइल के राइट ऑप्शन में 101 स्पेस, नाम पैगाम सेंड कर देंगे उसे 4471 पे, 4471 के पैगाम जो हैं वो मेरे पास आएंगे तो मैं यकीनन उन्हें ऑन एयर शामिल करूंगी। इसके साथ साथ मैं एक और बात आपसे पूछ रही थी ना, वो बात क्या थी, वो बात ये थी, मैं कह रही थी कि बाज़ दफ़ा आपका एक प्लान होता है, उस प्लान को आपने जो है वो उसके लिए बहुत स्ट्रगल की होती है या बहुत सारी कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि एकदम से वो प्लान चेंज हो जाता है, सामने से कोई एक ऐसी चीज़ आती है, अल्लाह ताला को कोई ऐसा प्लान होता है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उस टाइम पे आप क्या करते हैं, आप क्या ओपोजिट डायरेक्शन में उसको फेस करते हैं, यानी कि वो लहरों की उल्टी समत में चलने की कोशिश करते हैं, या फिर आप कहते हैं कि नहीं जैसा चल रहा है बस होने दो। आपका क्या ख्याल है, आपका क्या सोचना है? सजाद अली कहते हैं खामोशी वहां पे इंसान को, खामोश इंसान को वहां पे रहना चाहिए जो आपकी बात समझ नहीं पाते, मतलब जो आपकी बात समझना ही ना चाहे। हाँ ये बात सही है कि मतलब आप खामोश वहां पे नहीं रहना चाहिए आपको जहां पे कोई आपकी बात समझ नहीं पा रहा, तो आप उसको समझाएं ना अपनी बात। अगर आप उसको अपनी बात समझा रहे हैं लेकिन वो फिर भी नहीं समझ रहा तो फिर तो आप खामोश हो जाएं, लेकिन अगर सामने वाला इंसान आपकी बात समझना ही नहीं चाह रहा, उसको समझ ही नहीं आ रही, उसको कोई बात वो बाज़ लोग होते हैं उनको सब चीज़ों का पता होता है, उनको आइडिया होता है, लेकिन वो जानबूझ के जो है ना वो समझ ना समझ बने होते हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल से खामोश हो जाना चाहिए। और जब आपको लगे कि इस इंसान को अगर मेरे कहने से समझ आ जाएगी चीज़ तो फिर एक दफ़ा मेरे ख्याल से बता देना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जहन में चल रही होती हैं ना, पैरेलल चल रही होती हैं, आप किसको ज़्यादा आप करते हैं ये आपने मुझे बताना है। मुझे लगता है इंसान को बात कर देनी चाहिए बात, क्योंकि दिल में रखने से इंसान गलत फहमियों का शिकार हो जाता है। अगर किसी के साथ शेयर कर दे तो फिर गलत फहमियां नहीं होती, है ना? सही कह रहे हो लड़के तुम। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे ख्याल से न्यूज़ ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, तो न्यूज़ ब्रेक की तरफ चलते हैं फिर वापस आएंगे।
1: Coming up next, 101 News Headlines.

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद में हैं, जिसके दौरान वो पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बुनियादी अवामिल मौजूद हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की खुफिया इत्तलात पर मबनी कार्रवाई के दौरान 5 ख़वारिज हलाक हो गए हैं।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Ne FM 101 tune kiya.
4: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.

अच्छा जी, आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, इस पे कमेंट करेंगे, कमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, और इसके साथ साथ आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 04221100101 और डायलिंग नंबर। लेकिन पहले मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ूंगी जो पोस्ट पे आए हुए हैं, उनको शामिल करते हैं साथ। बिस्मा कहती हैं लाइव शो 32 मिनट का बस आज है ना, कोई आया ही नहीं तुम में से। मैंने कहा मैं अकेली क्या बोलती रहूं यहाँ पे, इसलिए मैंने बंद कर दिया। गुस्सा कर गई मैं, गुस्सा समझ रहे हो ना। हाँ अच्छा, सजाद अली लाला कहते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है खामोशी सबसे बेहतरीन जवाब है, जब लोग आपको जाने बगैर आपके बारे में बातें करें या आपको जज करें तो परेशान होने के बजाय मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं। याद रखिए अजनबी आवाजों पर सिर्फ वही रद्द अमल देते हैं जो आपकी असल कदर नहीं जानते, अपनी तवज्जो सिर्फ अपने रास्ते और अपनी कामयाबी पर रखें। बहुत अच्छी बात की आपने। हमदुल्ला मलखैल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमदुल्ला मलखैल फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया जी। अगर आपकी बेवजह दुश्मन बहुत हैं, आपके बेवजह दुश्मन बहुत हैं, तो उसकी एक वजह है जो आप अकलमंद हैं या आपका किरदार बहुत मजबूत है। हमदुल्ला मलखैल, ये पठान लोग जो हैं वो का को की और की को का कहते हैं, आप भी ऐसे करते हो। मैं कर रही थी, मैं कर रहा था, मैं कहती हूँ कि अगर इनका कर रही थी और कर रहा था में ही मसला है, तो फिर इनका मुजक्कर में थी और मोनस में था और मोनस में पता नहीं क्या, इस तरह मिला जुला क्यों होता है। मतलब अगर मसला हो तो फिर हर तरफ मसला हो। ये मर्द को औरत बना देती है और औरत को मर्द बना देता है, ऐसा क्यों? मुझे आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। वैसे किसी को समझ आया तो मुझे जरूर बताना। जाहिद खान हमारे साथ, मैं आपका शो लाहौर से सुन रहा हूँ। ओके, मैं भी लाहौर में शो प्रोग्राम कर रही हूँ। हर मोड पर सवाल करती है जिंदगी, कितना चलोगे और यू खुद कूद खेल कर, काटा है जिंदगी तुझे लफ्जों से खेल कर, जीता है वरना कौन बिना तुझको झेल कर। कमाल जी, बहुत अच्छी बात। अच्छा सजाद क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ कि जब रिश्ता इंसान बनाता है तो फिर निभाना चाहिए, रिश्ता बनाना और निभाने में बहुत फर्क है। मेरा जो कहना है वो ये है कि इंसान रिश्ता बना तो लेता है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है उसके लिए, उस शख्स के लिए निभाना मुश्किल हो जाता है जो इंसान एक दूसरे को समझ नहीं पाता, रिश्ते वहां पे निभाए जाते हैं। इतना लंबा मैसेज लड़के। अच्छा जी, मोहम्मद तारिक साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जुबिया, मेरे दोस्त की बेटी की सालगिरह है, वो कुवैत से पाकिस्तान गई हुई है, नाम इनका मरियम उस्मान है, प्लीज इनको विश कर दीजिएगा। ओके सर, मैं विश कर देती हूँ जरूर, लाजमी तौर पे, मरियम उस्मान। ओके अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर के महीने में जिन जिन की बर्थडे है ना, और स्पेशली मरियम उस्मान की आज बर्थडे है, तो हम उसको विश करते हैं।

ओके मरियम उस्मान, आपको आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, और उन तमाम को उनकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो जिनकी अक्टूबर में बर्थडे है, जिनकी आज के दिन सालगिरह।

हैप्पी बर्थडे मरियम, आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपके नसीब बहुत अच्छे करे। हैप्पी बर्थडे।

Anytime, मोहम्मद तारिक साहब, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है. सजाद कहते हैं किसी को उसकी औकात और जब से ज्यादा अहमियत देना बिल्कुल गुब्बारे में हद से ज्यादा हवा भरने जैसा है ना. अपने मुंह पे लगता है आके.

0: सजाद कहते हैं जी जबरदस्त स्टार्टिंग शो आपका, बहुत शुक्रिया जी। एक कॉलर है, देखते हैं कौन है जी। 0422111001। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम, मैं फरीश बोझी लाहौर से बात कर रही हूँ। रुबिया जी आप कैसी हैं?
0: मैं प्यारी हूँ
1: इंशाल्लाह ताला, और भी प्यारी हो जाएंगी, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे,
0: इलाही आमीन। क्या कहिएगा फरीजी
1: जी? रिश्तेदारों में ना बहस शुरू हो जाए ना तो फिर खामोशी अख्तियार करनी चाहिए, रिश्तेदारी तोड़नी नहीं चाहिए।
0: ठीक है,
1: क्योंकि किसी वक्त भी किसी जरूरत के किसी इंसान की जरूरत पड़ सकती है, बीमारी में खुशी में।
0: ठीक है,
1: फिर वो है कि जाके मिनते करेंगे तो वो अच्छा नहीं है।
0: ठीक है,
1: खामोशी अख्तियार होगी तो वो खुद ही उनकी तरफ ना इंसान मायल हो जाता है, तो कोई भी मसला हो तो फिर उनको अपनी महफिल में शामिल करने के लिए ना थोड़ी सी माफीनामा मांगना भी पड़ जाता है।
0: ठीक है,
1: तो बाकी साहब शो सुनने वालों के लिए बहुत सारी दुआएं, कवेत वाले जो तारिका है उन्होंने सलाम भेजा उनके लिए बहुत सारी दुआएं, निके तारिक के लिए, बड़े तारिक के लिए, शमशी ग्रुप वालों के लिए, आपकी पूरी मैनेजमेंट के लिए, तो आरजे डॉक्स के लिए स्पेशल दुआ है।
0: अब आपको आरजे डॉक्स का नाम याद हो गया है ना?
1: पहले भी मेरे बेटे हैं, उन्होंने मैंने उनको अपना बेटा बनाया, मेरा बेटा नहीं है।
0: अच्छा जी,
1: अंजुम के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको ना जल्दी जल्दी शफा दे दे। हम सब लिसनर और कॉलर मिलके ना इनके लिए पार्टी करेंगे,
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह
1: पार्टी करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, थाउजेंड थाउजेंड पैसे ना सारे इकट्ठे करके आरजे डॉक्स को देंगे, वो पूरी ना मैनेजमेंट का सारी इकट्ठी होके ना आरजे भी सब होंगे तो वो टी पार्टी करेंगे।
0: डन हो गया, उसमें तो समोसे भी आ जाएंगे,
1: समोसा भी आएगा, चाय का कप भी आएगा, बिस्किट भी आएंगे, सैंडविच भी आ जाएगा।
0: डन हो गया, डन हो गया, बहुत शुक्रिया फरीजी, थैंक यू सो मच। आरजे ज़िया हमारे बहुत ही अच्छे आरजे, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आप जो जहाँ से सुन रहा है वो तमाम से रिक्वेस्ट है कि उनकी सेहत के लिए लाजमी तौर पर दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। जो भी एक प्रोसेस चल रहा है, जो भी एक आजमाइश है, वो आजमाइश जो है वो ख़त्म हो जाए और अल्लाह पाक उनको सेहत दे। स्पेशल दुआ करें, बाज़ दफ़ा होता है कि हम कहते हैं कि यार कहते किसी के लिए आप जो दुआ करते हो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है, क्योंकि वो किसी ने कहा था ना कि किस दुआ किस तरह से की जाए जो फ़ौरन से कबूल हो जाए। कहते उस ज़ुबान से दुआ करो जिससे तुमने गुनाह नहीं किया। कहते ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब होता है ना कभी कभी झूठ नहीं बोला, कोई बात ऐसी नहीं की, तो वो कहते जब तुम किसी और के हक़ के लिए दुआ करते हो ना तो वो ज़ुबान होती है जिससे झूठ नहीं बोला होता, यानी कि उसके हक़ में वो चीज़ होती है। तो इसलिए दुआ लाजमी तौर पर किया करें, बाज़ दफ़ा आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा, बाज़ दफ़ा नहीं यकीनन आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आरजे अंजुम के लिए तौर पे दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम सलाम जी, आप जी क्या हाल है? ठीक ठाक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन
2: जी? अमानत बात कर रहा हूँ, अमानत गार्ड फैसल टाउन से, चमसी रेडियो क्लब की तरफ से
0: जी।
2: मैं आपका फाइनल लिसनर हूँ लेकिन आज कॉल पहली दफा की है।
0: बहुत शुक्रिया आपका।
2: तो फरी आप इसे कहना कि जो आप चीजें रह गई है ना, लिम्को भी रहेगी, बर्फी भी रहेगी, बर्फी हम ईद भाई ले आएंगे फारुखाबाद से, हमारे बशीर अब लिम्को लेके आ जाएंगे चुंगी से।
0: ठीक हो गया,
2: तो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त हो जाएगी पार्टी।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और कुछ कहेंगे
2: जी? तो कहने का ये मकसद है कि जो रिश्तेदार होते हैं ना, करीबी रिश्तेदार हो जो भी है, कुछ ऐसी बात हो जाए तो खामोशी इख्तियार कर ले, तोड़ना नहीं चाहिए।
0: ओके, हो गया।
2: तो बाद में एक वक्त आएगा खुद ही आपस में सुलह हो जाएगी। तो जैसे हमारे ये शमसी क्लब वाले ना, हम एक रिश्तेदारों के हैसियत से रखते हैं, भाइयों की तरह, हमारी आपी फरी है, ये बड़ी आपी की तरह है। तो मुगल साहब में हम एक रिश्तेदार, रिश्ते के भाई बहन भाइयों जैसा हमारा है, तो दुआ करें अल्लाह का हमारा ऐसे कायम रखे इंशाल्लाह। पार्टी अब आपी ने कहा है, हम तैयार है इंशाल्लाह।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, मैं आज का टॉपिक को एक दफ़ा से दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी समझने में आसानी हो जाए। मैं आपसे जो पूछना चाह रही हूँ वो ये है, रिश्तों में एक्सप्रेसिव होने का मतलब ये होता है कि आप दो लोग रिलेशनशिप में चल रहे हैं और उन दो लोगों को, या एक घर में आप रह रहे हैं और आपको उस घर में रहते हुए किसी की कोई चीज़ अच्छी लगी, किसी की कोई चीज़ बुरी लगी, तो आप कह देते हैं, आप आपस में जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं उस चीज को। एक रिलेशन वो होता है जिसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता, जिसमें बिल्कुल खामोशी पे चल रही होती हैं चीज़ें, जिस पे जो है वो ज़ीरो रिस्पांस पे चीज़ें चल रही होती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, कोई किसी की चीज़ बुरी लगे तो कह देनी चाहिए? ये एक अलग टॉपिक, एक अलग साइड पे चला जाएगा। एक्सप्रेसिव होना एक अलग साइड पे चला जाएगा, इन दी सेंस कि आप किसी भी चीज़ को बताते नहीं हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ इस तरह की आप बिल्कुल डिमांडिंग नहीं हैं, आप डिमांड नहीं करते हैं नहीं है कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ इस तरह की आप बिल्कुल डिमांडिंग नहीं है, आप डिमांड नहीं करते हैं।

शामिल हो जाएंगे, बताएंगे मुझे रिश्तों में एक्सप्रेसिव होना कैसा है, समझ नहीं पा रहे यार आप। मैं मशरक में जा रही हूँ, आप जुनूब में जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं ना। देखा वो भी कहता है तारीफें करोगी।

0: Welcome back. This is FM 101 Hall Life Studio. It's me, Zubair Shafiq. 12:34. आपके कुछ पैगामात को शामिल करती हूँ. हमारे साथ कौन मौजूद हैं जी, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया, इनको बताते चले कि आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं. FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कॉमेंट करेंगे, कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे. सजाद अली लाडला कहते हैं मेरी कॉल नहीं मिल रही, कोशिश कर रहा हूँ बट नेटवर्क बिजी जा रहा है. ओके, बिजी. चलिए अभी मैं कॉल लेती हूँ ना, अभी कुछ टाइम में कॉल लेती हूँ, फिर आपकी ज़्यादा सारी कॉल्स लेती हूँ, उसमें आपकी कॉल भी मिल जाएगी. अगर आप बोलते हैं कि इंसान चीज़ों पे नहीं बोल पाता, खामोश रहता है, तो फिर वो हमारी अपनी गलती है. अगर पसंद हो कि चीज़ तो बोल दिया जाए, किस्मत में होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी. अच्छी बात की लड़के तुमने. आमीन सुमा आमीन. ज़ा भाई को जल्द सेहत याब करे. आमीन इलाही आमीन. बिस्मा कहती हैं जी पिकअप माई कॉल. बिस्मा मेरे सामने तुम्हारा नंबर नहीं आ रहा लड़की, वरना मैंने पिक कर लेनी थी. तुम फोन रखो, मैं उठाने वाली बन जाऊंगी फौरन से. अच्छे वाला फोन होना चाहिए, काश. अच्छा सजाद कहते हैं थैंक यू सो मच, आपको मेरा अंदाज पसंद आया. हाँ अच्छा बोलते हो लड़के तुम, अच्छी पोइट्री करते हो, अच्छी शायरी होती है तुम्हारी. 04221100101 अवर डायलिंग नंबर. अस्सलाम वालेकुम जी.
1: जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है
0: साहब. यहाँ पे सारे कह रहे हैं हमारी कॉल नहीं मिल रही, हम पिछले घंटे से ट्राई कर रहे हैं, ये आप कैसे आ जाते हैं?
1: ये देखे जी, मैं पहले पढ़ता रहता हूँ, जब मैं पढ़ता नहीं तब कॉल मिल जाती है, ये कैसी बात है?
0: मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप?
1: पढ़ते ही रहते हैं, या अल्लाह काल मिल जाए, काल मिल जाए.
0: अच्छा
1: जब मैं छोड़ देता हूँ पढ़ना तब काल मिल जाती है, कैसी बात है?
0: ठीक हो गया, क्या कहिएगा?
1: देखिए जी, जो हमारे रिश्तेदार, जो हमारे आले दुआले नजदीक के रिश्तेदार होते हैं ना जी, इनसे जब को थोड़ी बहुत ही नाराजगी हो जाए तो फिर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और वक्त का इंतजार करना.
0: ठीक है ठीक है.
1: जो बातें होती है ना वक्त के साथ ही अच्छी लगती है. जब हम वो गर्मी में आए, हम भी गर्मी आ जाए, काम जो ना बिगड़ जाता है.
0: ठीक है.
1: तो इसलिए थोड़ा सा सब्र से काम लेंगे, जब वक्त आएगा ना फिर बात बन जाती है.
0: ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब,
1: बहुत बहुत आपकी मेहरबानी. और ज़ियाद भाई की बहुत बहुत दुआएं करता हूँ, अल्लाह ताला उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, सेहत याब करे. बहुत बहुत दुआएं और जितने भी आज आते सबके लिए दुआएं. तो बहुत मेहरबानी आपका, बहुत अच्छा माशाल्लाह शो जी, बहुत मेहरबानी,
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी. अच्छा जी, कुछ पैगामात मेरे सामने मौजूद. सज्जाद कहते हैं कि दुनियादारी भी रख रखाव भी, मार डालेंगे ये दबाव भी, हासदों की जल्दी कटी जली कटी भी सुनो और ऊपर से मुस्कुराओ भी. वाह वाह वाह वाह वाह, है ना? कुछ लोग इतना हसद करते हैं कि उनके चेहरे से आया हो जाता है उनका हसद. अस्सलाम वालेकुम जी.
2: वालेकुम सलाम
0: जी.
2: अब्दुल मीर फुलका बात करते हैं, मेरी मेरी कॉल मिली है. बाकी आपकी कॉल मिलनी है बड़ी औखी है.
0: क्या कहिएगा
2: बाजी जी, कि हक की गल हो बोलना चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए.
0: ठीक हो गया.
2: हां कि वेखो ना, धी भैन का रिश्ता कर लगे, जब घर के दो फैमिली रहनी है, एक बंदा कोई भी नहीं बुरा होंगे, आदत बुरिया होंगे.
0: बिलकुल ऐसी है, बिलकुल
2: आदत नहीं चाहिए. जो तुम आखना कह देना चाहिए, कह देना चाहिए बी तेरी आदत नहीं सही, तेन सही कर लो.
0: ठीक है ठीक है. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच,
2: अल्लाह नबी वाला.
0: अच्छा जी, मैं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप में ये जो एक्सप्रेसिव होना होता है, ये कैसा होता है? बाज़ दफ़ा एक पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, खासकर ख़वातीन के बारे में कहा जाता है ख़वातीन एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन दूसरी साइड पे ख़वातीन बाज़ चीज़ों में बहुत ज़्यादा
3: रख लूं छुपा के तेरी यादें.
0: लेकिन एक्सप्रेसिव ना हो तो ये गाने कैसे बने?

0: Welcome back. This is FM 101. Hello, studio. It's me, Zubay Shafiq. आपका अपना प्रोग्राम जुलेडीज लाउंज 12:41.
1: क्यों छुपाऊं मैं अब कोई डर।
0: तो बात हो रही एक्सप्रेसिव होने की, बात हो रही तारीफ करने की, बात हो रही तारीफ सुनने की, बात हो रही है किसी की कमी हो तो बताने की, लेकिन सिर्फ उसको, पूरी दुनिया को नहीं है ना, समझ रहे हैं ना आप।
1: अदाएं तेरी कातिल है वो दिल की मेरी।
0: तारीफ करना अच्छा होता है ना,
1: तेरी आदत नहीं ना, मेरी ख्वाबों में बसाए तू ही तू, सवालों
0: बताना अच्छा होता है,
1: मुझे तू ही तो बिगड़े, मेरी आंखों में सजाए तू ही तू,
0: ये चीज।

0: ही बसी 0422110101 अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम डॉक्टर साहिबा, अल्हम्दुलिल्लाह मलाखिल बात कर रहा हूँ लाहौर से।
0: अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हैं आप?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थी आपकी साउंड सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखो जो मैं जब किसी बंदे या बंदी की मैं तारीफ करूँ उसके सामने आप नहीं करेगा, मैं उसको जब वो मौजूद उस जगह में मैं उसकी तारीफ करूँगा।
0: ठीक है ठीक है, ओके ओके।
1: करना चाहिए जो बंदा अच्छा काम करेगा, या जब मिसाल कोई अच्छा डॉक्टर होएगा या अच्छा आरजेज होएगा या खेल रहा जो भी चीज हो, हमें उसको तारीफ कर लेना चाहिए, उसके सामने नहीं कर लेना चाहिए। वो फिर वो बोले देखे मेरे खुशामद कर रही है,
0: फिर वो ज्यादा शोखा बन जाता है ना जिस जब सामने आप तारीफ करते हैं तो। बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। सजाद कहते हैं जी ग्रेट शो, आपका बहुत शुक्रिया सजाद। आज ये लड़की कहाँ है? कंवल नाज, मुझे सुबह सुबह इसने मैसेज किया हुआ था, आप आज प्रोग्राम करेंगी। भाग गई। 0422110101 अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, रजा साहब आप बताइएगा।
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली ना मैं आपसे एक लफ्ज़ बोला था, क्या बोला था? प्लानिंग, किसी चीज की प्लानिंग। प्लानिंग तब बनती है जब हम वक्त की पाबंदी भी साथ करें, टाइम के पाबंद है। अगर हमने प्लानिंग कर ली कि ना आपने उखाड़े जाना है, कब जाना है पता नहीं है, प्लानिंग कर ली, टाइम भी जरूरी है। तो रिश्तों को, रिश्ते के बारे में पूछ रही है आप, रिश्तों को बचाने के लिए बोलना पड़ता है, कोई अच्छी बात होना जिससे पता चले कि ये रिश्तों की जो दरारें हैं आपकी वजह से खत्म हो जाएंगे, तो फिर तब बोले।
0: ठीक है,
2: अगर अगर आपकी वजह से किसी का दिल आजारी हो या किसी का घर टूटे तो बेहतर है आप ना ही बोले।
0: सही हो गया,
2: तो कहते हैं कि बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए।
0: ठीक हो गया, ठीक हो गया।
2: कि वक्त से पहले, टाइम से पहले
0: और जरूरत से ज्यादा,
2: जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए।
0: ठीक हो गया।
2: अगर आप ज्यादा बोलेंगे, वक्त से पहले बोलेंगे, वो आपकी बात कितनी भी अच्छी होगी ना, वो ऐसे रद्दी की टोकरी में जाएगी जैसे हमारे कागज जाते हैं।
0: पॉइंट।
2: तो मेरी तरफ से शम्सी क्लब वाले जितने भी लिसनर आए उनको आपके लिए और आपके मैनेजमेंट को दोनों।
0: बहुत शुक्रिया रजा साहब, थैंक यू जी।

0: ऑल राइट, मैं बात कर रही थी जी रिलेशनशिप में एक्सप्रेसिव होना कैसा है, और अक्सर औकात क्या होता है कि रिश्ते खत्म भी हो जाते हैं, आपको पता है इस बात पे।
1: कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे,
0: बाज़ दफा कहना बहुत जरूरी होता है ना, बताना बहुत जरूरी होता है। देखिए जितनी भी शायरी है, बाज दफा बताने से रिश्तों में पॉजिटिव वाइब ज्यादा आती हैं, पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ती है, एफर्ट ज्यादा बढ़ती है, सामने वाला जो है वो उस चीज को ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करता है कि मेरी इतनी सी तारीफ अगर हुई है या उस इंसान को ये चीज अच्छी लग रही है तो मैं उसको ज्यादा इन्हांस करूं, अच्छा बनाऊं, खुद को बेहतर बनाऊं, वैसा बनाऊं जैसा वो बनाना चाहता है, जैसा वो चाहता है मुझे देखना। और फिर जब आप बन जाते हैं वैसे, तो फिर सामने वाले का सराहना जरूरी होता है ना।
1: सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं।
0: अस्सलाम वालेकुम जी।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन हमारे साथ, कहां से?
2: कमल नाज बात कर रही हूँ।
0: कमल कहां थी लड़की तुम?
2: बस क्या बताऊं, नेट भी आ रहा था ना इसलिए मैसेज नहीं किया, बिकॉज़ कॉल ट्राई करती हूँ, शुक्र है मिल गई है।
0: क्या कहिएगा?
2: मैंने अभी अभी आपका शो ज्वाइन किया, अब रिश्तों के बारे में बात कर रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे कोई भी रिश्ता है ना, अगर उसमें थोड़ी सी लचक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो फिर वो रिश्ते निभाना मुश्किल हो जाता है। और रही बात कि अगर आप किसी की बात अच्छी नहीं लगी तो आपको कह देना चाहिए, लेकिन एक तरीके से कहना चाहिए कि उसकी दिल आजारी ना हो, उसको बुरा ना लगे। खामोशी भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खामोशी से भी अगले बंदे को कैसे पता चलेगा कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, या उसने जो आपसे कुछ कहा है आपने किस तरह रद्द अमल देना उस बात पर, या आपको कितनी बुरी लगी है उसकी बात या कितनी अच्छी लगी है उसकी बात।
3: मेरा तो ख्याल है जब भी आप किसी को टोकेंगे वो तो बुरा ही मानेगा।
2: टोकना भी चाहिए वैसे, ये साफ कौन बोल रहे
0: हैं। सरप्राइज है ये, पहचाने ना?
2: मुझे तो आज डॉग साफ लग रहे हैं।
3: अच्छा।
0: मुझे भी वही लग रहे हैं।
3: अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप? खैरियत से?
2: जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ।
2: मैंने तो अपनी, और मैं जब, मुझे जब किसी की बात बुरी लगती है ना तो मैं तो पहले तो अपने रिएक्ट से उसको बताती हूँ, बोलती बहुत कम हूँ लेकिन नाराज हो जाती हूँ, और नाराजगी
0: तो सामने वाला मनाए ना, वो पहले खुद नाराज होके बैठ जाए तो।
2: नहीं ना, अगला बंदा कोशिश तो करता है ना, तो फिर मैं मान
0: नहीं करती जाती
2: हूँ, ये नहीं कि मैं नखरे करती।
0: अक्सर लोग नहीं ना करते कोशिश। चलिए कमल, थैंक यू।
2: जिनको हमसे प्यार है ना, जो हमारे बिना नहीं रह सकते, हमारी थोड़ी बहुत भी चाहत करते हैं, वो हमें मनाएंगे, और जिनको नहीं है हमारी जरूरत वो नहीं मनाएंगे, तो ठीक है ऐसे लोगों से आप अवॉइड करें, साइड से हो जाए, इसी में आपकी बेहतरी है।
0: ओके हो गया, थैंक यू सो मच कमल। सर आप किधर से?
3: बस ऐसे ही इधर से सुनाए, कैसी हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। टीचर डे तो कल था।
3: अच्छा,
0: आपको तो बड़े मैसेज आए होंगे।
3: हाँ मुझे आए हैं कुछ मैसेजेस।
0: क्या कि सर बहुत उस्ताद हैं आप?
3: हाँ बहुत बड़े उस्ताद हैं आप। मैं भी क्या, हाँ बहुत उस्ताद। क्या मौजू चल रहा है आपका?
0: हमारा आज का मौजू है कि एक्सप्रेसिव होना रिश्तों में कैसा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
3: बहुत खतरनाक है।
0: नहीं होना चाहिए?
3: नहीं नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेसिव दो तरह का होता है, एक होता है आप किसी को अपनी फील बताते हैं, और एक होता है किसी से महज नाराजगी का इजहार करने के लिए एक्सप्रेसिव होना। फील बताना इज़ गुड, बताते रहना चाहिए। रिश्ते में जो है ना तरोताजगी रहती है, आप बार बार दोहराते हैं, बताते हैं, इट्स गुड
0: ठीक है, बताना अच्छा है, बताना चाहिए। ठीक हो गया। कॉल लेनी चाहिए?
3: हाँ जी बिल्कुल लें
0: जी।
4: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
4: आज डॉक्टर भाई और ज़ूबी आप ही हैं, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
4: क्या हाल है आप दोनों, कैसे हैं?
3: ठीक ठाक, आप सुनाए, आप ठीक हैं?
4: जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। वहाँ से मैंने ज़ूबी आप ही का आधा शो जो है ना जाया कर दिया।
3: कैसे?
4: वो कैसे, क्योंकि मैं आज अपनी आंखें चेक करवाने गई थी, वहां से आते आते मुझे बहुत देर हो गई।
3: तो वो तो आपका जाया हुआ ना, आपने मिस कर दिया।
4: वही ना, सुनना मैंने था ना, वो मैंने आधा जाया हो गया ना मेरा शो।
0: क्या कहोगी बिस्मा, रिश्तों में एक्सप्रेसिव होना चाहिए।
3: सॉरी
0: रिमशा।
4: हाँ आज पहले मैं ये कहूंगी आज डॉक्टर भैया उनसे रूबी आप से ये पूछना कि किराएदार से मोहब्बत करनी चाहिए।
3: ये बिल्कुल सही याद करवाया, ये बड़ा जबरदस्त मौजू है। मैं भी सोच रहा हूँ मैं अब रखूँ मालिक मकान से मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं। किराएदार से मोहब्बत और मालिक मकान से मोहब्बत, अच्छा मौजू है।
4: और टॉपिक पे मैं ये कहूंगी भाई, अक्सर हम लोग बोल के भी बुरे बन जाते हैं, ना बोल के भी बुरे बन जाते हैं।
3: फिर बोल के बुरा बनना अच्छा है।
4: बोल के बुरा बनना अच्छा है, ये ऐसे इंसान को झूठी तारीफ करने से बेहतर कि बंदा बोल के बुरा बन जाए, वही सही है।
3: हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है। आप कितनी दफा बुरी बनी है बोल के?
4: मैं कितनी बार बनी हूँ? मैं बहुत बारी बनी हूँ।
3: रोज बनती है?
4: मैं सच बोल देती होती हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता।
3: वो तो सारों को ही लगता है
4: झूठ, तो वो कहते ना किसी हर किसी को जो है ना झूठ, तो वैसे किसी किसी को पसंद भी आ जाता है अगर हम किसी की झूठी तारीफ करते हैं।
3: आपको झूठ
4: तो
3: पसंद आता है?
4: मुझे देख लिया, मेरे ऊपर ही बात करी जा रही है।
3: आपको पसंद आता है कि नहीं?
4: अगर मेरी कोई मुझे कहे ना कि हाँ ये बात ऐसी है, मैं बुरा नहीं बनाऊंगी कि हाँ उसने मुझ में गलती निकाली है, क्योंकि सही नहीं लगती तो फिर साफ बात है अच्छी बात उसने की।
0: बहुत शुक्रिया रिमशा, थैंक यू सो मच। जी सर
3: सुनाएं।
0: आप सुनाएं,
3: आप बताएं, एक्सप्रेसिव होना चाहिए रिश्तों में?
0: एक्सप्रेसिव होना चाहिए
3: और किराएदार के साथ।
0: अच्छा वो पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट से बात हुई होगी, किसी ने वो मौजू ही पकड़ लिया। ऐसा नहीं था, हमारा मौजू था कि कभी किसी से मोहब्बत हो जाए और आप वो एक्सप्रेसिव वाली जो हम बात कर रहे हैं कि आप ना बता पाए उसे और वो चला जाए, तो उसमें मैंने कह दिया होगा।
3: गाल फेरे लाली गाल है। मौजू तो बन गया बड़ा मजेदार सा, बल्कि मेरी और रहमान की भी बात हो रही थी, रहमान सुन रहा था, वो कहता यार है मौजू तो बड़ा मजेदार है। मैं कहने ये जो साड़ी आरजेस की मीटिंग हुई देन आई आस्क हर कि ये क्या मौजू है, सारों की राय लेंगे
0: किराएदार से मोहब्बत। आप सोचे नहीं, आप खुद सोचे की किसी किराएदार से आपको मोहब्बत हो जाए और जब तक आप बात करना चाह रहे हो या हौसला पैदा हो तब तक वो किराएदार को मालिक मकानों ने निकाल दिया, क्या होगा?
3: नहीं मैं तो इस चीज का एक्सपीरियंस किया हुआ है ना।
0: अच्छा हुई थी? अच्छा ओ, फिर क्या हुआ था?
3: मतलब मैं स्कूल में था, मेरी गर्ल 5-6 की बात है, हमारी किराएदार थी,
0: ठीक है,
3: तो फोन उनका लैंडलाइन पे फोन आना हमारे घर ही ना।
0: अच्छा
3: तो वो फोन जब आना किचन की खिड़की में से आवाज देनी ना जाके, तो ना तो नहीं उधर लाऊंगा मैं, बाने बाने नाल जाके फिर आवाज देनी, मैं जाके आवाज दूंगा।
0: ठीक है।
3: वो आके फिर बैठे रहना उसने इंतजार में, कभी उसकी अम्मा ने आ जाना, कोशिश होनी यार वो ही आए चलो, मैं भी बैठ के देख के खुश होते रहना, कह नहीं सका मैं कुछ, लेकिन अच्छा। देख देख के बंदा खुश जरूर होता रहता है, तो वो हो जाती है ऐसे। ये कौन सी नई बात है? और मौजू अच्छा है, मैं इस मौजू पे बात की जा सकती है,
0: की जा सकती है। लेकिन आपने उस दिन तवा तो मेरा बड़ा लगा है।
3: मौजू है वैसे मजेदार, तवा लगाने वाला ही है।
0: एक कॉल ले हम।
3: हाँ प्लीज। हेलो।
5: हेलो सलामुअलैकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
5: ये आपकी, ये किसकी आवाज है?
0: मेरी आवाज बदल गई है।
5: ये तो आरजे डॉक्स है।
3: हाँ जी।
5: आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस टाइम?
3: बस ऐसे ही मैं आया था एक काम से, तो मैंने कहा फिर जरा ज्वाइन कर लें थोड़ी देर के लिए।
5: आप अच्छा अच्छा ठीक है, आप वो स्टूडियो में है?
3: हाँ
0: नहीं हमने
3: नहीं स्टूडियो वाले अपने पास बुला लिया।
5: मेरी कॉल नहीं पिक करी थी अभी, आप आए हैं तो देखो इनको पता चला मैं कॉल कर रही हूँ।
0: क्या कहोगी बिस्मा?
5: आप
0: जल्दी जल्दी,
5: पुरानी यादें आ रही हैं।
0: लंबी लंबी बातें नहीं करनी, शॉर्ट सी बात करनी
5: है। पुरानी यादें ताजा हो गई हैं, जब आप ईद वाले दिन, ईद का सेकंड डे था तो आप शो कर रही थी, तो एकदम से डॉक्टर आ गए थे, तब भी किसी काम के लिए, काम से ही आए थे, तो आप दोनों ने मिलकर जब शो किया था इतना अच्छा लगा मुझे, और अब मुझे वो याद आ रहा है सब।
3: नहीं, वो काम से नहीं आया था, मेरा शो
0: प्रोग्राम था।
5: प्रोग्राम था? नहीं नहीं, आप
0: चलो विस्मा जल्दी जल्दी टॉपिक पे बात करो, टाइम नहीं है हमारे पास।
5: अच्छा, इतनी धिक्के खा के आई हूँ मैं सांस।
0: चले फिर नेक्स्ट टाइम आइएगा लाजमी तौर पे, पानी पी के आओ जल्दी जल्दी।
5: अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपका शो सुन रही थी मैं, और डॉग की आवाज़ सुनी अच्छा लगा, और टॉपिक पे सबने जो बातें की हैं बहुत अच्छी की हैं, बताना बिल्कुल भी नहीं चाहिए अगर आप किसी को पसंद करते हैं, क्योंकि बाद में अगर आप चाहते हैं कि वो बंदा आपकी इज्जत करता रहे सारी जिंदगी तो आप मत बताओ, ठीक है?
3: ये किस किस्म की बात है?
0: ये क्या
5: नहीं, अब देखो मेरा जो कजिन था उसको मैंने नहीं बताया हुआ ना, तो बड़ी रिस्पेक्ट करता है, मैं एक इशारा
3: तो बता देती तो ज्यादा रिस्पेक्ट करता आपकी।
5: नहीं नहीं, फिर रिस्पेक्ट
0: दे, वो कहती है फिर मेरी हरकतों का पता चल जाना ना उसे।
5: नहीं नहीं, वो इज्जत नहीं रहनी थी, जो अभी मेरा रोब है ना, रोब दबदबा है उस पे, वो नहीं रहना था।
0: ओके हो गया, थैंक यू विस्मा,
5: ये चीज है बस।
0: थैंक यू जी सर।
3: चलें जी, मैंने कहा चलें आपके शो में थोड़ी देर ज्वाइन कर लूं। थैंक यू वेरी मच, और बड़ा अच्छा लगा, मौजू बहुत अच्छा, एक्सप्रेसिव होना चाहिए। एक्सप्रेसिव होने से ही आप बार बार दोहराते हैं, जिस तरह कानून फितरत बना हुआ ना एक्सप्रेशन के लिए, इजहार के लिए। कानून फितरत ये है कि अल्लाह ने भी निज़ाम बनाया ना, आप दोहराते हैं अपना ईमान और मुसलमान होने के लिए कलमा हक को दोहराना, फिर आजान का दोहराए जाना बार बार बार बार, इंसान की फितरत है, उसे जो चीज़ बार बार दोहरा के बताई जाए, याद कराई जाए, वो उसे याद रखता है। और बिल्कुल ये इसी तरह से जिस तरह पौधे के ऊपर पानी छिड़का जाए ना उसकी फ्रेशनेस रहती है, उसी तरह एक्सप्रेशन किसी भी रिश्ते में, कोई भी रिश्ता हो उसमें इजहार करते रहना चाहिए, एक्सप्रेशन देते रहना चाहिए, उससे रिश्ते ताज़ा रहते हैं। रिश्ता कोई भी हो एक्सप्रेशन ज़रूरी होता है। थैंक यू वेरी मच,
0: बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने हमारे प्रोग्राम को 8 चांद लगा दिए।
3: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। थैंक
0: यू। ओके जी, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। माजरत उन तमाम से जिनकी मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाई, जिन्होंने मैसेजेस किए, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। और अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं यही कहूंगी कि रिश्तों में एक्सप्रेसिव होना चाहिए, बात बतानी चाहिए। अगर किसी की कोई चीज, कोई आदत पसंद है तो उसे बताना चाहिए। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि चीज़ें ना बताने से जो है वो बहुत ज़्यादा तल्ख हो जाती हैं, इसलिए बता देना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस इन सेम शो। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

पहले से हम यहाँ पर जमा हुए हैं और अभी इस तौसीफ़ी मंसूबे की हमने संगे बुनियाद रखा है और मुझे बहुत खुशी है इस बात का ऐलान करते हुए कि मोहसिन नकवी साहब ने इस मंसूबे को एक माह में मुकम्मल कराने का जो मंसूबा बनाया है, मैं उसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। और फिर यकीनन कश्मीर चौक कश्मीर के नाम से मंसूब है, तो इंशाअल्लाह यही इशारा एक दिन इंशाअल्लाह कश्मीर पहुंचेगी, श्रीनगर पहुंचेगी और आज़ादी और हकूक़ का इंशाअल्लाह इजरा होगा। आज हमने इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, अंडरपास बनाते हैं, तो आप आवाम को एक बस में जिसमें बच्चे तालीम के लिए अपने मदरसों स्कूलों और यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, और इस तरह साइकिल सवार को रिक्शा को उनके लिए कुशादा सड़कें बनाते हैं ताकि वक्त की बचत हो, वो वक्त के ऊपर स्कूलों यूनिवर्सिटियों दफातर फैक्ट्रियों और अपने जो कमर्शियल हाउसेज हैं वहाँ पर वक्त पर पहुँचें और दिन रात मेहनत करके कौम को उसकी माशी तरक्की उसकी समाजी तरक्की उसको आप आगे लेके जाते हैं। जबकि ये सारा अमल अल्हम्दुलिल्लाह इज्तमाई काविशों से जारी और सारी है, दूसरी तरफ एक मरतबा फिर बदकिस्मती से ये धरनों के और लॉन्ग मार्चेस के जो एक भयानक साए हैं वो दोबारा नमूदार हो रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमने मिलकर ये फैसला किया, हमने बामी मुशावरत और इत्तेफाक राय के साथ ये तय किया कि हम जो पीटीआई की जो लीडरशिप है उनके साथ मुज़ाकरात करें बामानी बामकसद और खलूस पर मबनी, ताकि उनको ये समझाया जाए कि इस रास्ते के वो तर्क करें, ये धरनों की सियासत का को ख़त्म करें, ये लॉन्ग मार्चेस उसका खात्मा करें और मिल बैठकर बामी बातचीत के ज़रिए इसका हल ढूंढें, और जिसके लिए दिन रात काविशें हुई। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी ने पीटीआई के साथ स्पीकर साहब के चैम्बर में दो दिन रात बातचीत की, वक्फे हुए फिर बातचीत शुरू हुई, और इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही थी कि इंशाअल्लाह ये बातचीत इसके मस्बत नतायज ज़ाहिर होंगे और इस तरह धरनों की सियासत को खैरबाद कहा जाएगा और पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए मामलात को हल किया जाएगा। बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका, बावजूद के पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने पूरी संजीदगी के साथ उनको एंगेज किया, लेकिन उन्होंने आखिरी लम्हों में जो चीज़ तय हो चुकी थी उसमें न सिर्फ दोबारा चेंजेस का मुतालबा किया बल्कि उनका एक ही मकसद था कि ये जो बातचीत है किसी तरह भी कामयाब ना हो सके। अब उसके क्या उसके भयानक नतज हैं कि आज इसमें कोई दो राय नहीं कि इस धरने और इस लॉन्ग मार्च की जो सियासत है उसके नतीजे में सबसे पहला निशाना आपकी मीशत होगी, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें रुकावट आएगी, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें रुकावट आएगी, आपकी इंपोर्ट्स जो हैं उसमें रुकावट आएगी, आपका मजदूर आपका इंजीनियर वो वक्त पर अगर नहीं पहुंचेगा कारखाने में मैन्युफैक्चरिंग साइट के ऊपर अपने दफातर में, तो किसका नुकसान है? इस कौम का नुकसान है, इस मुल्क का नुकसान है, इसकी जो
معیشت جو الحمدللہ بڑی محنت سے ہم نے 2.5 سالوں میں ایک اجتماعی کاوشوں کے ساتھ اور ایک ٹیم ورک کے ساتھ اس کو ہم نے دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کیا, اور اس میں الحمدللہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی آئی. اب اس کی گروتھ کا, اس میں ترقی کا وقت آ چکا ہے, جس کے اشارے ابھی کل آپ نے دیکھے کہ ہماری سپٹمبر میں ایکسپورٹس منتھ ٹو منتھ, ایئر ٹو ایئر بڑھی. ہماری آپ کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں اس میں اضافہ ہوا, آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں اس میں اضافہ ہوا, ملک کی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ ہوا. اب اس کو اگر کوئی نقصان پہنچائے گا, کیا یہ ملک دشمنی کے مترادف نہیں ہے کہ ملک کی ترقی کے پہیے کو دوبارہ جام کیا جائے جان بوجھ کر, اور پھر عوام کی جان و مال کو دوبارہ خطرے کا نشانہ بنایا جائے؟ ملک کی جو اس وقت جو شہرت ہے, پاکستان کی جو عالمی لیول پر جو لوگ ہمارے اغیار بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں, آپ اس کو ذوق پہنچانا چاہتے ہیں, نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, تو اس کو ہم انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے, کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا انشاءاللہ. عوام کی جان و مال کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے, اس کو انشاءاللہ ہم ہر طریقے سے اس کو ہم انشاءاللہ اس کو انشور کریں گے. میں اب بھی ان کو کہوں گا کہ آپ اب بھی ہوش کے ناخن لیں, کیا آپ کی یہ کاروائی پاکستان کو نقصان پہنچائے گی یا فائدہ پہنچائے گی؟ یہ پوری قوم اس بات سے آگاہ ہے. اگر آپ کو اس کا ادراک نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے. میں ابھی بھی آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں, اس آپ اپنے لانگ مارچ کو, دھرنوں کو آپ اس کو ختم کریں, اور ختم کریں گے تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, بیٹھ کے بات کریں گے, تاکہ پاکستان باہمی ہمت, محنت, امانت اور دیانت کے ساتھ آگے چلے. یہی قوم کی منشا ہے, یہی ہر پاکستانی کی آواز ہے, اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. پاکستان پائندہ باد.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए दफ्तर खारजा इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वजीर खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बुनियादी अवामिल मौजूद हैं। बलूचिस्तान की डिजिटल सेहत असलाहत को आलमी सेहत फोरम में बैन अक्वामी पजीराई हासिल हुई है। और शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतलात पर मबनी कार्रवाई के दौरान 5 खवारिज हलाक हो गए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: This is FM 101.
1: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। पहली अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े किया है कि किसी को एहतजाजी सियासत के जरिए मुल्की मईशत को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा। अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए दफ्तरे खारजा इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बुनियादी अवामिल मौजूद हैं। बलूचिस्तान की डिजिटल सेहत असलाहत को आलमी सेहत फोरम में बैनुल अक्वामी पजीराई हासिल हुई है। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतलात पर मबनी कार्रवाई के दौरान 5 खवारिज हलाक हो गए हैं। और बैनुल अक्वामी फौजदारी अदालत ने अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों पर जुल्म सितम के इल्ज़ाम में तालिबान के 4 सीनियर रहनुमाओं की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं।

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: Pakistan duniya ke un 10 mumalik mein shamil hai jahan pani ki qillat tezi se badh rahi hai aur hum daant saaf karte waqt nal khula chhod dete hain. घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की. एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है. तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं. नल बंद करें, पाइपों की मरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें. ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी. FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाए, पाकिस्तान बचाए.
2: This is FM 101.
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
4: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान.

0: Hi, this is FM 101.
1: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
2: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
3: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
2: बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्टपार्क है ना?
3: इन्वेस्टपार्क?
4: जी हाँ, इन्वेस्टपार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्टपार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
3: इन्वेस्टपार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
5: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहाँ पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
6: This is FM 101.
7: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
8: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: स्टॉप
1: तो फिर ट्यून करना मत भूलना आपकी अपनी आरजे शिबा मलिक को एवरी ट्यूसडे ओनली ऑन FM 101 लाहौर।
2: यू आर लिसनिंग टू FM 101 अबले बले और शाव शाव।

अलविदा शिबा मलिक, और क्या ही गाना है, मज़ा आ गया। आशिशानों की जो है एक मीनो सराई की जो गाने हैं उनमें डिफरेंट तरह के म्यूज़िक का तड़का लगाते रहते हैं, वो लगाते रहते हैं, हम प्ले करते रहते हैं और उसका मज़ा लेते रहते हैं। फील लाइक ओके ये ब्रो, ये तो मज़े का है।

0: जी, सर अक्टूबर 4 से लेके अक्टूबर 11 तक जो है बैक ईयर अवेयरनेस वीक है ये. बहुत सारे लोग जो हैं कमर दर्द की शिकायत करते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है. पहले तो चलो समझ में आता था कि ये प्रॉब्लम जो है किसी एक सर्टेन एज में जाके होती है, अब जो है बच्चे भी इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं और बड़े तो खैर कर ही रहे हैं, ज़िंदगी से तंग आए हुए हैं, बट बच्चे भी इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं. वन ऑफ द रीजंस के शायद उनके बैग्स जो हैं वो बहुत भारी भारी होते हैं, इसलिए उन बेचारों के साथ जो है ना वो बुरा हाल हो रहा है. बट येस, आपकी जो बैक है, आपकी जो कमर है, वो इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ वेट, नॉट स्ट्रेस ओनली, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा वेट. और रीढ़ की हड्डी जो है वो डिपेंड करती है, हमारी पूरी लाइफ उसके ऊपर बेस करती है. तो कमर दर्द को कभी भी लाइट मत लें, कभी भी ये मत सोचें कि अच्छा हो रही है, या कभी ओवर टाइर्डनेस होती है वो समझ आती है एक दो दिन या कुछ घंटे रेस्ट करने के बाद, यू विल बी फाइन. बट अगर कंटिन्यूसली है कुछ चीज़ें तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएँ, चेकअप करवाएँ. ये बात जब मैं आपसे कर रही हूँ ना, तो सडनली आई फील इट लाइक समबडी इज सिटिंग फ्रंट ऑफ मी एंड सेइंग शिबा आर यू डूइंग द सेम थिंग्स, एंड आई एम लाइक नो आई एम नॉट, आई एम रियली नॉट डूइंग द सेम थिंग्स. मैं बहुत केयरलेस हूँ इस मामले में, अनलेस समबडी इज जस्ट टेकिंग मी, जिसको कहते हैं ना धक्के दे दे के कोई मुझे लेके जाए, तो फिर जो है आई एम स्टार्टिंग टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. एनी वेज, सो 5 से लेके 9 तक इंटरनेशनल प्लाज्मा अवेयरनेस वीक भी है, उसके साथ साथ जो है मेंटल इलनेस अवेयरनेस वीक है 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक. ये हफ्ता जो है वो मेंटल इलनेस अवेयरनेस वीक है. इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ हमारी जो है किस किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रही है और क्यों इफ़ेक्ट हो रही है, पाकिस्तान में जो है ये केसेस दिन ब दिन क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे. सो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है. फिर उसके बाद है वॉक, फिर हाँ हेल्थ केयर, फूड, वर्कर्स, नहीं आई एम गोना पिक दैट 2 इम्पॉर्टेंट डेज. और फिर उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है अक्टूबर का, तो हम इसके बारे में जो है ज़्यादा बातचीत करेंगे. एक और गाना लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है आप लोगों के मैसेजेस शामिल करेंगे. सो वी गोना गो विद द फ्लो, और फिर उसके बाद जो है शो कंटिन्यू रहेगा. ओके, क्या बात है, 4471 इट्स वर्किंग, आई वाह क्या बात है. सो हियर वी गो विद दिस. आसिम अज़हर का नया गाना आ गया और छा भी गया. आसिम अज़हर आई आसिम अज़हर कोक स्टूडियो में, मैं सोच ही रही थी कि कब आएगा, लेकिन पहले क्या मैं वही प्ले करूँगी, हाँ मैं वही प्ले करूँगी, श्योरली मैं वही प्ले करूँगी.
1: जलन हो रही है,
2: रहेगा

आई वाह क्या बात है माया तेरे प्यार विच जिंदगी क्या बात है. आई मीन आई जस्ट लव दैट. बस छा गए हैं कुछ गाने अब वैसे ही होगा लास्ट टाइम वाला सीजन और ये वाला सीजन इज गोइंग टू रॉक आई गेस. सो लाइक वो उसके भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले. अच्छा कुछ लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं पिछले वाले दो तीन ट्रैक लेके और ये वाले के नए गाने. अब हम तो पहले वाले से के खुमार से नहीं निकले थे अब ये नया शुरू कर दिया है. ऐसे ही है भाई पाकिस्तानी म्यूज़िक.

Alright, जी, so, पाकिस्तान में इस वक्त जो है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा है कि we're gonna see that कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, शदीद जिसको कहते हैं ना, वो हो रहा है. पाकिस्तान इज वन ऑफ द एशियन कंट्री जो है हाईएस्ट रेट है ब्रेस्ट कैंसर का एशिया में, और ऑलमोस्ट अपनी लाइफ में 1 से 9 तक, मतलब 9% आप कह सकते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं. उसमें से ऑलमोस्ट 80% ख़वातीन को पता ही नहीं होता है कि उनके साथ ब्रेस्ट कैंसर जैसी कोई चीज़ हो गई है, बिल्कुल भी उनको पता नहीं होता. जब तक उनको पता चलता है वो 3rd-4th स्टेज पे आ चुकी होती हैं कि उनका ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता. पहले कॉन्सेप्ट था कि एक सर्टन एज लाइक आफ्टर 40s-50s में जाके ये इस तरह की चीज़ें जो थी वो डायग्नोस होती थी, या कहीं रेयर जाके किसी के साथ होता था प्रॉब्लम. बट अब ऐसा है कि अर्ली एज जो है, यू कुड जस्ट से दैट 25 से अबव जो हैं उनके साथ भी जो है ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम हो रहा है. और ये जो डिज़ीज़ है, ये जो प्रॉब्लम है, मैंने जैसे कि पहले कहा कि ऑलमोस्ट 80% लोगों को पता ही नहीं है. 70% लोग ऐसे हैं जिनको पता चलता है वो अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड ही नहीं कर पाते. 80% लोगों को पता ही नहीं होता. जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर पाते वो अल्लाह का नाम लेके बस कहते हैं, वो कहते हैं ना ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं, उनके साथ ऐसे होता है. खैर, अब टाइम के साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं. अवेयरनेस जो है वो आ रही है लोगों को, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, सोशल अवेयरनेस जो है वो बहुत सारी जगहों पे दी जाती है. हमारी जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, दे आर प्लेइंग मेजर रोल इन इट, और वो बता रही हैं जैसे जो रूरल एरियाज़ हैं, फिर उसके बाद कल्चरल टैबूज़ हैं कि लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं. तो एक काइंड ऑफ अ सोशल स्टिग्मा के लोग इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं कि ओ हो लोग शर्म से पानी पानी हो रहे होते हैं इसके बारे में बात करना. जब हद से ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती हैं, फिर उसके बाद कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे कि रूरल एरियाज़ जो हैं वो ऐसे ही हैं, वहाँ पे इसके बारे में बात ही नहीं होती अगर किसी के साथ इस तरह हो जाए. सो दे अवॉइड दैट. इतनी अजीबो गरीब किस्म की डिस्कशंस होती हैं दैट अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो. इस तरह की डिस्कशंस होती हैं कि शर्म आना शुरू हो जाती है उनकी सोच को सुन के. सो एक चीज़ जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जो कि घर में ख़वातीन बैठी हुई हैं जो कि अपना ख्याल रख सकती हैं, आप प्रॉपर ख़ुद से भी अपना चेकअप कर सकती हैं. कभी किसी किस्म की कोई गिल्टी, कोई थिकनेस, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ आपको अंडर आर्म्स में या आपको ब्रेस्ट में किसी किस्म की कोई चीज़ फील हो, सो यू बेटर बी जस्ट कि ये नॉर्मल नहीं है, तो आप डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसर्न करें. अपना ख्याल आपने ख़ुद रखना होता है सबसे पहले, फिर कोई दूसरा आपका ख्याल रखेगा. सो जस्ट ट्राई टू फील इट कि अगर कोई दूसरा बंदा आपको इसके बारे में अवेयरनेस दे रहा है तो ये सिर्फ इतनी छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है. और एशिया में पाकिस्तान जो है हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन एशिया, तो ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है. इट्स थॉट प्रोवोकिंग, इसके बारे में बात भी करनी चाहिए. स्क्रीनिंग कराएं एवरी 6 मंथ. अगर आपकी फैमिली में किसी को इस तरह की हिस्ट्री है तो एवरी 6 मंथ जो है अपना चेकअप कराएं, अपनी जो है स्क्रीनिंग करवाएं अच्छे किसी प्रॉपर हॉस्पिटल से. सेल्फ एग्जामिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, ठीक है, उससे आपके रिस्क फैक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं. तो सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो अपनी करें. अगर आपको कोई भी किसी किस्म की चीज़ लगती है कि ये ऐसा है, कोई लंप है, कोई ऐसी चीज़ है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ पे स्क्रीनिंग कराएं, स्कैनिंग कराएं, उससे आपके रिस्क फैक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं. तो सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो अपनी करें. अगर आपको कोई भी किसी किस्म की चीज़ लगती है कि ये ऐसा है, कोई लंप है.

इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि लोग अवेयर रहें। सो ये तो मेजर चीज़ थी जो कि आज के शो में डिस्कस करनी थी, एंड आई वाज लाइक ओके ये हमने जाके लाजमी करनी है, क्योंकि कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सुनने देखने को मिलती रहती हैं। और हम आपस में यही बात कर रहे होते हैं ना कि यार ऐसे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे मैंने अभी 40s 50s के बाद जाके सुनने को मिलता था, अब 25 के बाद एनीथिंग कुड बी विद एनीवन। Alright, here we gonna go with the 4471 के messages जो हैं वो शो में शामिल करने जा रहे हैं। सो आप लोग मैसेज कर रहे हैं, शो में शामिल हो रहे हैं, थैंक्स लॉट। बतूल ने मैसेज किया है, समरीन ने मैसेज किया, थैंक यू सो वेरी मच। और कह रही हैं कि जिन लोगों ने बदुआएं दी थी पिछले हफ्ते, हम लोगों की बारी ही नहीं आई है, लगता है कि बदुआएं लग गई हैं। सुनने में आया है कि कुछ ऐसे लोग शो में तशरीफ ला चुके हैं जिनसे शिबा आप नाराज थी, बतूल कह रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, आपने याद भी करा दिया कि मैं नाराज हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है, वो नाराजगी रहेगी, टेंशन ना लें आप। समरीन कह रही है कि शिबा तबीयत कैसी है, आवाज़ अभी भी लग रहा है कि थोड़ी ख़राब है, अपने बीपी की बताओ, बीपी की सुन लो भाई क्या हुआ। मुझे नॉर्मली मेरा बीपी हाई होता है फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 15-20 डेज, ऐसा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं मुसलसल, और मैं कह रही हूँ कि कुछ तो हो रहा है, खाने पीने में कुछ हो रहा है, या और मैं इस बात से डर रही हूँ कि मेरा तो बीपी जो है वो हाई होता है, सो आई एम नॉट टेकिंग लाइक प्रॉपर, जिसको कहते हैं नमक और इस तरह की चीज़ें नहीं खा रही हूँ। खैर पहुँचते पहुँचते बात जो है डॉक्टर तक जा पहुँची, डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि मेरा तो बीपी जो है लास्ट 15 डेज से वो लो चल रहा है। आई एम लाइक लो मेरा क्यों कैसे। सो उन्होंने कहा कि जी आपका ऊपर नीचे वाला जो बीपी है ना वो काफ़ी लो है, एक 90 पे चल रहा है, एक 60 पे चल रहा है, और कह रहे हैं कि हाँ जी इतनी विल पावर कहाँ से आई कि चलती फिरती जो है वो हॉस्पिटल तक आई। ऐसी जब बात हुई मैंने कहा आई विल टेक इट एज एन कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज जिस तरह के मेरे हालात चल रहे हैं, जिस तरह की मेरी सिचुएशन चल रही है ना, आई विल टेक इट एज एन कॉम्प्लीमेंट कि मैं जो हूँ पहुँची हूँ। फिर उसके बाद ड्रिप लगाई गई और अब भी स्टेबिलिटी है, कोई नहीं है ब्लड प्रेशर की, बट हो जाए ठीक। मैं ये सोच रही थी कि यार बीपी लो के कोई मज़े नहीं है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं शायद दुनिया की वाहिद बंदी हूँ जो ये कह रही है कि बीपी लो के कोई मज़े नहीं है। हाई बीपी जो है वो आपके कम से कम जो है बड़ा भी नुकसान करेगा, इतना हाई हो जाएगा तो आपकी ब्रेन की नसें फट जाएंगी। लो में तो चक्कर आते रहते, दुनिया घूम रही है, आपको लग रहा है लेटो लेटो लेटो। खैर एनीवेज डायग्नोसिस ये है कि जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं मेरे अंदर, कुछ तो स्ट्रेस है, कुछ उसके बाद विटामिंस हैं, कुछ ये कुछ वो, तो कुल मिला के ये है कि बीपी की ये कहानी है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि अगर आपका बीपी हमेशा लो होता है तो ये मत सोचे कि हाई हो सकता है, और अगर हमेशा हाई होता है तो ये मत सोचे कि बीपी कभी आपका लो नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने इस बात से पहले कह दिया था एनीथिंग कुड बी पॉसिबल विद एनीवन, तो कुछ भी हो सकता है। जरियोन ने मैसेज किया, सलाम अलैकुम शिबा जी कैसी हैं आप, अल्लाह आपको सलामत रखे सेहत दे, और लगता है कि आपको किसी की नज़र लग गई है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, क्या करें। बतूल कह रही यार अपना कोई सदका तो दे दो, हाय कभी इतना प्यार करते थे लोग के मेरे सदके दिए जाते थे, अब हम कहाँ से लाएं वो लोग। ओके शिबा जॉब चली गई है क्या करूं। ओके वी आर ऑन द सेम पेज, हाई फाइव। सो सिंस लास्ट मंथ मेरे पास भी कोई काम है नहीं है और जॉब चली गई, यू नो दैट जैसे मैंने पहले कहा कि सारी चीज़ें दैट इमोशनल ट्रॉमास फाइनेंशियल ट्रॉमास, ये सारी चीज़ों ने मिल के जिसको कहते हैं ना मुझे बता दिया, वो कहते हैं लग समझ गई है मैनू, अल्लाह की कसम। सिमरी ने मैसेज किया है कि वैसे तो बात नहीं करनी थी हमने, लेकिन चलो अगर आ ही गई है बिनिश तो उसको खुशामदीद कह देते हैं। बतूल ने मैसेज किया है कि वैसे ये कोई तरीका नहीं है कि अगर आपको कोई प्यार करे और आप उसके साथ बात ही ना करो और बताए बगैर गायब हो जाओ, कुल मिला के ये शिबा के लोगों को मोहब्बत की कदर नहीं है। और कुल मिला के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम चाहती हो कि मैं जो हूँ आज भी थोड़ा थोड़ा ना हिसाब बराबर कर दूँ।

my dear listeners, welcome back. Okay, so it is mental illness awareness week hai. So uske bare mein bhi baat karenge ki kis kis tarah se log jo hain wo mental illness ka jo hai wo shikar ho rahe hain, kaise kaise logon ke sath jo hai na problem ho rahi hai. और पाकिस्तान में जो है ये बात बढ़ती ही चली जा रही है. पाकिस्तान में जो है ऑलमोस्ट सेवरल मेंटल केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं. ऑलमोस्ट 24 to 50 million लोग जो हैं वो इस चीज़ के लिए जो है उनको केयर की ज़रूरत है. येट 90% अंडर रेटेड मैसिव प्रोफेशनल जिसको कहते हैं ना शॉर्टेज है अवेयरनेस की. अगेन इट्स काइंड ऑफ अ कल्चरल स्टिग्मा एज वेल. People are really not taking it so serious. लोगों को लगता है कि अगर किसी को कोई दिमागी बीमारी है जो कि anxiety, depression, stress, disorder और पता नहीं कौन सी चीज़ें हो सकती है, लोगों को लगता है ये पागल हो गया है. सबसे पहली बात जो आती है ना वो कहते हैं यार ये पागल है, पागल खाने में दाखिल करवाना है. सबसे पहली अप्रोच ही लोगों की ये होती है. सो जैसे कि मैंने पहले कहा कि अंडर रेटेड है, लोगों को ट्रीटमेंट का नहीं पता, लोगों को यही नहीं पता. और मैसिव जिसको कहते हैं ना प्रोफेशनल इलनेस अवेयरनेस है लोगों की इस बारे में. कभी कभी लोग जो हैं सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से इतने ज़्यादा ट्रामा में चले जाते हैं कि उनको खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है, उनके आसपास क्या हो रहा है. आई लिटरली एक्सपीरियंस लाइक लास्ट ऑलमोस्ट 10 days दैट आई लिटरली एक्सपीरियंस दैट you know kind of anxiety and depression that I've been through and I am having that. aur upar se chakkar aa rahe the, mujhe aise lag raha tha ki main lost hu. last week saturday sunday mere usme calendar mein mujhe lag raha tha hai hi nahi hai. it was one's birthday on 1st of october and I was so lost. when I saw the picture I said oh okay, ye to first ko wo tha birthday thi fm ki. main itni zyada wo lost chal rahi thi. तो कभी कभी लॉस्ट होना आपकी एंजाइटी और आपका डिप्रेशन आपके पैनिक अटैक्स जो हैं उसको एक प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, प्रॉपर जिसको यूनियन की ज़रूरत होती है कि लोग आपके साथ खड़े हों. सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ तब हो सकती हैं बेहतर अगर आपके पास अच्छे लोग हैं, आपको अंडरस्टैंड करने वाले लोग हैं. सो ये आपके साथ तब हो सकता है. एक और ज़रूरी चीज़ है आज उसके बारे में भी बात हमने करनी है. और ये बहुत ही बढ़ता चला जा रहा है हमारी सोसाइटी में, इसके बारे में भी बात करेंगे. फेसबुक पे आप पे मैसेजेस शामिल करेंगे. साहब जी हैं हमारे साथ और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. अली हमज़ा, पुराना लिसनर हूँ, अनपढ़ फ्रॉम लाहौर. ओके अली हमज़ा, समझ आ गई है. ठीक है जी हमज़ा, कैसे हैं आप? ठीक हैं. फिर उसके बाद है मोहम्मद हमज़ा हैं हमारे साथ मुसावली से. वेल जी थैंक यू सो वेरी मच. हाँ बिनिश है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, गुड इवनिंग, वेलकम टू आर मस्ती शो. सलाम टू ऑल हवाई फ्रेंड्स. तबीयत कैसी है अब आपकी? होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट. आई एम ट्राइंग टू. क्या लेंगी आप, ठंडा या गरम? कॉफ़ी आई गेस. सो हॉट कॉफ़ी शायद, उससे बीपी भी थोड़ा सा ठीक रहेगा. थैंक यू सो वेरी मच एंड होपिंग द सेम फॉर यू बिनिश. आज आप अकेली शो कर रही हैं, जेंसिस भी साथ है? नहीं आज हम अकेले करेंगे, दो शो उनके साथ हो गए हैं. अच्छा जी एजाज अली ब्रदर कम फास्ट टू द शो अदरवाइज द कार विल रन आउट. हाँ ओके एजाज है. अस्सलाम वालेकुम शिबा जी, कैसी हैं आप? कैसे हैं सब दोस्त? और बिनिश सिस आ गई है, वेलकम बैक. वैसे हम सब आपसे नाराज़ हैं, नादर भी नहीं अभी तक आया, खावर भी गायब है. यस तो हम यही सोच रहे हैं कि नाराज़ है, एकदम उछलती कूदती आफत मचाती. सही, अच्छी बात है कि आफत मचा रहे थे और हम यहाँ पे परेशान होकर बैठे हुए थे कि अल्लाह खैर ही करे क्या हुआ होगा. मुझे बहुत ही बुरी लगती है ये बात कि कभी कभी आप लोगों के बारे में इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, इतना वरीड होते हैं और आपकी जान जिसको कहते हैं ना लबों पर आई होती है. और जब वो बंदा वापस आता है वो ये सोच रहा होता है कि जो है वो ये सोच रहा होता है कि अगले बंदे के साथ कोई मुश्किल चल रही थी. और हियर वी गो, प्रेसिडेंट हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनकी जो है वो शिरकत है इस तकरीब में, तो अब हम वहाँ जाएंगे. सो स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग. आई डोंट नो व्हेन आई एम गेटिंग बैक.

0: 6 PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister has directed the authorities to formulate a comprehensive plan for gas load management during the winter season. The United Nations Secretary General has lauded Pakistan's diplomatic efforts to promote dialogue, mediation and de-escalation. The Deputy Prime Minister says Pakistan's efforts have brought the United States and Iran to a direct dialogue after 47 years. The Finance Minister has emphasized on expanding financing opportunities for the small and medium enterprises, agriculture and housing. Security forces have killed 5 Khawarij during intelligence-based operation in North Waziristan. The Indian illegally occupied Jammu and Kashmir Chief Minister has rejected the Bharatiya Janata Party-led Indian government's move to impose the Uniform Civil Code in the held territory.
1: Hi, this is FM 101.
2: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
3: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
4: Government securities में invest करना है. आज apply करने का आखिरी दिन है और bank के time भी खत्म होने वाला है.
3: नहीं, bank जाने की क्या जरूरत है? InvestSpark है ना?
4: InvestSpark?
5: जी हाँ, InvestSpark से अब आप घर बैठे government securities में invest करें. ना bank का झंझट, ना कतार, ना इंतजार. InvestSpark web portal या mobile app पर जाएं. और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें.
4: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा.
6: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहाँ पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं. घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की. एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है. तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं. नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें. ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी. FM 101 इस्लामाबाद. पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं.
7: This is FM 101.
8: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
9: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

Alrighty, once again, assalamu alaikum and good evening all of you. FM 101.2 Pakistan Lahore se RJ Shiba Malik aapke saath Lahore on hai and I hope that you are enjoying the show and all the breaks that we are having in between. कि स्पीच आ जाती है, कुछ ना कुछ आता जाता रहता है, सो वी आर इन्जॉइंग दैट टू. और सी अभी इजाज़ का भी एक मैसेज आया कि जी बिनिश इसको एक मौका दें कि वो एक्सप्लेन करे. और अभी मेहरीन की कॉल आई थी, मेहरीन वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग और कह रही थी कि मेरी तरफ से बिनिश की थोड़ी क्लास भी ले लेना, लेकिन उसको एक मौका तो दो कि वो एक्सप्लेन करे. तो मैंने कहा कि मैंने पूरा हफ्ता वेट किया दैट शी गुड हैव कम एंड टेक्स्ट मी और सेइंग एनीथिंग कि ठीक है ये मेरे साथ हुआ था. बट अगेन इस बात पर दोबारा गुस्सा आ गया मुझे कि ये भी नहीं हुआ. राइट, गुड, वेरी नाइस. सो फरहान नकाम कोशिश ना करो दिमाग चलाने की. ओके, ये कह रही है बिनिश. अच्छा, तो ये बिनिश ही है. सही, ठीक हो गया. ये वही वाली बात है. ओके, ठीक है, तो ये बिनिश ही है. यानी वी वर ऑल लाइक ओके, अच्छा जी, ठीक है. लिटरली अगर इस तरह हम कर सकते हैं ना, तो बंदा बांध के ऐसी फेंटी लगाए ना. ये करेले की बेल मेरे घर लगी हुई है, जूस पिला के अब आप सब के वायरस जो है ख़त्म करके रहूँगी. बच के रहना. ओके, वी गॉट इट. शिबा बीपी लो का जो है मसला, वो जो मेरे पास एक इलाज है, आप फ्री होकर रब्ता कर लेना, मैं आपको बता दूंगा. तारिक कह रहा है ठीक है जी. जाशा कह रहे क्या हाल है, खैर है. शिबा जी एक मौका दें. यहाँ देखा ना, खैर ख्वाह भी हो और फिर उसके बाद मुझे एक तरफ से भड़का भी रहे हो. बतूल ने मैसेज किया है, बतूल मैसेज करके कह रही है कि वेलकम तो तुम्हारा बनता है, तुम्हें मिस भी किया. और ऑफ कोर्स शिबा की फिक्र जो है वो जायज़ है, हम भी सब वरीड थे कि क्या हुआ. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल ओनली, दैट्स द पॉइंट कि आई वॉज वरीड. ऑफ कोर्स वी आर ऑल वरीड एंड व्हेन पीपल आर कमिंग टू आस्क मी दैट वेयर इज शी एंड व्हाट हैपेंड टू हर एंड आई वॉज स्पीचलेस, आई वॉज लाइक मेरे मुझे भी नहीं पता एंड दैट वॉज द थिंग दैट हर्ट मी मोर. तुमने भी वही किया ना कि किसी नाकदरे शख्स से मोहब्बत कर लो और फिर उसके बाद जो है ना आप उसको सोने के प्याले में आबे हयात भी अगर दोगे ना, तो उसने क्या करना, वो प्याले से आबे हयात के पानी से उसने अपने ना पाँव धो लेने. उसने ये नहीं समझना कि जो है ना वो मुझे जो है वो किस चीज़ में क्या चीज़ जो है वो मुझे पेश कर दी गई है. तो वो उसको सीने से लगाने की बजाय, होंठों से लगाने की बजाय, उस चीज़ की कदर करने की बजाय ना वो उसे पाँव धो लेगा. तो कभी कभी मोहब्बत में ये भी हो जाता है कि किसी ऐसे इंसान से मोहब्बत कर लेते हैं, किसी ऐसे चीज़ से, ऐसी पर्सनालिटी से कि आप उसको सोने के प्याले में आबे हयात भी देंगे ना तो वो पाँव धो लेगा, उसको होंठों से नहीं लगाएगा कि हाँ यार, उसे पता ही नहीं क्योंकि उसकी कदर क्या है, उसकी वैल्यू क्या नहीं पता है.

अच्छा जी, सो इट इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, अक्टूबर का महीना जो है, और इसके बारे में हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया, वो बात की, और हम लोगों ने जो है बताया आपको कि पाकिस्तान में जो है क्या क्या कुछ हो रहा है. मेंटल इलनेस जो है, अब उसके बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो है मेंटल इलनेस किस हद तक जो है वो पहुंच चुकी है, और लोग जो हैं वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं. पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द, अगेन वन ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम द एशियन जिनके पास ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो जो है मेंटल इलनेस का शिकार हैं बहुत सारे लोग. एंड अगेन लैक ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं जिनका स्ट्रेस, एन्जाइटी, पैनिक अटैक और डिप्रेशन जो है वो मेंटल इलनेस में, सिकनेस में बदल जाता है, क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, उनको अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं होता. आई ऑलवेज बिलीव फर्मली कि जब कोई इंसान मुश्किल में होता है, परेशानी में होता है ना, तो अगर उसके साथ कोई ऐसा बंदा खड़ा हो जाए ना जो कि बता सके कुछ भी नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हूँ ना, इतना कह देना बहुत होता है. और कभी कभी सिर्फ इसी की ज़रूरत होती है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. अच्छा जी, नाउ वी गोना गो विद दिस सॉन्ग, और फिर उसके बाद वापस आते हैं. स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग. फिर आप लोगों को बताएंगे कि हमारा टॉपिक क्या है आज का, और उसके ऊपर हम लोग लेंगे, आई होप सो कि लाइव कॉल्स ले सकें हम. आई होप सो.

and sisters, welcome back. Okay, जी, अच्छा मैंने मुझे पेन कहीं से मिला रिसेंटली, तो मैंने ना वो देखा नहीं था, अभी मैं लिख रही थी तो मैंने गौर किया कि उस पेन के ऊपर कुछ लिखा भी हुआ था. कभी कभी कुछ चीज़ें आसपास होती हैं, पता ही नहीं चलता है. हाँ जी, कौन है, क्या है? बतूल कह रही है कि चलो माफ़ी दे दो और एक मौका दो तो सही. हुआ क्या था वैसे? एक पूरा हफ्ता था, बता भी सकती थी बिनेश. यही तो मैं कह रही हूँ कि पूरा एक हफ्ता था, उससे पहले भी टाइम था, फिर भी नहीं बताया. और आगे मुझे कह रही है कि मुझे, मतलब मैं जज कर रही हूँ, लाइक सीरियसली एक चपेट इसको पड़ी हो ना. ऐसे मौके पे वो मौला अली का कॉल याद आ जाता है. मौला अली कहते हैं कि रिश्ते अगर निभाने नहीं होते हैं ना, आपको पता ही नहीं है कि वैल्यू क्या है, तो रिश्ते बनाया ही ना करो, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके रिश्ते बनाने के चक्कर में कोई बंदा जो है कितनी बुरी तरह जो है ना वो टूट जाता है. तो कुछ लोगों को गट्स ही नहीं है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि रिश्ता जो है वो बनाना कैसे, चलाना कैसे. कुछ लोग बड़े ही निकम्मे होते हैं इस बारे में. और ऐसे लोगों को मैं यही कहती हूँ कि मौला अली जो है खुद ही पूछ लें तो अच्छी बात है. अच्छा, भड़का भी रहे हैं, फिक्र भी कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है उसको एक मौका दो. कहाँ से दूँ उसको? लिख के पर्ची दे दूँ कि हाँ ठीक है मौका दे दिया है तुझे भाई. राइट. अच्छा जी, सो जरियोन ने कहा है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शिवा. मेरी लाइफ में भी एक टाइम ऐसा आया था कि मैं इमोशनल ट्रॉमा से इतना गुजरा हूँ बुरी तरह कि लोग मुझे पागल कहना शुरू हो गए थे. अब आपसे क्या छुपाना है कि किसी ने प्यार में 5 साल के बाद धोखा दे दिया और पता चला कि मैं उस वजह से इतना मेंटल सिकनेस में गया कि सारे लोगों ने मुझे पागल कहना शुरू कर दिया. और जब ये चीज़ें, जब तक मुझे इन चीज़ों की समझ आई, मेरा बहुत नुकसान हो चुका था. यही तो मैं कह रही हूँ, लोग नहीं समझते हैं सीरियसली. लोगों को लग रहा होता है कि मजाक है. दाद देनी पड़ेगी ऐसे सारे लोगों को जो इमोशनली इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो डील कर सकते हैं और उनको लोग पागल नहीं कहते. वैसे तो लोग ये भी कहते हैं कि ये जो तुम कह रहे हो ना जरियून, कि अगर प्यार और मोहब्बत आपको पागल ना कर देना उस हद तक, तो चाहत का मज़ा भी नहीं होता. जी फरहान कह रहे हैं वैसे बात तो सही है, एक्सप्लेन करना चाहिए बिनिश को. हम क्या फिर एवं ही वेट कर रहे थे इनका? नाकाम कोशिश नहीं की लड़की. अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है मेरा. ओके, नईम हैं जी, पूरी टीम को सलाम कह रहे हैं. बेस्ट आरजे, थैंक यू सो वेरी मच. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया. लो जी, अब भाग गई है बिनिश. कहाँ भाग गई है बिनिश? तुम्हें बहुत मार पड़ जानी है मेरे से, सीरियसली. सिमरी ने मैसेज किया है कि शिवा अपनी सेहत का ख्याल रखो, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम्हें भी नज़र लग गई है. सदके जाऊं तुम्हारे सदके उतारने के लिए, हम तो यहाँ पे बेकरार बैठे हुए हैं. हाउ स्वीट, सच वुट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहो. अच्छा, मैंने वो अभी तारीफ़ की थी गाने की ना, कि अच्छे अच्छे गाने जो हैं वो आ रहे हैं हमारे सामने. तो झोल गाना जो अब आ गया लास्ट टाइम कोक स्टूडियो का था, बहुत ही ज़बरदस्त गाना था. हाँ हाँ, क्या बात है उसकी. बतूल कह रही है कि सही कहा है कि लोगों को डायग्नोज होते होते ही मौत वाकया हो जाती है. ऐसे ही है, जब तक इलाज पता चलता है, बहुत सारे लोग वाकई ही इस जहाने फानी से कूच कर चुके होते हैं, पता ही नहीं चलता उनके साथ क्या कुछ हुआ है. कुछ लोगों के मसले ही पता नहीं चलते कि उनके साथ क्या हो गया था. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ इतने मसले मिसाइल हो जाते हैं कि जब वो मर भी जाते हैं, लोग कहते हैं किसी जादू टूने से मर गया है. और वो लोग जो हैं वो किसी स्वीयर बीमारी की वजह से मर जाते हैं. अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही कुछ नहीं है. पहले बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती थी, डायग्नोस नहीं था होता, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं थी मिलती, लोग कहते थे किसी ने जादू टूना कर दिया है. ओके, नाउ आई एम गोइंग देयर, हियर वी गो.

भाई जी, एक और चीज़ आप सभी लोगों को पता है कि स्कूटी वाला जो है वो काम बहुत जगह पे ख़राब हुआ हुआ है। वो इस तरह ख़राब हुआ है कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्कूटीज़ को आग लग रही है और नतीजे ये निकल रहे हैं कि ओवरचार्ज होने की वजह से जो है वो ये चीज़ें हो रही हैं। सो प्लीज़, अगर आप स्कूटी चला रही हैं तो उसका ख्याल भी रखिए। और हमारी जो CM साहिबा हैं, उन्होंने तुलबा के लिए जो है अगेन इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है उसको प्रॉपर अगेन कहा है कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनको दी जाएंगी स्टूडेंट्स को। और आप कैसे जो हैं पंजाब ई बाइक स्कीम जो है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, वो पोर्टल पे जाइए और जाके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको मिल जाएगी और आप देख लेंगे कि आपने कैसे कैसे जो है अप्लाई करना है। बेसिक थिंग है, आपके पास लाइसेंस जो है वो होना ज़रूरी है। इफ़ यू आर 18 प्लस, सो यू मस्ट हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमें मुँह उठा के जाने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र है बतूल, आपने मौका दिलवा दिया, वरना मैं तो था ही मर जाना था। बस करो, रिलेशनशिप निभाने का पता है तो वापस आई हूँ। सो व्हाई यू डिडंट कॉल मी, टेक्स्ट मी, व्हाई यू डिडंट टेल मी, इज इट द ओनली प्लेटफॉर्म दैट यू कैन कॉन्टेक्ट, इज इट द ओनली प्लेटफॉर्म यू नो दैट हाउ यू कैन रीच मी, लाइक सीरियसली बिनिश। मैम आप भी ये ना बोलिए, अगर आप नाराज हैं, व्हाई यू डिडंट कॉल मी, टेक्स्ट मी, व्हाई यू डिडंट टेल मी, इज इट द ओनली प्लेटफॉर्म दैट यू कैन कॉन्टेक्ट, इज इट द ओनली प्लेटफॉर्म यू नो दैट हाउ यू कैन रीच मी, लाइक सीरियसली।

here like with that BP low. तो मैंने कहा ये तो compliment है कि मैं पहुंची हूँ. Survival. जरियून कह रहा है कि शिबा हमारी जो मेंटल इलनेस आती है वो हमारे अपनों से आती है, वो जिनको हम प्यार करते हैं उनकी वजह से आती है, वरना अल्लाह ने तो हमें अच्छा ही बनाया था, सेहतमंद ही बनाया था. लेकिन एक चीज़ ये भी है ना कि अल्लाह ने हमें इस जज्बे के साथ पैदा किया है, चाहे जाने का अमल चाहे जाना हर एक को अच्छा लगता है, और अल्लाह ने ये चीज़ हमारे अंदर रखी है. वी बी बॉर्न विद दैट इन बिल्ड फीचर. तो ये हमारी अपनी ऐसी चीज़ नहीं है कि ये हमने खुद से सीखी है, हम इसके साथ पैदा हुए हैं. सो जस्ट वी कांट डील इट. हाँ, ये ज़रूर किया जा सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे अच्छे लोग आएँ जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी हर तरह की आपका हर तरह से साथ दें, आपको ऐसा ना लगे कि वो आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको बर्बाद ही करेंगे. बल्कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ बर्बाद है तो वो उसको इस तरह लेके चलेंगे, आपको इतना निखार देंगे कि लोग जो हैं वो ट्रस्ट ही ना कर सकें कि क्या ये वही बंदा है. लो जी, मलकू का जो गाना आ गया है ऐसा मज़ेदार गाना है, तो वो प्ले करने जा रही हूँ. हक्कड़ बक्कड़, हियर वी गो. दो दिन पहले ये, तीन दिन पहले ये गाना आया है, सो हियर वी गो विद दिस.

0: हाय डिलीशियस, वेलकम बैक. ओके जी, सो अब जो है हम लाइव कॉल का सिलसिला जो है वो स्टार्ट करेंगे. टॉपिक हमारा ऑफ कोर्स कुछ अवेयरनेस की चीज़ें जो हैं डिस्कस की हैं. सो टॉपिक हमारा थोड़ा लाइटर जो है वो रखेंगे कि ज़िंदगी में जो है बेहतरी जब आ जाती है तो सबसे पहले हम अपने प्यारों को, आई वॉज रीडिंग समथिंग, हाँ, तो जब हमारी ज़िंदगी में कुछ बेहतर चीज़ें होती हैं, जब हमारी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आना शुरू हो जाती है, तो हम सबसे पहले ऐसे ही लोगों को अपनी ज़िंदगी से क्यों निकालते हैं जिन लोगों ने हमारा बुरे टाइम में साथ जो है वो दिया होता है. सबसे पहले हम ऐसे लोगों को क्यों निकालते हैं? मैंने ये चीज़ बड़ी ऑब्जर्व की है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक ये चीज़ बढ़ गई है कि जो लोग हमारे साथ होते हैं ना, हमारे बुरे टाइम में हमारा साथ दे रहे होते हैं, जब हमारे ऊपर कोई अच्छा टाइम आता है, कुछ भी होता है ना, तो हम सबसे पहले उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं. वो कौन सा डर है, वो कौन सी चीज़ है जो हमें ये करने पर मजबूर कर रही होती है? सो आज जो है हम इसके बारे में बात करेंगे. लेट्स सी हु इज़ कॉलर विद अस. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से?
1: मैं बिस्मा बात कर रही हूँ, लाहौर से.
0: बिस्मा कैसी हो?
1: मैं ऑन ईयर हूँ.
0: यस, ऑन ईयर.
1: अच्छा अच्छा, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का. और आपके लिए दुआएं हैं ढेर सारी.
0: आमीन.
1: आपको तो मैंने बताना था, ऐसे होता है जो लो होते हैं ना, लो ब्लड प्रेशर होता है.
0: अल्लाह के बंदे, प्लीज जरा ये पंखा बंद कर दो, मेरी तो फ्रीज हो गई है टांगे. आप रिमोट भी उधर ले गए हो.
1: पंखा बंद कर दे
0: यार, एसी का पंखा बंद करा रही हूँ, वो रिमोट भी साथ जियाला ले गया. रिमोट तो दे जो. मैं कांप रही हूँ यहाँ पे.
1: तो भाई इधर हम गर्मी में बेचारे
0: नहीं, बहुत एक्स्ट्रा ही कूलिंग हुई हुई थी ना, तो मैं कब से कर रही हूँ वो.
1: ये जो गर्मियाँ जा रही है तो बता के जा रही
0: है. हाँ ना, सही वाली, सही.
1: आज इतनी गर्मी थी,
0: गुस्सा कर कर के जा रही है कि मैं नहीं जाना.
1: हाँ, वो मैं बता रही है कि मुझे भूलना मत, जा रही हूँ मैं.
0: सही. तो क्या कह रही थी आप?
1: ये चीज है, मैं बस ये कह रही थी कि जिनका लो ब्लड प्रेशर होता है ना, उनको डॉक्टर कहते हैं आप लेटे नहीं, ठीक है, आप पर उनको नींद आ रही होती है, वो भाग भाग के लेटने को भागते हैं. और जब बीपी हाई होता है, वो ना इतना ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, जब बीपी हाई होता है ज्यादा ही गुस्सा करना शुरू कर देते हैं. मेरी मम्मा का अक्सर हाई होता है ना, तो वो इतना ऊंचा बोलती है और वो ऐसे गुस्सा करती है. अब ऐसे नहीं करना चाहिए, शायद बीपी हाई की वजह से वो सुकून से लेटते ही नहीं है. ये उल्टा ही सीन है, ये सीन होता है.
0: ऐसे ही है.
1: मैं सुन रही थी और मैंने कहा अटेंडेंस लगा लूं, और मैंने गाना रिक्वेस्ट करना था.
0: टाइम नहीं है यार गाने की रिक्वेस्ट ना करना, ठीक है?
1: अच्छा, आप अपनी मर्जी से लगा रही हो आज?
0: नहीं, मैं गाना जाते जाते जो होगा लास्ट में लगा जाएंगे. टाइम 34 तो हो गए हैं, और कोई 20 मिनट की कॉल चलेंगी और फिर जाने का वक्त हो जाएगा. हाँ, तो फिर क्या ही गाना लगेगा.
1: और ये मैंने बताना था कि बस ये जो म्यूजिक होता है ना, ये इंसान की मतलब आवाज पे भी बस ना हैवी हो जाता है. ये म्यूजिक है जिसकी वजह से हमें गाने अच्छे लगते हैं. ये ना हो तो बहुत से सिंगर ऐसे हैं जिनको हम सुनने को भी मरते
0: हैं. सही बात है.
1: तो ये म्यूजिक की वजह से बस बंदा मस्त हो जाता है ना.
0: ऐसे ही है.
1: क्या म्यूजिक है ये. ओके, थैंक यू
0: सो वेरी मच बिस्मा डार्लिंग. अपना ख्याल रखो. अच्छा जी, बतूल कह रही है कि शीबा, ये बड़े प्यार और मोहब्बत वाली बात है कि ऑलमोस्ट जितने भी लिसनर्स हैं आपके, उनको आपकी तरफ से इस तरह का खलूस मिलता है कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं. जैसे कि जरिए उनके साथ हुआ, जैसे कि मेरे साथ हुआ, हम सारे जो हैं एक दूसरे को बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है. येस, बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग फन ऑफ, हम लोग किसी को जज नहीं करते, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे होते. एंड आई हेट जो लोग जज करते हैं उन सारे लोगों से, चाहे वो आपकी किसी भी तरह का आपका उनके साथ ताल्लुक है. आई हेट, लिटरली नापसंद नहीं, मुझे नफरत है इस तरह के लोगों से जो जज करने बैठ जाते हैं आपको, और वो अपनी ही रियासत के पता नहीं कौन सी अदालतें लगा के बैठे होते हैं. और आप उनके साथ अच्छा खासा टाइम गुजारते हैं, आप लोगों को लगता है कि नहीं यार ये कभी जज नहीं करेंगे. एक टाइम आता है कि वो लोग आपको जज कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें ही इसलिए कर रहे होते हैं कि एक टाइम आए और फिर आपके मुँह के ऊपर चपेड़ मारे जज कर करके. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम जी, भाभी क्या हाल है?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? कौन?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, लाहौर से रिमशा.
0: रिमशा, ओके, कैसी हो, क्या हो रहा है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आपी का शो सुन रही हूँ.
0: ओके, फिर मजा आ रहा है
2: जी, मूड फ्रेश हो गया.
0: गुड, अच्छी बात है.
2: आपके टॉपिक पे मैं यही कहूंगी, आप ही बुरे वक्त में जो अक्सर लोग काम आते हैं ना, अक्सर वही लोग जो है ना आपके दुश्मन बन जाते हैं, वो ऐसे उनको हमारी कमजोरी का पता चल जाता है। एक तो वो काम आ जाते हैं, बार बार कहते हैं मैं तेरे काम आया सी ना, मैं तेरे काम आया सी ना, हालांकि बंदे को पता होता है कि वो इंसान काम आया नहीं, वो ना वो सबके सामने हर किसी को कहता रहेगा भाई मैं आज ऐसे तक पहुंचे तो मैं
3: मेरी वजह तो हाँ।
2: वो बिल्कुल वो अपना नाम बनाते हैं, हालांकि वो उस इंसान को भूल ही जाते हैं जिसने मतलब उसने भी तो कुछ किया होता है ना।
3: किया होता है एग्जैक्टली। और सबसे गंदी बात ही ये है ना कि आपकी, चलो अगर किसी ने, आपने किसी की हेल्प करी थी, कोई पहुंच गया उस मुकाम पे, फिर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उसकी गर्दन पे पांव ही रख दें।
2: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम उनको ना उनसे अपनी मतलब जो है ना अटैचमेंट हम जो होती है ना हम उसे कम करते हैं, हम उसे उनको दूर करते हैं कि नहीं यार ये तो मेरे सिर पे चढ़ गया,
3: उन्हें
2: दूर करना पड़ेगा। वो फिर अक्सर लोगों को ना फिर थोड़ी बहुत उनको मतलब औकात याद करवानी पड़ती है कि तुम इधर भी हो।
3: ऐसे ही है।
2: वो ना फिर बहुत ही बातें करते हैं। मेरी भी मुश्किल वक्त में काफी मेरी स्कूल फेलोज, मेरी काफी दोस्तें ऐसी हैं जो मेरी काम नहीं है, लेकिन वो हर टाइम ये कहती थी मैं निमिषा तुम्हारे साथ ना होती ना आज तुम यहाँ ना होती। फिर वो इस तरह करती हैं, इसलिए हम उनको अपनी लाइफ से दूर कर देते हैं।
3: बिल्कुल सही,
2: मेरा ये पॉइंट था। अगर अब जो आएगा आगे वो आप देखो उनकी जिंदगी में क्या, जो मेरी जिंदगी में गुजरा मैंने आपको बताया।
3: क्या बात है रिमशा, वेरी गुड, अपना ख्याल रखो, खुश रहो।
2: और लेकिन देखिए आप शिबा आप इतना प्यारा शो करती हैं लेकिन कॉल्स इतनी कम क्यों लेती हैं आप?
3: कॉल्स कम लेती हूँ, आधे घंटे के लिए कॉल्स होती हैं। और तुम लोगों का पास चले ना तो मेरे से 6 घंटे का शो करवाओ जिसमें 4 घंटे में शो करूँ, 2 घंटे कॉल्स लूँ, मतलब तुम लोगों का तो बस नहीं चल रहा है।
2: सीरियसली आप बोलती बहुत प्यारी हैं, बहुत, आप 1 घंटा बोला कर 1 घंटा कॉल ले लिया करें ना।
3: क्या बात है आपकी, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखो। अच्छा जी, शुक्र है बतूल आपने मुझे ठीक है हो गया था आपने, और राइट, ओके ओके ओके। स्कूटी वालियों ने इधर उधर टकरे मार के तो हम फीमेल्स की नाक ही कटवा दी है। सही बात है, इंट्रोवर्ट होने का एक ही नुकसान ये भी है ना, तो अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर करने का दिल करता है ना, हेल्प मांगने को, डिस्टर्ब करने को दिल करता है। लाइक सीरियसली डोंट टॉक स्टूपिड इन दैट वे, इट्स जस्ट मेकिंग मी लाइक मोर अनॉय, ओके, सो डोंट टॉक दैट वे। इंट्रोवर्ट शिबा जी, शो सुपर है, थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह सलामत रखे बिनिश सिस को भी। हाँ जी बिल्कुल, दुआएं हैं। एक्चुअली मैम गेट इन टच विद यू, आई वुड हैव हैड यू समवन एल्स फोन के राइट, लाइक सीरियसली व्हाट डू आई से नाउ, यू नो दैट इन दैट सिचुएशन आई ऑलवेज बिलीव इफ यू वॉन्ट टू रीच टू समवन anyhow anyways to show that person that if I am in mess, I am in hell, I am in trouble, you are the one person that I want to discuss with you and only with you. So one time you are sharing, another time you are giving such an expression that you can't share, you don't want to share. I don't know which one I should understand. आज तो जी भी हालत है, उधर मम्मी मुझे फ़ोन यूज़ करता घूर रही हैं और शो में खातर तवाजो कर रही, ये तो होनी ही थी ना, ये तो होना ही था, ऐसे कैसे पॉसिबल था कि ना होता। आई मीन जस्ट यू नो इट इज़ आउट ऑफ लव एंड केयर दैट ये हो रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
4: अस्सलाम शिबा जी, की हाल है? ठीक हो
3: जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन?
4: शिबा जी मैं मोहम्मद अक्षर बोल रहा हूँ शाहबाद से।
3: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
4: बस बीमार आदमी, दुआ करे मैं ठीक हो जाऊं।
3: अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, क्या हो गया?
4: मेरी टांग काटी हुई है, शुगर की आधी काटी हुई है, शुगर की
3: वजह से। ओह माय गॉड,
4: रोजों की रोजी कटी काटी हुई है।
3: हाय हाय हाय,
4: आज आपका बहुत था, जब किसी का बुरा वक्त जिसने आपको साथ दिया, अच्छे वक्त में उसका साथ देना चाहिए।
3: आपने
4: बुरा वक्त होता वो भी साथ है, अच्छे वक्त में साथ देना चाहिए।
3: एग्जैक्टली, लेकिन सबसे पहले लोग ना उन्हीं लोगों का साथ छोड़ते हैं जो आपके बुरे वक्त में साथ होते हैं, जो आपका हाथ थामते हैं जब कोई नहीं आप पे भरोसा करता, तो लोग उन्हीं लोगों को ना सबसे पहले छोड़ के जाते हैं। पता नहीं कैसी खसलत है लोगों की, आई डोंट रियली। चल रहे हैं, एनीवेज अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा चलिए ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद अरशद मेरे भाई, अल्लाह आपको सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती दे, सलामती दे। अल्लाह आपकी सारी मुश्किलें आसान करे। और सचमुच आपने इस बात से दुखी कर दिया कि शुगर की वजह से आपकी टांग कट गई है, बड़ी गंदी बीमारी है, बड़ी लाइलाज बीमारी है, और अल्लाह ना करे किसी दुश्मन को भी हो। सो अल्लाह आपको सेहत दे। मैं इस चीज़ को बड़ा महसूस कर सकती हूँ, मेरी मम्मा के साथ ये प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैं बहुत, और उसके बाद जब मैं ये देखती हूँ ना कि उनके जाने के बाद बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, तो फिर मुझे और भी ज़्यादा दुख भी होता है। ये भी सोचती हूँ कि काश तब चीज़ें कुछ इस तरह से हो चुकी होती, लेकिन क्या करें, हर काम में ऊपर वाले की कोई मसलहत होती है। अच्छा जी, सो बुरे वक्त में जो है हम सबसे पहले ऐसे ही लोगों को छोड़ के जाते हैं जो कि आपके अच्छे वक्त में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
5: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
5: हाँ बेटा जी, आपको और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
5: मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ, समनाबाद लाहौर से।
3: जी, क्या हाल चाल है आपका?
5: अल्लाह का शुक्र
3: जी। क्या हो रहा है?
5: बस अब तो फारिग ही हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो अब पता कि आप गिले शिकवे खत्म कर दिए हैं। नाराज तो होते हैं हम भी, अमदा से कभी किसी से नाराज नहीं हुए, लोग हो जाते हैं नाराज, कोई बात नहीं, लेकिन अब गिला करने को दिल नहीं करता।
3: जो
5: नाराज होते हैं उनकी कोई मजबूरी होती होगी, वो नहीं मिलते तो कोई बात नहीं। हमारे तो बड़े, मैंने अपने अब्बा से कहना ना कि यार कोई याद ही नहीं करता, अगर यार उनकी कोई मजबूरी होगी तो हमें कोई मसले मसाइल होंगे जो नहीं मिलते, कोई बात नहीं, तुमसे जितना मिला जाता मिलते जाओ।
3: सही,
5: तो हमें तो बड़े यही कहते थे, तो अब मसले मसाइल हैं लोगों के, नहीं मिलते, पहले हमें जितनी हिम्मत है हम मिलते रहते हैं।
3: सही, बिल्कुल ठीक है आपने। चलें जी, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह
5: हाफिज़।
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
6: मोहम्मद ताहिर भट्टी सिनावा से बात कर रहा हूँ
3: जी, क्या हाल चाल है?
6: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सुनाए, आप खैरियत से हैं?
3: जी मैं भी ठीक ठाक, करम अल्लाह का,
6: माशाल्लाह। आप बहुत अच्छे प्रोग्राम ने गए, हाजिरी हो जाए आपके प्रोग्राम,
3: बहुत शुक्रिया जी।
6: और सुनाए, और आपकी तबीयत सेहत ठीक है?
3: जी जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक।
6: और मेरे दोस्त मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं
3: जी। टॉपिक सुने आपने, शो सुन रहे हैं आप लोग
6: जी? अब्दुल्ला साहब से बात कर रहे हैं थोड़ी।
3: अच्छा जी, अब्दुल्ला साहब ने सुना टॉपिक।
6: वालेकुम
3: अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हाँ जी, आप भी शो सुन रहे हैं
6: जी? जी,
3: टॉपिक का पता है दोनों में से किसी एक को?
6: नहीं नहीं, टॉपिक का पता नहीं है।
3: तो फिर कौन सा शो सुन रहे हैं आप लोग?
6: असल से ना हम भी कॉल कर रहे थे, कॉल कर रहे थे।
3: अच्छा अच्छा, कॉल में इतने मसरूफ थे कि टॉपिक ही नहीं सुना।
6: हाँ जी, हाँ जी, टॉपिक नहीं सुना, हमने कहा हम भी हाजिरी लगा लें।
3: चलें जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, सो अब ये दिस गोना बी द लास्ट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
7: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
7: मैं निशा बलक बात कर रही हूँ, लाहौर बागबानपुरा से। कैसी हैं आप?
3: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, निशा आप कैसी हैं?
7: हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। आपका प्रोग्राम सुन रही थी, पहली दफ़ा बड़ा अच्छा लग रहा था, टॉपिक भी बड़ा अच्छा था, आने वाले लोग भी बड़े प्यारे और प्यारी प्यारी की बातें।
3: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
7: और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि हम लोग खुद भी कहीं ना कहीं हम खुद भी तो गलत होते हैं। होते हैं ना ऐसे कि एक फॉर एग्जाम्पल है कि हमारी बहन है या भाई है जो कोई हमारी चीज इस्तेमाल कर ले, तो दूसरी दफा हम उसको कहते हैं कि आपने मेरी आपने दिया था, आपने ये किया वो किया। असल में ये जो जमाना है ना, ये बड़ा एडवांस ही हो गया, समझ लें कि जिसके साथ भी करो कोई भी नहीं बनता। और कोशिश करें कि अगर नहीं कोई बनता तो फिर आप किसी के हो दें, अगर आप भी नहीं हो सकते तो उसको उसी मियार पर रखे जितना वो मियार का है।
3: बिल्कुल।
7: तो ये है कि दुनिया के सिलसिले चलते रहते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए बेहतर हो, अगर हम खुद बेहतर होंगे, हो सकता है कि हमारी तरफ देखे दूसरा बंदा कहे कि ये तो कोई बात नहीं करता, इसने तो कोई ऐसा नहीं किया, तो खुद ब खुद अपने आप में ही शर्मिंदा हो जाए। तो कोशिश मेरे ख्याल से ये करनी चाहिए कि हमें खुद को बेहतर करना चाहिए, कहीं ना कहीं हम खुद भी गलत होते हैं।
3: सही, बिल्कुल ठीक।
7: बाकी प्रोग्राम बहुत अच्छा, पहले सुना और बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे खूबसूरत सी चिड़िया जो होती है ना, इतने प्यारे प्यारे से रंगों वाली, ऐसे ही। ऐसे ही बातें कर रहे हैं और हमारे जो हैं तमाम लिस्टर वो भी बड़े प्यारे हैं.
3: थैंक यू सो वेरी मच. अपना ख्याल रखो, खुश रहो.
7: ओके,
3: वेल ये अच्छी बात है कि जब आप पहली दफ़ा भी शो सुन रहे होते हैं सो यू फील इट ऑलवेज के ये जो है दिल करे आपका बात करने को, कॉल करने को, कमेंट करने को, तो अच्छा लगता है. वालेकुम अस्सलाम जी. कौन
8: जी? अभी मैं अदरीस बात कर रहा हूँ लाहौर से.
3: जी क्या हाल चाल है आपके?
8: अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए ठीक है. आपका गला ठीक हो गया?
3: हाँ काफी ठीक है. गरारे कर कर के डाल के गोलियां गरारे की हैं, काफी बेहतर है.
8: अल्लाह पाक आपको मुझे सेहत दे.
3: आमीन सुम्मा आमीन.
8: बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और टॉपिक सुन रहे हैं. ये देखो जो बंदा होता है ना असल में जिसके दिल में एहसास होता है किसी के लिए,
3: अच्छा और
8: दिल में एहसास हो तो वो कभी भी नहीं साथ छोड़ता.
3: जी बिल्कुल ऐसे. बहुत शुक्रिया जी, टाइम नहीं है तो अब जो है कॉल इतनी सी ही लेंगे हम.
8: जी
3: अच्छा जी, सो अब हमारे जाने का वक्त हो गया है. जाते जाते एक ही बात, जो आपके बुरे टाइम में आपके साथ खड़ा हुआ है ना, अगर आप उसको भूल गए हैं तो मैं फिर वो कहूँगी आपका जमीर जिंदा नहीं है, आप इंसान नहीं है. तो आप चलती फिरती लाशें अपने आप को अच्छा सा दिन दे के दफना दें बस. सो आज शिबा मलिक साइनिंग ऑफ नाउ. आप लोगों के साथ नेक्स्ट ट्यूजडे जो है मुलाकात होगी. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिए, अपने प्यारों को भी, चाहने वालों को भी. और किसी को कुचलते हुए रोनते हुए आप जो है अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है. और किसी के दिल को बेचैन करके बेताब करके ये मत सोचिए कि आपके दिल को सुकून मिलेगा. रब की ज़ात के सामने सर जब भी झुकेगा बहुत ज़्यादा क्या, उससे भी ज़्यादा हज़ार गुना ज़्यादा बेचैनी के साथ वो सर उठेगा. अपना ख्याल रखिएगा. आरजे शिबा मलिक को इजाज़त दें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. एंड हार्ट्स ऑफ लॉट्स.

0: keep it locked, keep it loud.
1: This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
3: शाम के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने मुतालिका हुकाम को मौसम सरमा के दौरान गैस लोड मैनेजमेंट के लिए जामे मंसूबा वज़े करने की हिदायत की है। अक्वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मुकालमे के फरोग, सालसी और कशीदगी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ की है। नायब वजीर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका और ईरान के दरमियान 47 साल बाद बराह रास्त मुजाकरात हुए। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने बीजेपी के जेर क्यादत हुकूमत की जानब से मकबूजा वादी में यूनिफार्म सिविल कोड नाफिज करने के इकदाम को मुस्तरद कर दिया है।
4: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
5: This is FM 101.
6: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Vichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101.
1: This is FM 101.

ऑलराइट नाउ वेलकम बैक टू द शो, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं सभी सुनने वालों को रेडियो पाकिस्तान एफ एम 101 के लाहौर स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। आपका हमारा साथ होता है शो में रात 10 बजे तक। कहते हैं कि अक्टूबर का जो महीना है ना, ये थोड़ा सा उदास होता है, इसमें लोगों की जो कैफियत है ना वो बदल जाती है और मिजाज भी बदल जाते हैं, थोड़ा लोग स्ट्रेस में ज़्यादा चले जाते हैं। वैसे इसके बारे में कोई तहकीक भी यही कहे कि अक्टूबर का जो महीना है ये स्ट्रेस ज़्यादा देता है। अब उसकी जो वजह है आप सब जानते हैं कि एक बड़ी वजह ये है ना, मुझे जो लगता है ना, मौसम बदल रहा होता है, वक्त बदल रहा होता है, रूटीन बदल रही होती है, हम एक रूटीन से हट के एक दूसरी रूटीन में आ रहे होते हैं, एक रेगुलर जो हमारा एक सर्कल होता है ना लाइफ का, वो चेंज हो रहा होता है, टाइमिंग चेंज हो रही होती है, और टाइमिंग जब चेंज होती है तो उसमें ये होता है कि आप शाम जो है वो जल्दी हो जाती है और रात जल्दी हो जाती है, फिर रातें लंबी होना शुरू हो जाती हैं। जब रातें लंबी होती हैं तो फिर उस वक्त ये मसाइल आते हैं ज़रूर।

सो ये जब रूटीन बदलती है ना, तो उस वक्त थोड़ा सा आप के ऊपर स्ट्रेस लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है, शाम जल्दी हो जाती है, फिर उसके बाद खाने पीने की रूटीन भी बदल जाती है, फिर इंसान जो है ना उसके ऊपर थोड़ी सी कैफियत भी बदल जाती है ना। मौसम का इंसान के मिजाज के ऊपर यकीनी तौर पे बहुत असरात मरतब करते हैं। सो इसीलिए अक्टूबर जो है वो इट्स अ चेंजिंग ऑफ लाइफ सर्कल हो रहा होता है, और आपको मेमोरीज़ जो होती है ना, यादें बड़ी रिकॉल हो रही होती हैं बहुत सी चीज़ों की, बिकॉज सर्दियों की आमद होती है, सर्दियों के साथ आपकी बहुत सी एसोसिएशन होती हैं, बड़ी मेमोरीज़ होती हैं, उन रातें लंबी होती हैं जिसकी वजह से आपकी जो मेमोरीज़ होती हैं ज़िंदगी के बहुत से ऐसे लम्हात होते हैं जो आपको याद आते हैं। तो सो दैट इज़ अ मोमेंट जिसमें आप थोड़ा सा फील कर रहे होते हैं कि यार दोबारा से वही सिचुएशन, वही लम्हात, वही बातें, वही यादें, मतलब आपका दिमाग जो है ना वो रिकॉल कर रहा होता है उन चीज़ों को। तो इसीलिए अक्टूबर के बारे में ये कहा जाता है कि ये थोड़ा सा उदास होता है कदरे दूसरे महीनों की निस्बत, क्योंकि इसमें फिर आपकी रूटीन ज़िंदगी की बदल जाती है। सो दिस इज़ लाइफ, यू नो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इंसान की ज़िंदगी के फेज़ जो है ना वो बदलते रहते हैं, कभी भी एक जैसे नहीं रहते। आप खुश हैं, आप उदास हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, या फिर कभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और कभी आप बहुत ज़्यादा उदास भी हैं। सो ये ज़िंदगी की खूबसूरती भी होती है कि आप एक जैसे नहीं रहते, एक जैसा रहा भी नहीं जाता। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट, यू नो, इट्स ऑल चैलेंजेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। सो ये सारा मिक्स जो होता है ना ज़िंदगी का हिस्सा होता है, बट वी हैव टू फेस ऑल थिंग्स। हमें सब चीज़ों का मुकाबला करना होता है, सब हालात का मुकाबला करना होता है, हर चीज़ को फेस करना है, उसको हैंडल करना है, उसको मैनेज करना है। स्ट्रेस है तो उसको मैनेज करना है, ख़त्म नहीं हो सकता, उसको मैनेज करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट अब दुनिया में इस पर बहुत तहकीक हो रही है कि आपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, अपनी परेशानियों को कैसे मैनेज करना है, अपने हालात को कैसे मैनेज करना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज करना है, अपने जो डेली रूटीन के जो काम है उसमें रहते हुए आपने किस तरह चीज़ों को बेहतर करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप बैठ सकते हैं, मने अच्छा। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो आज जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हमारे साथ कुछ दोस्त होंगे जो अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं, उनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे, गपशप भी करेंगे, और आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। 04-2111-0101 इज़ द डायलिंग नंबर जिस पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, और आप लोगों की कॉल्स को भी हम शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा एक बड़ा खूबसूरत सा ट्रैक जो कि मैंने लाइनअप किया हुआ स्पेशली आप सब के लिए। सो दिस ट्रैक इज़ फॉर ऑल द ब्यूटीफुल लवली एंड लवली लिसनर्स, जितने भी इस वक्त दोस्त हमें सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, आप सब के नाम।

0: 9 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Zahra Sikandar. First, the headlines. Prime Minister says government is working to connect far-flung areas with other parts of the country on priority basis. The United Nations Secretary General has lauded Pakistan's diplomatic efforts to promote dialogue, mediation, and de-escalation. Deputy Prime Minister says Pakistan's efforts have brought the United States and Iran to direct dialogue after 47 years. Pakistan and United Kingdom have reaffirmed commitment to further strengthening bilateral relations.
1: Pakistan duniya ke un 10 mumalik mein shamil hai jahan pani ki qillat tezi se badh rahi hai. और हम दांत साफ करते वक्त नल से पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ممالک में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है तसव्वुर करें और गिनते जाएं दिन हफ्ते महीने साल हम कितना पानी जाया कर रहे हैं नल बंद करें पाइपों की मरम्मत करें पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी FM 101 इस्लामाबाद पानी बचाएं पाकिस्तान बचाएं
2: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: दुनिया में मेरे ख्याल में टॉप पे है पाकिस्तान, पहले दूसरे नंबर पे आते हैं जो फ्रीलांसिंग, जो अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने जिन प्लेटफॉर्म्स का बताया वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को आप कह रहे हैं कि आप डिस्प्ले करें और आपको रिस्पांस उसको आना शुरू हो जाता है, कितना टाइम लग जाता है आपकी प्रोडक्ट जो है वो रेटिंग में आ जाती है उन वेबसाइट्स के ऊपर जो रिकमेंडेड वेबसाइट है? हम बार बार रिकमेंडेड वेबसाइट का इसीलिए कह रहे हैं कि आपने किसी भी ऐसी जगह नहीं जाना या ऐसी वेबसाइट या ऐसे लोगों को चूज़ नहीं करना जो नॉन रिकमेंडेड हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं है। अच्छा कितना टाइम लग जाता है मुझे बताएं कि आप?
1: सर ये टाइम कितना लगता है ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। अभी हम एक फिजिकल शॉप कोई देखते हैं, हम कोई भी कस्टमर है वो हमेशा ये सोचेगा मैं यार अच्छी जगह से एक प्रोडक्ट लूँ, मैं किसी अच्छी शॉप से जाके लूँ, और उसकी लुक बड़ी मैटर करती है, उसका इंटीरियर बड़ा मैटर करता है। लाइक जो चीज़ अब ट्रेंड वो है, आप एक चीज़ सेल करना चाह रहे हैं ना, तो आपका वो रैक भी मैटर करता है कि आप किस पे रख के चीज़ सेल कर रहे हैं। आज के टाइम में अगर आप थ्रू वेबसाइट या फेसबुक पे, आपका पेज इतना ज़बरदस्त होना चाहिए, उस पे लाइक ग्राफिक्स इतने अच्छे होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट का शूट इतना क्लासिक होना चाहिए कि देखने वाला अट्रैक्ट हो। ओके, सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना टाइम लगाना है। जैसे पहले लोग अपनी शॉप्स पे फिजिकल अच्छा दिखने के लिए उस पे पैसा लगाते थे, अब आपको ये डिजिटली ये सारे काम करने पड़ेंगे अपने स्टोर पे, तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी एफर्ट कर लेते हैं।
0: अच्छा इसमें लर्निंग प्रोसेस क्या है, आप कैसे सीख सकते हैं? ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले देखें प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस कर लिया, आप कह रहे हैं कि उन्हें आप मेटा पे या ऑनलाइन आप सेल करना चाहते हैं, सो इसका लर्निंग प्रोसेस के लिए क्या है, आप अगेन वही यूट्यूब या किस तरह उसको सीखें?
1: यस बिल्कुल, आप घर बैठे भी सीख सकते हैं, और अगर आप क्योंकि सम टाइम्स आप ये फील करते हैं कि आप उतना पिक नहीं कर सकते हैं, तो आप फिजिकल इंस्टीट्यूट्स
0: भी हैं जो आपको बिल्कुल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग
1: ऑथेंटिक अच्छे इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर लें, उससे भी आपको एक अच्छा।
0: अच्छा मुझे बताएं कि अब जैसे आपने ग्राफिक्स की भी बात की और आपने बात की है कि अपनी वेबसाइट बनाएं, सो AI ने चीज़ों को ज़रा ट्रांसफॉर्म कर दिया है, सो ये कितना इजी हो गया लोगों के लिए अब बिज़नेस करना कि AI के टूल्स को इम्प्लीमेंट करें, AI को सीखना कितना ज़रूरी हो गया जिसने बिज़नेस करना है?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी बड़ी एक सिंपल एग्जांपल है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी AI के आने से जॉब्स जो है वो ख़त्म होना हो रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जॉब्स वो क्रिएट होंगी जिसको AI आता होगा।
0: अच्छा
1: ठीक है
0: ठीक,
1: लाइक आप AI के बगैर आने वाले टाइम में या आज के टाइम में भी लाइक आपका अच्छा सर्वाइवल के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है। सो यस पावर एक पावरफुल टूल है, आपको यूज़ करके तो आप तो बहुत आसान हो गया, जो काम आप पहले सोचते थे टाइम लगाते थे कोई रेफरेंस यूज़ करते थे वो आप विद इन सेकेंड्स कर लेते हैं।
0: और उसके साथ साथ आप देखो ना कि आप पहले ग्राफिक डिज़ाइनर ढूंढते थे, ग्राफिक डिज़ाइनर से आप चीज़ें बनवाते थे, फिर वापस उसको कहते थे यार इसको और ठीक करो ये अभी भी नहीं ठीक, अब AI टूल्स से आप लोग
1: बिल्कुल
0: जिसे कहते हैं प्रॉम्प्ट दो और आपको फौरन से पहले रिजल्ट मिल जाता है।
1: फरहान भी इसमें डिपेंड करता है कि आप बेसिकली रोल क्या देते हैं AI को, ठीक है, वो जो क्वेश्चन है या रोल टास्क जो है वो बहुत मैटर करता है, आप AI से कैसे काम लेते हैं।
0: अच्छा उमर एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, जाहिर बात है आप अपनी प्रोडक्ट रन कर रहे हैं, माशाल्लाह रनिंग कंडीशन के अंदर है आपकी, आप होलसेल भी करते हैं डिजिटली भी कर रहे हैं। अच्छा डिजिटल के ऊपर कहते हैं कि थोड़ा सा महंगा हो जाता है, एक्सपेंस बहुत होता है, इनिशियली आप कितना एक्सपेंस हम एज्यूम कर रहे हैं एक छोटे बिजनेसमैन के लिए, उस बजट उसको रखना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए?
1: फरहान भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपकी कॉस्ट पे मैटर करता है, आपकी प्रोडक्ट कितनी वर्थ रखती है, ठीक है, लाइक अगर आपकी एक प्रोडक्ट है 1,00,000 रुपये उसकी प्राइस है, या सपोज जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ आइटम्स आती हैं या कि अब सपोज 10,000 उसकी प्राइस है, अगर आपको उसके मार्केटिंग पे 2,000 लगाना भी पड़ जाए तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को हेजिटेट होना चाहिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं।
0: बिल्कुल ठीक,
1: तो ये है कि
0: नहीं आप कुछ लगाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्स आएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल ठीक है। हमजा भाई आप इधर ही है ना?
2: जी जी।
0: अच्छा जनाब हमारे आज के दूसरे गेस्ट भी इस वक्त हमारे साथ हैं, हमजा साहब हमारे साथ हैं। अच्छा हमजा भाई आपसे हमारी गुफ्तगू चल रही थी कुछ गाड़ियों के हवाले से,
2: जी जी,
0: कि जो लोग गाड़ियाँ परचेज करना चाहते हैं और ख़ासतौर पर जापनीज कार जो है, मुझे ये बताएं कि प्राइस रेंज जो है कहाँ

0: से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है?
1: ये सर जो जैपनीज में 660 कार्स जो हैं उनकी रेंज 30 लाख से स्टार्ट होती है,
0: ठीक है,
1: और ये 45 तक फिर गाड़ियाँ जाती हैं।
0: अच्छा,
1: ये डिपेंड करता है वेरिएंट पे, मॉडल पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है, लेकिन एवरेज जो कार है वो सर आपको 30 to 35 के अराउंड मिल जाती है।
0: और 45 से अबव भी हैं?
1: 45 से अबव फिर सर 1000 cc में है, 1200 cc में है,
0: ठीक है
1: जी, मतलब कि जो 660 है वो आपको मिलती है 30 to 40,
0: ठीक है। ये अच्छी गाड़ी की बात,
1: ये अच्छी गाड़ी की बात,
0: जिसकी कंडीशन भी ठीक है और
1: जी कंडीशन भी ठीक है,
0: ठीक है। आप कह रहे हैं कि वो 30 से 45 की रेंज में, और 1000 cc
1: फिर 45 प्लस हो जाती हैं,
0: 45 प्लस हो जाती हैं,
1: 45 टू फिर 55 लाख तक।
0: अच्छा, जो गाड़ी इंपोर्ट होके आती है वो किस कंडीशन में होती है नॉर्मली?
1: सर आजकल तो जो गाड़ी इंपोर्ट होकर आती है वो तो जापान से जो है वेरीफाइड ऑक्शन शीट होती है, वहाँ से वेरीफाई होके ग्रेड वाली गाड़ी आती है, एक्सीडेंटल नहीं आती।
0: अच्छा, वो सारी ऑक्शन शीट उसके अंदर मौजूद होती है,
1: सब कुछ मौजूद,
0: मतलब आपको पता चल जाएगा इस यहाँ से एक्सीडेंट है, ये
1: बिल्कुल
0: चेंज है पैन,
1: इवन एक्सीडेंट तो आ ही नहीं रही।
0: अच्छा, नहीं
1: वहाँ पे भी जो फ्रेश है वही पास करती है एग्जाम, उसकी वेरिफिकेशन होती है प्रॉपर, उसके बाद वो पाकिस्तान आ रही।
0: अच्छा, जी 660 है, 660 है
1: जी,
0: ये कितनी इकोनॉमिकल होती है पेट्रोल वाइज?
1: सर 660 सीसी जो है उसमें सेमी हाइब्रिड्स भी आती हैं और नॉर्मल भी आती हैं, लेकिन सेमी हाइब्रिड जो है वो उसकी काफ़ी अच्छी एवरेज है सर, और पाकिस्तान के जो हमारा अकॉर्डिंग टू लोकल कार्स हैं उससे बहुत बेस्ट एवरेज है।
0: अच्छा
1: जी, सेमी हाइब्रिड हैं तो ये अराउंड 20 to 25।
0: अच्छा,
1: के एम पर लीटर
0: इज वेरी गुड
1: इसके जी,
0: यानी कि एक लीटर में 20 से 25 किलोमीटर किलोमीटर ये गाड़ी चल जाती
1: चल
0: है
1: जाती
0: जो
1: है।
0: 660 है,
1: बिल्कुल।
0: और लॉन्ग ड्राइव भी आप कर सकते हैं
1: जी? जी सर, लॉन्ग ड्राइव भी कर सकते हैं आप, कोई ऐसा इशू नहीं है।
0: पहाड़ों में भी जा सकती
1: जी, पहाड़ों में सर बल्कि जाती हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ जी, पहाड़ों में तो जाती हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: और इंजन कैपेसिटी कोई इशू नहीं है?
1: कोई इशू नहीं है जी।
0: और टायर्स?
1: टायर्स सर जापानीज़ जो ब्रांड आते हैं उसमें तो योकोहामा होता है और डेनलॉप होता है, दोनों क्वालिटीज बेस्ट हैं जी,
0: उसका भी कोई ऐसा इशू नहीं है।
1: उसका भी ऐसा,
0: तो इसका मतलब है कि जहाँ तक ड्राइविंग की बात है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप लोकल चलाएं, आउट ऑफ सिटी चलाएं।
1: हाँ,
0: ये जरूर है कि आपको वो पिक नहीं मिलेगी।
1: हाँ, वो पिक नहीं मिलेगी
0: जो मैनुअल में होती
1: है, और बेसिकली ये जापान में तो यूज होती है 2 to 3% के लिए, तो 2 to 3% का आपका है तो उसमें काफी बेस्ट रहती है। वो जाहिर बात है जब 5% हम इस पे बैठते हैं तो फिर इसका थोड़ा इशू होता
0: है। अच्छा, 3-5 तो हमारे नॉर्मल बैठते हैं,
1: 5 नॉर्मल बैठते हैं
0: हम, 5 से कम तो मेरे ख्याल में कम ही बिठाते हैं, 3 पीछे या 2 अगर फैमिली कार है तो इसको कहते हैं, लेकिन 5 अगर बिठाने कोई प्रॉब्लम है?
1: नहीं, प्रॉब्लम ऐसे तो नहीं है, लेकिन आप लॉन्ग ट्रेवल में थोड़ा सा।
0: अच्छा, रिकमेंडेड ये है कि आपने 3 लोगों को
1: बिठाना, 3 से 4 सर,
0: 2 आगे और 2 पीछे
1: जी,
0: ठीक है, यहाँ तो 6 भी बिठा देते हैं
1: जी जी,
0: और बचे पूरे कर रहे हैं जी, और डिक्की में भी 2 बिठाए होते हैं
1: जी।
0: अच्छा, टायर्स का एक इशू होता है कि स्टपनी नहीं होती इन गाड़ियों में ना ज़्यादातर
1: सर, लेकिन उसमें टोल किट होती है जिसमें आपको एक एयर पंप मिलता है, साथ एक पंचर लिक्विड मिलता है, पंचर रिपेयर लिक्विड।
0: अच्छा,
1: वो आपका अगर टायर पंचर हो जाता है तो आप वो उस लिक्विड को डालें तो वो पंचर जो है वो आपने उसके वो जो उसकी नोजल होती है उससे वो लिक्विड को डालना होता है, वो जिस भी जगह पे पंचर होता है वो उसको जाके खुद रिफिल कर देता है, उसके बाद आप उसके एयर पंप से उसकी जो है एयर फिल करें तो वो पंचर लग जाता है।
0: अच्छा, यानी कि ये मसला भी हल हो जाता है।
1: ये भी हल हो जाता है और हमारे पास इसके किट्स भी अवेलेबल होती हैं।
0: अच्छा, पंचर किट्स भी अवेलेबल होती हैं, यानी आप उसी वक्त चेंज कर सकते हैं।
1: हाँ जी,
0: टायर। और वैसे कुछ गाड़ी में मैंने देखा होते भी हैं
1: जी
0: कि वो खुद रखवा लेते हैं, कोई स्पेस बनवा लेते हैं।
1: नहीं सर, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक में पंचर किट आती है और एक में वो स्टेपनी आती है।
0: अच्छा, स्टेपनी होती है
1: जी, 2 ऑप्शन होते हैं, एक में वो एक में पंचर किट।
0: ठीक है, और जब आप गाड़ी परचेस करें, अगेन वो इस मेरा जो है कि जब आप परचेस करें तो किन चीज़ों को देखना ज़रूरी है? बाज़वा जो बॉडी होती है, नया बंदा जो जा रहा होता है गाड़ी लेने के लिए उसको इतना आइडिया नहीं होता, वो किसी से वेरिफिकेशन नहीं, खुद ही जाए उसे गाड़ी बड़ी पसंद आएगी, क्योंकि नॉर्मली मैंने जो देखा है कि हमारे जो जो ख़ास तौर पर वर्कशॉप्स या डीलर हजरात जो गाड़ी बेचते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त करके गाड़ी बेचते हैं, साफ़ सुथरी करके, सो क्या एवरेज बंदे को, नॉर्मल बंदा पहचान सकता है कि गाड़ी कहाँ से एक्सीडेंट है या कहाँ से है, इसकी कोई पहचान है?
1: जी सर, आजकल तो इवन एक छोटा बच्चा भी पहचान सकता है.
0: अच्छा.
1: बिकॉज इतनी टेक्नोलॉजी, इतने मीटर्स और वो पेंट चेक करने वाले पेंस मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उसको चेक करना काफ़ी इजी हो गया. इशू जहाँ आता है वो इंजन और उसका जो मैकेनिकली होते हैं उन चीज़ों में आता है. लेकिन उसमें भी सर आप जो है स्कैनर से जो है इलेक्ट्रिकली मैकेनिकली चीज़ें जो हैं चेक कर सकते हैं कि क्या कंडीशन.
0: अच्छा,
1: है.
0: अच्छा, आपने ये पेंस बताए हैं, ये इजीली अवेलेबल होते हैं?
1: इजीली अवेलेबल हैं सर मार्केट में, और बहुत लो कॉस्ट हैं और इजीली अवेलेबल हैं.
0: अच्छा, मार्केट में यानी आप कोई भी बंदा का गाड़ी लेने के लिए जाए और उससे सही पता चल जाता है?
1: एग्जैक्ट सर पता चल जाता है.
0: अच्छा
1: जी.
0: और एक मशीन भी तो होती है?
1: हाँ जी सर, वो मीटर होता है, उससे भी आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है
0: कि इधर से एक्सीडेंटल है,
1: इधर से पेंट है, इधर से प्रोटीन है, इधर से ओरिजिनल है.
0: अच्छा.
1: इवन लेयर्स भी पता चल जाती हैं कि प्रोटीन के कितने लेयर्स हैं, और पेंट जस्ट एक होता है ना, जस्ट शॉवर हुआ, वो भी पता चल जाता है. प्रोटीन वगैरह जो लग कर वो भी पता चल जाते हैं.
0: आप कुछ कहना चाह रहे थे मेरे ख्याल में? अच्छा, मैंने कहा गाड़ी के वाले से कुछ बताना चाह रहे थे.
2: जी जी बिल्कुल. अब तो पाकिस्तान में जैसे मैं अभी हम बात कर रहे थे कि कितने सीटिंग कैपेसिटी के होते हैं गाड़ी में, तो जापान में या अदर कंट्रीज में तो 4% जो है पाकिस्तान में भी इतनी होती है. बट हम कोशिश करते हैं कि आगे एक साथ बच्चा भी बैठ जाए, ठीक है, पीछे तीन साथ.
0: वहाँ पे तो बड़े लॉस स्ट्रिक हैं जी, वहाँ बच्चा आगे उठा ही नहीं सकते.
2: बिल्कुल ऐसे,
0: तो हमारे तो दो दो बच्चे आगे बैठे होते हैं.
2: सो बट ये एट द एंड कहीं पे आके हमें उसकी कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है. लाइक खुदा ना करे इन केस ऑफ एक्सीडेंट, वो फिर एक बहुत एक हादसे का बाइस बनता है.
0: बिल्कुल. अच्छा हमजा साहब, ये एयर बैग्स कैसे चेक करते हैं कि गाड़ी के अंदर ठीक हैं, चल रहे हैं, ऑपरेटिव हैं?
1: ये सर एयर बैग्स जो हैं स्कैनर से चेक किए जाते हैं.
0: अच्छा, स्कैनर से चेक,
1: उसमें उसके रिपोर्ट आ जाती है.
0: अच्छा, स्कैनर की पूरी रिपोर्ट, और वो अगेन वो किसी कंपनी को हायर कर लें,
1: किसी भी कंपनी को, किसी भी
0: वो आपको बता देंगे,
1: किसी भी वर्कशॉप आप चले जाएं तो
0: ठीक है. अच्छा, 660 सीसी से ऊपर जब 1000 सीसी पे आते हैं तो उसकी पेट्रोल एवरेज क्या है जापानीज कार की?
1: सर जापानीज कार में 1000 सीसी की जो पेट्रोल एवरेज है वो भी काफ़ी बेस्ट है. वो भी आपको 18-22 तक मिलती है उसमें,
0: वेरी इकोनॉमिकल
1: पर के. और उसमें फिर सर 1000 सीसी में तो इतना हाइब्रिड नहीं आती, फिर 1800 सीसी में हमारे पास हाइब्रिड्स गाड़ियाँ आ जाती हैं, उनकी एवरेज 27-28 km पर लीटर भी हैं.
0: अच्छा,
1: 1800 सीसी में 7 सीटर्स कार्स की.
0: ओके, और उसकी प्राइस रेंज क्या है?
1: उसकी प्राइस रेंज सर जो है 50 लाख से स्टार्ट होती है और फिर 1+
0: तक जा रही है. अच्छा, 1+ तक. वो डिपेंड करता है गाड़ी की कंडीशन, मॉडल और चीज़ें.
1: मॉडल, कंडीशन, सेटिंग.
0: अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब तो चाइनीज कार भी आ गई हैं
1: जी.
0: डेफिनेटली जापान की जो भी प्रोडक्ट है उसका तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते. वो हम छोटे होते होते थे ना कि कहते थे जापान की स्त्रियां तो जापान की प्रोडक्ट. जापान एक नाम है प्रोडक्ट के हवाले से. सो अब जो चाइनीज कार और जापानीज कार में क्या आपको डिफरेंस लगा?
1: सर मेरे ख्याल से तो जापानीज कार्स और चाइनीज कार्स का कोई कंपैरिजन नहीं है.
0: ठीक है.
1: उनमें जो टेक्नोलॉजी है, खासतौर पर जो सेफ्टी है,
0: किसमें
1: सेफ्टी फीचर्स जो जापानीज में,
0: ठीक है,
1: उसका कंपैरिजन हम कर नहीं सकते चाइनीज के साथ. और बाकी जो है इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं चाइनीज में,
0: जी जी,
1: और जापानीज में भी आ रही हैं. उसमें आप जो है मेरे ख्याल से तो मैं तो जापानीज ही रिकमेंड करूंगा.
0: बिल्कुल ठीक है,
1: क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट.
0: बिल्कुल, सेफ्टी कम फर्स्ट. अच्छा, इलेक्ट्रिक कार के बारे में बताइए कि जो इलेक्ट्रिक कार्स है वो कितनी इकोनॉमिकल है, उसकी जो चार्जिंग है उसका क्या तरीका कार है? लॉन्ग रूट पे अगर आप हैं यानी कि शहर से बाहर जाते हैं तो फिर आप कैसे उसको चार्ज करें, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस नहीं हैं.
1: सर इलेक्ट्रिक कार्स में अभी हम इसको सिर्फ अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद बेस हैं तो तब भी हम इसे लॉन्ग के लिए यूज़ कर सकते हैं. अगर हम साउथ पंजाब या सिंध इधर हम जाते हैं तो वहाँ पे भी फैसिलिटीज नहीं है. अगर आप लाहौर और इस्लामाबाद बेस हैं तो फिर आप इसको जो सर्विस एरियाज हैं वहाँ पे चार्ज करवा सकते हैं.
0: अच्छा.
1: जी, और इसमें सर मेरे ख्याल से मैं हाइब्रिड को रिकमेंड करता हूँ इलेक्ट्रिक के बजाय, क्योंकि आप हाइब्रिड पे आप कहीं भी जा सकते हैं और कोई ऐसे इश्यूज नहीं है. इलेक्ट्रिक की एक रेंज होती है تو پھر آپ اس کو جو ہے لانگ ٹرم کسی لانگ جرنی وغیرہ کے لیے یوز نہیں کر سکتے.
0: لوکل کے لیے ٹھیک ہے,
1: لوکل کے لیے ہاں جی,
0: وہ اکنامیکل بہت زیادہ ہے.
1: جی وہ اکنامیکل بہت زیادہ ہے.
0: میرے کزن نے گاڑی لی بی وائی ڈی, تو میں تو سن کے حیران ہو گیا. مطلب وہ میں کو یار تم تو مفت میں, کہتا ہے جی بس وہ گھر میں سولر لگا ہوا ہے.
1: بالکل بالکل ایسے ہی,
0: اور وہ بس فری میں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں.
1: میری بھی پاس بھی ایسے کافی ایگزامپلز ہیں جو وہ سولر سے ڈائریکٹ چارج کر رہے ہیں, اور وہ ایکچولی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا 10 بجے آفس ہوتا ہے تو 6 بجے صبح جو ہے سولر اس کو چارج کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے اور 9 بجے تک کار ریڈی ہوتی ہے ٹو ٹریول. تو اس طرح بہت اکنامیکل پڑ رہی ہیں الیکٹرک کار,
0: بالکل فری پڑ رہی ہیں. جی اچھا, یہ جو الیکٹرک کارز ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو کیسی ہے, سیل کیسی, ری سیلس کیسی ہیں
1: سر الیکٹرک کارز میں؟
0: آنیسٹ اوپینین دیجیے.
1: جی ابھی ری سیل جو ہے ابھی تھوڑی ان کی سلو چل رہی ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: کیونکہ یہ کارز نیو ہیں, ایک سال دو سال یہ جب جو ہے یوز ہو جائیں گی تو پھر ان کی جو ہے ری سیل بھی ٹھیک ہو جائے گی, اگر تو کار اس معیار کے اکارڈنگ ہوئی.
0: ٹھیک ہے,
1: اور جی
0: لیکن جنہوں نے لیے وہ بیچ تو نہیں رہے؟
1: ہاں وہ بیچ
0: چلا رہے ہیں. جی جی بیچ لوکلی اپنی, مطلب سیکنڈ کار کے طور پہ بھی ہے, کہہ لیں کہ گھر ہوم کار کے طور پہ بھی ہے, کہ آپ نے گھر کے سارے کام شہر میں پھرنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ فریلی ایزیلی وداؤٹ اینی اسٹریس کے یار میرا پیٹرول پھونکا جا رہا ہے, تو وہ آپ کو الیکٹرک کار جو ہے نا وہ مل رہی ہے.
1: بالکل.
0: از اٹ سیف کار؟
1: از اٹ سیف؟
0: سیف ہے یہ,
1: سیف ہے.
0: ٹھیک ہے, وہ ایسے لوگوں نے ایک باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ یار نہیں یہ سیف نہیں ہے الیکٹرک کار.
1: سیف ہے بٹ اگر آپ جو ہے اس کے پارٹس کو دیکھا جائے تو وہ کافی کاسٹلی ہیں.
0: اچھا پارٹس کا,
1: جس طرح کہ یہ ایک مطلب
0: پارٹس اویلیبل ہیں,
1: پارٹس اویلیبل ہیں بٹ کافی کاسٹلی.
0: اچھا
1: جی,
0: شیپس بہت پیاری ہیں, ایز کمپیئر ٹو جاپنیز شیپس بہت پیاری ہیں,
1: شیپس بہت پیاری ہیں
0: نا, وہ بڑے ان کے کٹس بڑے زبردست ہیں.
1: بالکل,
0: آپ گاڑی دیکھتے ہیں نا آپ کا دل آ جاتا ہے گاڑی پہ.
1: ہاں جی, ایون فیچرز بھی کافی,
0: فیچرز بھی بہت زبردست,
1: فیچرز بھی بہت ہیں.
0: تو وہ یہ ہے کہ فار اے لوکل دس از دا بیسٹ کار. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں زیادہ تو آپ اس گاڑی کو ضرور لیں اور انجوائے کریں. اگر آپ دیکھیں جس نے گاڑی لینی ہوتی ہے نا اکنامیکلی, جس نے اپنے بجٹ کے مطابق چلنا ہے, وہ میرے صاحب وہ لانگ ٹرم کے لیے لیتا ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں, کیلکولیشن کرتے ہیں نا, اگر آپ نے الیکٹرک کار لیا تو آپ نے اگلے 10 سال کے لیے ایک پورا ایک بجٹ بنا لیا, سوچ لیا کہ یار 10 سال میں نے پیٹرول نہیں ڈلوانا.
2: سو
0: وہ اس کی کاسٹ دیکھ لیں گے, یار 10 سال میں اگر یہ گاڑی چلتی ہے اتنے کلو میٹر, اتنے ہزار لاکھ کلو میٹر چلتی ہے, تو میرا پیٹرول کتنا لگا, میری کاسٹ کٹنگ کتنی ہوئی, تو وہ جو ہے نا وہ ایک سیونگ ہو جاتی ہے.
2: بالکل ایسے ہی ہے. اب بھی بیسیکلی یہ تو ایک ایسی پٹاری ہے فرحان بھائی جو کہ کھلے گی آج سے 4-5 سال بعد. ٹھیک ہے, اس میں ہم ایک تو کمپیریزن یہ کرتے ہیں جی کہ فیول اتنا بچا ہے, آج فیول ریٹ یہ ہے اور اتنے کلو میٹرس, یا الیکٹرک کاسٹ ہمیں جیسے سولر پہ چارج کرتے ہیں تو وہ آلموسٹ فری آف کاسٹ آپ ٹریول کر رہے ہیں. بٹ اس کے ان ادر وے ہم دیکھیں تو آلریڈی ہم وہ پرائس اتنی زیادہ پے کر چکے ہوتے ہیں. جیسے ایک گاڑی آتی ہے آپ کو پیٹرول گیسولین گاڑی آپ کو ملتی ہے 1 کروڑ میں, سیم اس کا دوسرا ویریئنٹ 1 کروڑ 20 لاکھ 30 لاکھ میں ملتا ہے.
0: ٹھیک
2: ہے, اب آلریڈی 30 لاکھ روپیہ ایڈوانس میں وہ جو فیول کی کاسٹ میں آگے آپ کنسیڈر کرتے تھے کہ جی ہم نے اتنا فیول بچا لیا تو وہ آپ اتنا پے کر چکے. اینڈ سیکنڈلی اب ہماری آٹو انڈسٹری اتنا چینج ہو رہی ہے کہ ہماری پرائسز جیسے پہلے اپریشیٹ ہوا کرتی تھی گاڑی پہ, اب وہ تو کنسیپٹ نہیں رہے گا. اب تو ہوگی تو ڈیپریشیٹ ہی, وہ جس نے 1 کروڑ کی بھی لینی ہے, جس نے 50 لاکھ کی بھی لینی ہے, وہ سب کے لیے سر اب صرف یہ ہے جس نے بھی گاڑی لینی ہے اس نے اپنی ضرورت اور اپنے مزے کے لیے لینی ہے, کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ اپریشیٹ ہی ہو اور چلا بھی لوں گا اور بچے گا بھی. ہر کسی کا اپنا اپنا اوپینین.
0: اور یہ والی گاڑیاں تو ڈیپریشیٹ ہی ہوں گی.
2: یس بالکل,
0: یہ تو ہر بندے کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اس کی ری سیل وہ ویلیو نہیں ہوگی جو آپ کمپیریٹیولی کرولا ٹویوٹا کی بات کریں گے یا ہونڈا کی بات کریں گے, تو وہ آپ کو اس میں مار کم پڑتی ہے. ایون تو جاپنیز کار میں بھی آپ کو اتنا فرق نہیں پڑے گا. اینڈ یو آر رائٹ کہ یہ 2-5 سال
2: بعد پتا
0: چلے گا کہ جب مارکیٹ میں کیا ہوگا. آئی تھنک عمیر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اوور آل ہم سب کو اپنی جو لائف پیٹرنز ہیں نا ان پہ کام کرنا پڑے گا.
2: یس بالکل.
0: لیٹ سپوز آپ جیسے ہم الیکٹرک کارز الٹرنیٹ آ گیا, آپ کا پیٹرول جو ہے نا اس کی کنزمپشن کے لیے, پھر سولر پینلس کی طرف لوگ چلے گئے.
2: یس بالکل.
0: یار اگر کوئی گرین میٹر نہیں افورڈ کر سکتا, وہ ڈیلی بیسس کے اوپر آ گیا کہ یار چلو لائٹ جو ہے نا وہ آ رہی ہے گھر میں, سارا دن اس کا جو ہے نا وہ فری چل رہا ہے, सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आई थिंक दिस इज़ और भी बेशुमार चीज़ें. अगर आपके घर में दो गाड़ियाँ हैं तो आप एक ही जगह जाते हैं ऑफिस में फैक्ट्री में, तो आप एक गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं.
2: बिल्कुल ऐसे
0: आप फ्यूल कंजप्शन भी बचा सकते हैं, आप अपना बचत भी, मूल की बचत भी कर सकते हैं.
2: बिल्कुल ऐसे ही.
0: तो हमें अब अपने जो लाइफ पैटर्न्स हैं हम सबको उसके ऊपर काम करना होगा. वी हैव टू मैनेज दैट.
2: एग्जैक्टली.
0: कैसे हमने अपने आप को मैनेज करना है, कैसे चीज़ों को. और आई थिंक आप लोग कर रहे हैं.
2: नो डाउट. ऐसे
0: लोग उसके ऊपर कर रहे हैं. आप जैसे आप प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी प्रोडक्शन देखते हैं, उसकी कास्टिंग करते हैं, फिर सारी चीज़ें आपने देखनी होती है, रिकवरी, हर चीज़. सो यू हैव टू मैनेज ऑल दोज थिंग, वो सारी चीज़ें उसको मैनेज करना पड़ता है.
2: बिल्कुल ऐसे ही.
0: अच्छा ये बताइए कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़, ऑफ कोर्स बिजनेस मैन बिजनेस में ही होता है, तो उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होती हैं कि ट्रैवलिंग वगैरह के बस सिर्फ काम काम और काम?
2: जी फरहान भी, हमें जब भी चांस मिलता है हम नॉर्दर्न एरियाज विजिट करते हैं. जी बिल्कुल. क्योंकि जो एक बिजनेसमैन होता है या कोई भी बिजनेस कर रहा होता है वो समटाइम्स बड़े चैलेंजेस के साथ, और वो प्रेशर भी होता है बिजनेस का हर तरह से. सो कभी कभी जब चांस मिलता है अपने बिजनेस से थोड़ा सा फ्री होते हैं तो फिर दिल करते हैं और जाते भी हैं, इंजॉय
0: भी
2: करते
0: हैं.
2: जी जी बिल्कुल. क्योंकि देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेचर के साथ जो है ना एक आपका वो ताल्लुक भी होना चाहिए, और हम भी जाते हैं और एंजॉय करते हैं इस चीज़ को. बिजनेस के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें चल रही
0: हैं. अच्छी बात है. और आप कनेक्ट रहते हैं अल्लाह की उस खूबसूरत वादियों के साथ, बाजारों के साथ. आप भी फ्रेश भी हो जाते हैं. हमजा आपका ताल्लुक जो है भावलपुर?
1: मेरा सर ताल्लुक
0: भावलपुर से है ना.
1: जी भावलपुर.
0: और आप सातकीन भी है ना?
1: जी मैं ओल्ड सातकीन भी हूँ और भावलपुर से ताल्लुक है.
0: ठीक है. ये तो बड़े नवाबों का स्कूल कहा जाता है ना?
1: जी सर, ये नवाबों का स्कूल है और ये सर 451 एकर्स पे.
0: अच्छा.
1: ये स्कूल है सादिक पब्लिक स्कूल, और ये सर सेमी गवर्नमेंट के अंडर आता है. और इसमें सर जो है आप जो क्या कहते हैं 451 एकर्स पे.
0: अच्छा.
1: और सर ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट स्कूल है, सादिक पब्लिक स्कूल.
0: एशिया का सेकंड लार्जेस्ट?
1: जी.
0: वेरी नाइस. और ये ज़्यादातर जो लोग हैं वो भावलपुर के हैं कि गिरदोनवा से भी?
1: सर ज़्यादातर लोग इसमें बलोचिस्तान से भी हैं, सिंध से भी हैं, ओवरऑल पाकिस्तान से भी हैं. और बल्कि इसकी आप अगर आप देखा जाए अर्ली इसके ईयर्स में इवन बाहर से भी लोग पढ़ने आते थे.
0: रियली?
1: जी.
0: कितने साल पुराना है
1: ये सर? मोर देन 75 ईयर्स पुराना.
0: अच्छा, मोर देन 75 ईयर्स. और मतलब इट्स अ लेगेसी जो कि लेके चल रहे हैं. और यहाँ मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स भी काफ़ी.
1: जी.
0: अब तो खैर वो बड़े बड़े ओहदों पे होंगे.
1: बिल्कुल सर, अब तो बहुत बड़े बड़े ओहदों में हैं और इवन पूरे पाकिस्तान में किसी ना किसी पोस्ट पे कोई ना कोई ओल्ड सातकीन लाजमी है.
0: अच्छा. और आपने बताया कि सिंध से भी लोग आते हैं?
1: सर सिंध से, बलोचिस्तान से, केपीके से.
0: असल में मिडल में है ना, मेरा ख्याल मिडल में है
1: जी,
0: जो कनेक्ट करता है इन सारे एरियाज को.
1: जी.
0: और हॉस्टलाइट्स भी हैं वहाँ पे है ना?
1: जी हॉस्टल्स भी हैं. और सर के जीरो से हॉस्टल्स हैं, और बल्कि बहुत के जीरो के जो स्टूडेंट्स हैं वो बलोचिस्तान से. जीरो क्लास है, वन से भी नीचे है, और वो उस पे भी हॉस्टलाइज है बच्चे.
0: अच्छा.
1: और इवन
0: क्लास के बच्चे भी?
1: जी. और गर्ल्स भी और बॉयज भी, स्पेशली गर्ल्स भी और बॉयज भी फ्रॉम बलोचिस्तान सिंध के पी के ईच ईच.
0: पंजाब रह गए?
1: पंजाब से तो सर फिर साउथ पंजाब में तो खुद
0: हम लोग. हाँ जी. नहीं दैट्स ग्रेट, जबरदस्त. ये तो बड़ी बात है और बड़ी एजाज की बात होती है कि एक ऐसा ऐसी लेगेसी, ऐसा स्कूल जो कि पूरे पाकिस्तान को कैटर कर रहा है, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और फिर उसकी लेगेसी को लेके लोग चल रहे हैं मुख्तलिफ शोबा जात के अंदर. पाकिस्तान भर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सादिक पब्लिक स्कूल का एक बहुत बड़ा नाम है. एंड आई थिंक इट्स अ ऑनर फॉर यू एज़ वेल, आप बीइंग ए पार्ट ऑफ दैट स्कूल. और बड़ा अच्छा दिन होते हैं जी स्कूल के.
2: बिल्कुल.
0: और आपकी वो मेमोरीज होती हैं स्कूल डेज में, आपने बड़ा कुछ सोचा होता है, बड़े ड्रीम बनाए होते हैं. और जब आपको अपने स्कूल की तब रिकॉल करते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आप इंजॉय करते हैं.
2: आज भी कभी वो पिक्चर्स उठा के देखें. हाँ. तो दिल करता है बस उस टाइम में वापस जाएं और उसको इंजॉय करें.
0: सर वो दिन जो होते हैं ना वो बड़ी जिसे कहते हैं ना आप दुनिया से बिल्कुल हारी होते हैं, ना कोई टेंशन, ना कोई स्ट्रेस, ना किसी किस्म की कोई, बस आपका एक ही काम है, आपने स्कूल जाना है, पढ़ना है, दोस्तों से मिलना है, हैंग आउट करना है, चीज़ें हैं. सो आपके पास कोई ऐसा बर्डन नहीं होता ना.
2: बिल्कुल.
0: सो आई थिंक बेस्ट लाइफ.
2: बिल्कुल बिल्कुल. सो एवरीवन शुड एंजॉय दैट पीरियड के आप स्टडीज भी करें साथ में और एंजॉय भी करें उसको,
0: एंजॉय भी करें और अपने वक्त को भरपूर तरीके से गुजारें. मतलब ये जो वक्त है ना, ये दिस इज अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी.
2: बिल्कुल,
0: अगर आप स्टूडेंट हैं
2: बिल्कुल
0: ऐसे, तो फिर तो आप बादशाह हैं.
2: बिल्कुल,
0: अपनी नगरी के बादशाह हैं.
2: नो डाउट.
0: अच्छा जी, वक्त हमारा ख़त्म होने वाला है. उमेर भाई, आपसे मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वालों के लिए एक कॉल ले लेते हैं. मेरे ख्याल में काफ़ी देर से कॉल्स भी आ रही हैं, फिर हम.
2: जी ज़रूर.
0: जी, अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रहे हैं?
3: साजिद.
0: जी साजिद, क्या कहेंगे आप?
3: सर, अभी अभी मैंने ट्यून किया है, तो इस वक्त आपने जो रिसेंट बात की है वो ये है कि स्कूल के दिन बहुत अच्छे.
0: जी जी जी जी जी, आप बताएं.
3: और जनरली ये इस वक्त मेरा सेकंड ईयर कंटिन्यू है, और कल ही टीचर्स डे पे मेरी मुलाकात हुई है मेरे सारे जो मिडिल क्लास के टीचर से.
0: चार.
3: और वो बहुत ही खुश हो रहे थे और दुआएं दे रहे थे.
0: चले, जबरदस्त.
3: क्लासेस के लिए
0: जबरदस्त जबरदस्त. अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहें, इससे ही अपने उस्तादा की इज्जत करते रहें. थैंक यू, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़. ओके जनाब, साजिद हमारे साथ थे और अब हमने भी चाहनी है इजाज़त. अच्छा जी उमेर, मैं लास्टली आपसे, वो लोग जो बिज़नेस में आना चाहते हैं और कोई काम काज करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क में स्टार्टअप्स के लिए अभी भी मौके हैं? अगर मौके हैं तो उसको कैसे लोग अवेल करें?
2: हर टाइम में मौके रहते हैं, थे भी और रहेंगे भी. डिपेंड करता है कि वो मौके आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं.
0: ठीक है.
2: और मेहनत है, आप जितनी कर लें उतनी कम है, और अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मिलती रहती हैं.
0: बिल्कुल ठीक है जी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं
2: जी. बिल्कुल,
0: आपने सिर्फ उसको अवेल करना है.
2: बिल्कुल ऐसे,
0: थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी कोशिश करनी है, एफर्ट के साथ. होते वेल जनाब, उमेर हमारे साथ है, उमेर साजिद हमारे साथ है. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका. सर जी, फाइनली एनीथिंग यू वांट टू से, आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: सर मैं एट द एंड यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो अपने स्कूल से सीखा, साजिद पे स्कूल से, डू द राइट फेयर नो मैन.
0: वाह क्या बात है,
1: मैं इसके साथ ही क्लोजिंग करना चाहूंगा.
0: चलिए जी, बहुत शुक्रिया हमजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. और वो तमाम सुनने वाले, उनके लिए आज का शो बड़ा एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन है कि आप, इफ़ यू वांट टू डू अ बिजनेस, आप कारोबार में आना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, यू मस्ट डू इट. आप करें, कोशिश करें, एफर्ट करें. अल्लाह ताला ने जो कारोबार है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि जी एक कसीर हिस्सा जो है ना वो बिज़नेस में रखा है. तो इसीलिए आप कोशिश करें, तजारत हमारे अंबिया की सुन्नत है, हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है, तो उस सुन्नत को समझते हुए आप ज़रूर कीजिए. और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सो जी यू जस्ट नीड टू अवेल दैट, उसको ग्रैप करना है. और अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानियाँ करें. फरहान खान इज़ साइनिंग आउट, आपसे मुलाकात होगी फ्राइडे 10 to 12. टिल देन अल्लाह निगेबान एंड लव टू ऑल.

0: तेरा घर नहीं साथ हूं।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

के मामलात से अनजान तो न था, इस घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था, थी जिनके दम से रोंगटे शहरों में जा बसे।

0: रात के 11 बजे है। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत दूर दराज इलाकों को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। सदर ने अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को निशान इम्तियाज से नवाजा। पाकिस्तान ने आज फतह 4 तौसीही वर्शन क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है।
1: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
2: This is FM 101.
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: सुनते रहिए FM 101 101.
1: Nothing.

जाने इस दिल का हाल क्या होगा। हाय हाय जाने इस दिल का क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। अस्सलाम वालेकुम, आवाज किस दुनिया में जिन समातों से मेरे अल्फाज टकराते हैं, इस यकीन के साथ कि आज का दिन आपने बहुत ही आसान तरीके से मुकम्मल किया होगा। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से मैं हूँ आज डॉक्स, और आज एक्चुअली ऑफिशियली ये मंगल की रात 12 से 2 के इस पहर में ये पहला शो है मेरा आपके साथ। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं भी 12 बजे की स्लॉट पे आई एम हियर। बहरहाल रात गए पहर ये जो गुजर रहा है, मैं तो अपने अंदाज में ही करूँगा आपके साथ, या आप मेरा अंदाज खुद बनाएंगे गुफ्तगू का, वो आप जो भी बनाते हैं। बहरहाल आपका मेरा साथ रहेगा 2 बजे तक, और आगाज़ गुफ्तगू है इन्हीं अल्फाज के साथ ही। जो खूबसूरत सा कलाम लगा है जाने इस दिल का क्या होगा, कवाली है इनफैक्ट, हदीका कियानी की बड़ा ब्यूटीफुल कवाली, जाने इस दिल का क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। अल्फाज बड़े मैटर करते हैं, आपके कहे मेरे कहे हम सबके कहे हुए अल्फाज, लफ्ज बहुत मानी रखते हैं, लफ्ज़ों पे ही सारा का सारा निज़ाम चलता है। और जहाँ लफ्ज़ों में आप यकीन दहानी करवाने की कोशिश करें किसी को, जहाँ लफ्ज़ों में आप कोशिश करें किसी को ये बता सकें कि जो आप कहते हैं वही सच है और वही होगा, लफ्ज़ ही तो सब कुछ है। लफ्ज़ आपकी ज़ात है, आपकी ज़ात का इजहार है, लफ्ज़ आप हैं, लफ्ज़ मैं हूँ, और हम भी एक लफ्ज़ के इजहार की वजह से हालत वजूद में हैं। वो लफ्ज़ कुन जो ज़ाहिर हुआ, जो इसका इजहार हुआ और हमारी खिलकत हुई, वो लफ्ज़ों में जो बात की जाती है उसमें जज्बात होते हैं, एहसास होते हैं। तो कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, कोई भी बात करें, मगर लफ्ज़ों को इस तरह से इस्तेमाल करें ये जानते हुए कि आपके लफ्ज़ आपकी ज़ात का आईना है, आपकी ज़ात का रिफ्लेक्शन है। आप जो बोलेंगे जो कहेंगे वो सिर्फ महज अल्फाज या किस्सा या कहानी नहीं है, वो आपकी ज़ात है। हर एक लफ्ज़ एक सदा झांकती है, तेरी चिट्ठियों से वफा झांकती है। सरे आईना पाएगी खुद को लड़की, मेरी आंख में यूं ही के झांकती है। भले ही मकान से वो बाहर ना आए, खुली खिड़कियों से रजा झांकती है। रहा हो चुका हूं मैं जुल्मत कदे से, मेरे घर में ताजा हवा झांकती है। हर एक लफ्ज से एक सदा झांकती है। तो जो दिल करता करें, जिस तरह से दिल करता है रहें, इंजॉय करें लाइफ को, बट रिमेंबर लफ्ज़ आपके ऐसे होने चाहिए जिन पे आपको कल को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। लफ्ज़ ही वादा है अगर यकीन के साथ कहे जाए, किसी कसम खाने की ज़रूरत नहीं। आपके लफ्ज़ों में इजहार हुआ करता है, आपके लफ्ज़ों में इकरार होता है, और लफ्ज़ों में ताकत होती है। यू डोंट हैव टू से कि मैं फलां चीज़ की कसम खाता हूँ, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, अगर लफ्ज़ों में बहुत ताकत है, इनका इस्तेमाल समझ के किया करें। दिलों को तोड़ते हैं, दिलों को जोड़ते हैं लफ्ज़, सब कुछ करते हैं। और मेरा सलाम अकीदत है अपने तमाम तर फौजी भाइयों के लिए जो इस वक्त वतन अजीज़ की हिफाजत पर मामूर हैं, जहाँ पर भी जिस हालत में भी हैं। मेरी खालिक कायनात से यही दुआ है कि आपकी इसी तरह से
सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी कायम रहे और आपके घर वालों की आंखें आपकी मौजूदगी से ठंडी रहे। वक्त हो चुका है 12:20 और आज अजी 7 अक्टूबर 2026 के सन FM 101 रेडी पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से मैं हूँ आज डॉक्स और आपका मेरे साथ रहेगा जी 2 बजे तक। और मंगल और बुध की शब मंगल को 12 से 2 और बुध वाले दिन वही 10 से 12। जब से तूने मुझे दीवाना भाई आप दादी और अ ब्यूटीफुल कलाम आई लव दिस ट्रैक बड़ा ही कमाल है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 04221100101 0421100101 और इसके अलावा मेरी पोस्ट है जी FM 101 लाहौर सर्च कीजिए फेसबुक पे एंड FM 101 चैनल पाकिस्तान दोनों जगह पे मेरी आपको पोस्ट मिलेगी। डू हिट मी विद योर कमेंट्स। लाइव शायद मैं शुरू करूं, मैं एक्चुअली टाइम मिला था मुझे आज तो मैं सो गया और फिर सो के उठा हूँ घंटा एक तो अभी मैं कॉफ़ी साथ लाया हूँ, कॉफ़ी पीऊँगा थोड़ी मेरी भी आंखें खुल जाएंगी उसके बाद आई विल सी कि क्या करना। एंड SMS कर सकते हैं अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए अगर आपकी कॉल नहीं मिलती या पाकिस्तान के किसी ऐसे खत्ते में हैं जहाँ इंटरनेट का मसला आता है तो अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, आपने 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है, इसको भेज देना 4471 पे एंड यस रिमेंबर ज़ियान जुम इन योर प्रेयर्स।

0: जी वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 12:35 और आज है जी 7 अक्टूबर 2026 का सैन FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरापी विद आरजे डॉक्स, जिसमें आपका मेरा साथ होगा जी हर मंगल को 12 से 2 बजे तक, और बुध वाले दिन अपने टाइम पे होऊंगा 10 से 12। एंड यू कैन कॉल मी 04221000102111001001। ये स्लॉट तो बेसिकली है ज़िया भाई की, और बीमारी से पहले भी ज़िया भाई की यही ख्वाहिश थी कि वो स्लॉट अपने चेंज करना चाहते थे, तो मैंने उन्हें कहा था ठीक है बदल लेंगे ना, मैं आपकी स्लॉट पे आ जाऊँगा। तो फिर बीमार हुए वो, तो उनकी सेहत के लिए दुआ करें, खालिक कायनात उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। बहरहाल जी आई एम हियर एंड अभी मेरे साथ कॉल पे कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, मैं लाहौर से रिमशा।
0: क्या हाल है रिमशा?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपको गुड मॉर्निंग का सोकर उठे है ना?
0: या गुड मॉर्निंग।
1: आपको पता है आपकी आवाज कॉल पे इतनी भारी लग रही है।
0: अच्छा
1: बिल्कुल, आप सोकर उठ गए ना इसलिए आपकी आवाज जो आवाज है ना अभी भारी लग रही है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी।
0: अच्छा
1: कॉफी पिए आपकी आवाज बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी।
0: हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं कॉफी पी रहा हूँ। सुनाओ क्या चल रहा है?
1: क्या चल रहा है? आपका शो का इंतजार था, मैंने कहा आज दोस्त पे किया, मतलब एक ही आदत है ना वो थोड़ा देर से आएंगे, मैंने कहा आराम से सुनूंगी।
0: हाँ ये बात भी ठीक है, मैंने बड़े अरसे के बाद जो है ना 12 से ऑनवर्ड की स्लॉट करना शुरू किया आज एक्चुअली ऑफिशियली, तो वरना मैं तो नहीं करता रहा। पहले कभी आगाज जब किया था तब किया ही 12 से 3 वाली स्लॉट पे था 3 घंटे।
1: लेकिन मैंने पहली मरतबा आपका ये जो है ना शो 12 से 1 बजे का सुना। हाँ। सुना है लेकिन मैं सुनती तो 10 से 12 ही थी।
0: चलो ठीक हो गया। आज पर मौजू क्या रखे हम?
1: मौजू आप थोड़ा सा ना फनी रखे आज।
0: मसलन
1: यानी जो ऐसा टॉपिक हो जिस पे सारे खिल खिला के बात कर ले, कोई बचपन की याद, कोई ऐसी बात, कोई भी ऐसी बात, कोई भी मतलब इस तरह का टॉपिक रखें जो मतलब जिससे सुन के सारे फिर चेहरे पे मुस्कुराहट ही आए।
0: हाय हाय हाय हाय। और रात के इस
1: पे है खास के जो कहंदे ना ना पेट दर्द होने लगते हैं हंसने रुके।
0: ऐसा करते हैं अभी आपकी कॉल के बाद भी कोई कॉल आती है ना उनसे पूछते हैं फिर डिसाइड कर लेते हैं किस तरह का मौजू लेके चलना है। ठीक है
1: ये भी ठीक हो गया। ओके हाँ। और जाते जाते इश्तियाक अंकल को मेरा बहुत सलाम और सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। वैसे आपने वो कहना छोड़ दिया कि रेशमी दुपट्टा मैंने लिया हुआ है। वैसे भाई आप कब लेके आएंगे दुपट्टे वाली?
0: सोचते
1: देखने आपको सब कहते हैं तो आप क्यों नहीं करते?
0: चल ठीक है
1: एक नहीं जब भी ये बात होती है बात घुमा देते हैं।
0: है ना? सही कह रही
1: बिल्कुल।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: आज इसी करते हैं, आज जितने भी कॉलर आएंगे ना भाई को सारे ये कहेंगे कि भाई शादी कर ले प्लीज।
0: अच्छा ठीक ओके रिमशा अपना ख्याल रखो।
1: ओके जी ओके
0: लफ़ेस रिमशा। हाय हाय हाय। यूं दिल ना लगे ना दर्द उठे मत रोज मिलो तो अच्छा है, ये प्यार बढ़े ना झगड़ा हो तुम दूर बसो तो अच्छा है। किसी फूल से मिलते चेहरे को मेरी दुनिया देखना चाहेगी, जब आस तुम्हारे कुछ भी नहीं पर्दे में रहो तो अच्छा है। इस प्यार की सुंदर बाहों में अब बाहें डाल कर सो भी चुको, यूं जी जी के अब मरने से मर मर के जियो तो अच्छा है। लेकर जंजीरें हाथों में कुछ लोग तुम्हारी ताक में है, ऐ इश्क हमारी गलियों में ना और फिरो तो अच्छा है। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या पोइट्री आती है, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। हेलो
2: अस्सलाम
0: वालेकुम। अस्सलाम
2: हमना, फ्रॉम लाहौर।
0: हाउ आर यू हमना? अच्छा हाँ, आज आपकी कॉल जल्दी मिल गई। किस तरह का टॉपिक होना चाहिए? अभी लेता हूँ।
2: आपका इस वक्त मूड कैसा है, उसके हिसाब से आप किस पे बात करें।
0: आई रियली वांटेड टू स्लीप, आई वांटेड टू स्लीप एंड स्लीप एंड स्लीप, दैट्स इट। सोने के फायदे।
2: आर यू गोइंग टू फील द सेम एवरी ट्यूसडे?
0: About what? About sleeping?
2: Right.
0: I don't know. I'm not sure.
2: You know, I'm talking about like the routine. के मतलब
0: हर हफ्ते होगा? नहीं, अभी हर हफ्ते ही होगा। अब मैं मंगल को 12 से 2.
2: It's been, you know, फिर आपको routine इस हिसाब से करनी पड़ेगी। Like अब मेरी uni शुरू हुई है कल।
0: सुबह सारा नहीं जाना होता।
2: नहीं, ऑलरेडी शुरू के कुछ दिन इट फील्स लाइक हेल।
0: या
2: आई एम टेलिंग मायसेल्फ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट आई वांट टू हैव अ स्ट्रिक्ट रूटीन अबाउट वेकिंग अप एट 5 एंड देन टेकिंग इट टू 4:30 एंड 4। और अगर मेरे रातों को इस तरह जागना है तो
0: मेरे को रोज थोड़ी जागना है, एक दिन ही जागना है ट्यूसडे को।
2: एक दिन से पूरा हफ्ता खराब होता है।
0: कोई नहीं, मेरा भी नहीं होता, सुनने वालों का भी नहीं होगा।
2: मेरा तो होता है। अच्छा, यू कैन टॉक अबाउट दिस थिंग। इससे मुझे ख्याल आ रहा है कि लाइफ में चीज़ें किस तरह कनेक्टेड होती है। लाइफ आपको किन किन चीज़ों के लिए किस किस तरीके से प्रिपेयर करती है?
0: इट्स फिलोसफिकल, इट्स फिलोसफिकल टॉपिक। कनेक्शन और कनेक्शन को एक मौजू में ढालना।
2: हाँ, इट्स एक्चुअली लाइक इट इज समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी लाइफ के लिए एग्जाम्पल दूँ, स्कूल मेरे पेरेंट्स ने चेंज किया व्हेन आई वाज इन ग्रेड 5। तो व्हेन आई वेंट टू द अदर स्कूल, मुझे एक लड़की बहुत बुरी लगती थी। और उससे भी मैं बहुत बुरी लगती थी, बल्कि सारी क्लास को। मतलब शी वाज अ बिट डिस्टेंट। और फिर लाइक थोड़े से थी, अभी मैं क्या मैं डिटेल में जाऊँ, लेकिन ये कि उसे
0: यू थिंक कि अभी तुम्हारी क्लास को तुम अच्छी लगती।
2: मुझे लगता है फिलहाल अभी भी मेरी क्लास है, नहीं देखिए अभी भी मेरी क्लास है, उसमें मेरा अभी किसी से बहुत ज़्यादा इतना इंट्रैक्शन नहीं हुआ कि मुझे पता चले। बट ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी पीपल हु आर गोइंग टू,
0: व्हाट वुड बी द टॉपिक? टॉपिक कैसे फॉर्म करेंगे? कनेक्शन पे क्या टॉपिक है?
2: आप सिंपली ये बात भी रख सकते हैं कि किसी शख्स को क्या लगता है कि उसकी लाइफ में क्या ऐसी चीज थी जो उसको लगता है कि लाइफ ने उसको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया। Because I think even this is going to give some sort of, even a bit of, maybe, I think it depends on the person, how the person thinks, but yeah, किसी ना किसी तरीके से motivation भी दे सकता है।
0: नहीं, topic ये हो सकता है कि आज यहाँ पे आप stand करते हैं, गुजरे हुए जो आपका कल है बचपन में, वो आज से आपके connect होता है, आपको क्या लगता है, जो आपने सोचा था, क्या आप उस जगह पे पहुँच पाए?
2: Okay, हाँ ठीक है, because हाँ, that will form a question, yeah.
0: क्या उस जगह पे पहुंच पाए? क्या उस चीज को हासिल करने में कामयाब हुए? क्या वो मकाम मिला है? क्या इमोशंस? क्या टारगेट्स? दिस कुड बी द टॉपिक। चलो, लेट्स टॉक अबाउट इट।
2: इट इज मोर अबाउट एम, इट इज मोर अबाउट गोल।
0: नहीं, इट इज अबाउट कनेक्शन, कनेक्शन। इट इज ऑलवेज अबाउट कनेक्शन। क्या आपका माजी से अब क्या कनेक्शन है? आपको लगता है जहाँ पे आप हैं वो कनेक्टेड है? ऑल टुगेदर डिफरेंट फील्ड में आ गए, डिफरेंट फेज में आ गए, डिफरेंट चीज बन गई। या जो आपने सोचा था, अभी भी उसी तरह यू आर कनेक्टेड कि मैंने सोचा था ये करूंगा एंड आई एम डूइंग दिस, मैंने सोचा था मैं ये करूंगी एंड आई एम डूइंग दैट।
2: ये मेरे ख्याल से बहुत चीजें सोचने से नहीं है, मतलब अगर मैं देखूँ इस टॉपिक पे तो आई वुड टॉक अबाउट कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत पे मैं, मतलब अगर मैं देखूंगी तो मैं उस पर बात करूँगी, क्योंकि अपना एक अगर ये बात पर सिंपल है कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मैंने मतलब मुझे बुक रीडिंग का शौक था, तो मैंने बहुत छोटी एज में कुछ ऐसी किताबें पढ़ी जो कि शायद मुझे उस वक्त नहीं पढ़नी चाहिए।
0: अच्छा।
2: और उस हिसाब से मतलब नॉट इन द सेंस कि उनमें कोई ऐसी गलत बात थी, बट इसलिए क्योंकि वो इंटेंस थी, वो डिप्रेसिंग थी, या जो उनमें जितने भी इमोशंस थे वो इंटेंस थे, या किसी भी किस्म का इंटेंस इमोशन उन्होंने मेरे अंदर जो है वो रीड किया। और एट टाइम जो है लोग उस वक्त तो जाहिर सी बात है आपको पेरेंट्स कहते हैं अभी तुम्हारी पढ़ने वाली चीज़ें नहीं, आपको तब नहीं समझ आती, बट व्हेन ऑफ कोर्स द टाइम यू नो इट मूव ऑन। तो अगर मैं अब देखूंगी क्या मैं चाहूंगी कि मेरे सिबलिंग वो चीज़ें पढ़ें जो कि किसी भी तरीके से वेदर इट इज पॉलिटिकल, वेदर इट इज समबडीज लाइफ जर्नी, या किसी भी तरीके से, तो क्या मैं चाहूंगी, तो आई फील लाइक नो आई वुडंट वांट देम टू गो एंड रीड ऑल दैट स्टफ। एंड देन इवन कुछ साल पहले भी कोई एक दो किताबें ऐसी हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई मेरे से पूछे कि अच्छा वो नाम बता दो किताब का हमने पढ़नी है, तो मैं नहीं बताऊंगी कि बिकॉज दे आर टू डिप्रेसिंग। तो ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हाँ उनमें बहुत लंबे एक लॉन्ग टर्म उसमें बहुत फर्क पड़ता है। एंड द थिंग आई वाज अर्ली टॉकिंग अबाउट गिविंग द एग्जांपल ऑफ माय क्लास फेलो, मुझे व्हेन आई वाज इन माय ग्रेड 10 हम लोगों का ओ लेवल स्कूल था, मैं मैट्रिक करी थी जब 9 में थे, वी वर 4 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, जब 10 में आए वी वर ओनली 2। मैं थी और वो लड़की थी, और मैं कभी कभी अपने टीचर्स से कहा करती थी कि मैं आई थिंक हम लोग 32 स्टूडेंट्स थे जब हम लोग 6 में थे, और उन 31 में से एक मैं थी जिसने इसके साथ टाइम स्पेंड करना था, जिसके साथ टीचर्स नहीं बात कर पाते, जो है ना लाइक प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते।
0: ओके।
2: क्योंकि अगर मुझे हैरानी अब आके मैं सोचती हूँ, मुझे बहुत हैरानी होती है कि सम हाउ इन वन वे और अनदर कहीं ना कहीं कोई प्रोपर होता था, कोई प्रोजेक्ट होता था, कुछ होता था, मैं चाहती थी या नहीं चाहती थी, वो चाहती थी या नहीं चाहती थी, हम लोग साथ होते थे। मतलब आई विल मतलब लाइफ इज लाइक ऑलरेडी प्रिपेयरिंग मी कि अच्छा आपने एक टाइम पे पॉइंट पे जाके जिंदगी के साथ इतना टाइम गुजारना ही है, सो यू विल हैव टू लर्न अबाउट द अदर पर्सन, यू विल हैव टू बीयर विद इट, यू विल हैव टू टॉलरेट इट व्हेदर यू लाइक इट और नॉट।
0: बिल्कुल ठीक है।
2: तो अब आके बहुत हैरानी होती है कि हालांकि मुझे पसंद नहीं था, हालांकि उससे पसंद नहीं था, एंड फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग साथ होते थे किसी न किसी तरीके से, हमें सभी पसंद था लेकिन वो होते थे। सो दैट इज सरप्राइजिंग बट थिंग टेंड टू कनेक्ट यू नो वेरी स्ट्रांगली इफ वी टॉक अबाउट इट एज अ लॉन्ग टर्म। और बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है चीज़ों का फॉर्म होना, लाइक इस तरीके से मतलब आप अभी नहीं बता सकते कि आगे चंद साल बाद।
0: इस सारी चीज में एक चीज मैं देख रहा हूँ, देर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एतमाद और इमोशनल एक्सपोजर एक दूसरे के साथ नहीं था। जब तक आपका इमोशनल एक्सपोजर एक दूसरे के साथ नहीं होता, आपकी दोस्ती नहीं बन पाती। किसी को पसंद करना ना पसंद करना, किसी के साथ ताल्लुक का बनना ना बनना, वो इसी वजह से है। When you feel emotionally uncomfortable with someone, you do not connect with that person.
2: आपके ना intellectual level में difference होता है। You have some things in a life.
0: वो तभी वो सारी चीजें फिर अंदर आ जाती हैं ना। आपके emotions, आपका intellect different होने की वजह से भी connect नहीं करता।
2: मतलब it's like कि I was once talking to one of my teachers. मैंने उसकी लाइफ की कंडीशन के बारे में बात की, बट ये कि आपको बहुत देर से समझ में आती है दैट इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग दैट डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू गेट बुलेट बाय दैट पर्सन। तो ये कि अलबत्त मैंने उनसे वो बात कही, कुछ बातें उनको कहीं बताई, तो ही वाज लाइक कि यू नो इट मेक्स सेंस विच हाउ शी इज। मतलब मैं अब आपको क्या, मैं आपको बड़ी मजे की छोटी सी बात बताती हूँ। वंस she was ill, even I was ill, lekin hum dono bimar the, and there was something important, so we had to come to the school. And like, hum log bahir garden mein khade the, and our teacher told us to come and stand in the line. Aur wo teacher ko bol rahi hai ki aap matlab kisi ko mera khayal hi nahi hai, main bimar hu and stuff, so main kaise aake khadi hu. So usne kaha theek hai, acha theek hai Lisba, okay fine, whatever, then sit down. And then she was like, nahi miss, you know the benches are cold, how am I going to sit down? Like if you want to stand, to aap aake line mein khade ho jaye. Matlab it's like she had a different matlab perspective about things, and when that doesn't match with the maximum of people, majority of people, you can't just work out with it. I even the teachers used to matlab I had a really strong idea like ki agar is wajah se iska mood kharab hua hai to kis baat se hua hai. And have what she wants, but that doesn't really mean that I was going to agree with it, because at times you get a bit irritated ki yaar hum har waqt na ek agle bande ko, you cannot give somebody some special treatment, and you cannot always make something you know the best for the other person.
0: बहरहाल मुझे जो समझ आई है, what I can talk about is making it very simple. Let's talk about के अक्सर इस पर रहमान भी बात करता है, वो अक्सर ये मौजू रख के बैठा होता है, एतमाद टूट जाए तो दोबारा बन सकता है कि नहीं. आई वॉन्ट टॉक अबाउट ट्रस्ट, होता क्या है एतमाद? I want to learn it.
2: नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा.
0: नहीं, I want to learn कि trust होता क्या है. Trust पे बात करें.
2: Believing in someone.
0: होता क्या है? Believing in someone. What you are actually believing in? I want you to call me again. Think about it. Call me again. थोड़ा technically.
2: मैं बारे भी करूँगी, बस मैं सो जाऊँगी.
0: थोड़ा philosophical point of view से बात करेंगे हम.
2: मैं सो जाऊँगी.
0: अच्छा. चलो ठीक है,
2: मैं देखूंगी अगर मुझे मैं उस वक्त तक जागरी हुई तो फिर मैं देखूंगी, वरना मैं कोशिश करूंगी कि
0: चलो ठीक है. ओके ओके, स्लीप वेल, स्लीप वेल, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़. ऑलराइट जी, मैंने डिसाइड किया कि एतमाद पे बात करते हैं. एतमाद टूट जाता है, एतमाद ऐसे होता है, वैसे होता है, एतमाद होता क्या है? 4471 पे मुझे पहला मैसेज आया आज के स्लॉट में, दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम किया, तो पहला पैगाम आया, हेलो भाईजान क्या हाल है, मैं रकीब. अस्सलाम वालेकुम रकीब, क्या हाल है? और उसके बाद अगला मैसेज आया, इस्लाम डॉक्स, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. आप अच्छा जी, मैं सना पेशावर से, कैसी हैं सना आप? ठीक हैं. और कहती हैं, आपका हर शो सुनती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके शो में, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, लव यू, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया सना. पेशावर का मौसम कैसा है? एंड हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग? अब्दुल नूर हाशमी साहब रिवाज गार्डन से कहते हैं, डियर डॉक्स आदाब तस्लीम जी, कैसे हैं? देन ओके रकीब खान, खुशाब से सुनते हैं, मैं ठीक हूँ. आबगीन, कल रात जो इंदहा के लिए कट के गिरा है, किसके लिए? बर्ड्स को बहुत प्यार था इस ओल्ड शजर से, ईंधन के लिए, कल रात जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, परिंदों को बहुत प्यार था उस पुराने शजर से. साहिब रफीक साहब लाहौर से सुनती हैं, इस्लाम किया, वालेकुम सलाम हाजिर डॉक्स, बहुत दिनों बाद 12 की स्लॉट में आए हैं, डिफरेंट लग रहा है सर, लास्ट ईयर याद आ गया, एंजॉयड लॉट दैट टाइम. अल्लाह ताला आरजे सियाह को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुमा आमीन. रोशी हैं, कहती हैं, ज़िया भाई कैसे हैं? बहुत सी दुआएं उनकी सेहत सलामती के लिए, थैंक यू वेरी मच, दुआ करते रहें. زہان مغل نے لائیو پہ جوائن کیا, لائیو میں نے اسٹارٹ کر دی ہے. اینڈ آج اسپیس ڈی او ایکس ڈاکس اگر آپ لکھیں گے آپ کو میری لائیو مل جائے گی, وہاں پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں میری لائیو پہ. اینڈ زہان نے سلام کیا, وعلیکم السلام, کیا حال ہے زہان؟ طوبہ نواز کہتی ہیں اداسی والا ماحول ہے آج. نہیں, نیند والا ماحول ہے, اداسی والا کوئی ماحول نہیں ہے. اینی ویز ٹیسٹ پہ بات کرتے ہیں, اعتماد ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہوتا کیا ہے, جس کو بنانے کے لیے ایک ایسی چیز جس کو بنانے کے لیے مہینے سال کبھی کبھی پوری زندگی لگ جاتی ہے, بڑا ٹائم لگتا ہے. یہ بڑا زبان زد عام ہے, چلتی ہے یہ بات, ہر کسی کو پتا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے ٹوٹنے میں اس کو ایک لمحہ لگتا ہے, دیٹ از کالڈ اعتماد, ایک لمحے میں ٹوٹ جاتا ہے. ایک شخص آپ سے کہتا ہے مجھ پر یقین کرو اور آپ کرتے ہیں, پھر ہوتا کہ آپ اس کے سامنے اپنی کمزوریاں رکھتے ہیں, اپنی باتیں بتاتے ہیں, اپنے راز بتاتے ہیں, اپنے ڈر بتاتے ہیں, اپنا وقت دیتے ہیں, اپنی محبت دیتے ہیں. پھر ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو آپ نے سب سے زیادہ سچا سمجھا تھا وہی آپ سے سچ نہیں بول رہا, تو صورتحال میں آپ کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے. وہاں پہ سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ جھوٹ کیوں بولا اس نے آپ سے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوا کیا میرے ساتھ, اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اعتماد دوبارہ بن سکتا ہے, اگر بن سکتا ہے تو کیسے, کیا وہ پہلے جیسا ہو سکتا ہے, اگر دوبارہ بنتا ہے تو کس شکل میں ہوتا ہے. باہر دیز آر دی کوشچنز. لیکن میں چاہوں گا مجھے پہلے تھوڑا سا گائیڈ کریں گے, آپ بتائیں گے اعتماد آخر ہوتا کیا ہے, جس کو انگریزی میں ہم ٹرسٹ کہتے ہیں, ٹی آر یو ایس ٹی, ٹرسٹ. بہت آسان لفظ سمجھتے ہیں, ٹرسٹ, اعتماد ہوتا کیا ہے, جس میں آپ سائیکولوجیکل لیول پہ بات کریں. ٹرسٹ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص مجھے دھوکہ نہیں دے گا. ٹرسٹ کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ بندہ آپ کے لیے پریڈکٹیبل ہوتا ہے, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کی ہر ادا کو, ہر انداز کو, ہر لفظ کے معنی کو بھی جانتا ہوں. ایک تو ڈیفینیشن یہ ہے, لیکن خیر آپ بتائیں گے مجھے کیا ہوتا ہے آپ کی نظر میں. اور آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 0422111001. ہیلو,
1: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: معذرت جی, میں دوبارہ آئی.
0: کون ہے ہمارے ساتھ؟
1: میں لاہور سے رمشا دوبارہ آئی ہوں.
0: کیا حال ہے رمشا؟ پھر آ گئی.
1: میں نے نا ایک تو میں نے ٹاپک سوچا تھا, میں نے کہا آج ٹاپک یہ رکھ لیا جائے نا, کرایہ دار سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں.
0: آپ بتائیں, کرایہ دار سے محبت کرنی چاہیے
1: نہیں؟ کرایہ دار اگر پھر اگر یہ ہوتا ہے کہ اگر محبت کر لی نا تو پھر کرایہ دار چل جاتا ہے, پھر موجود ہوتی ہے نا وہ بھی چہرہ.
0: میرا تو خیال ہے کرایہ دار سے اگر آپ محبت کر لیں وہ کرایہ دار نہیں رہتا, مالک مکان بن جاتا ہے.
1: مالک سے بن جاتا ہے تو وہ جب ہزار کر دو تو پھر مالک بن جاتا ہے, نہ کرو تو پھر کتنے محبت رہ جاتی ہے.
0: یہ بات بھی ٹھیک ہے, اظہار کر دیں تو وہ پھر مالک مکان بن جائے.
1: مجھے فنی ٹاپک میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا یہی نہ رکھ لیتے ہیں کہ آج کرایہ دار سے محبت کرنی چاہیے.
0: ہاں بالکل ٹھیک بات ہے, آپ بالکل اسی پہ بتائیں, کرنی چاہیے.
1: میں نہیں کرنی چاہیے, میں نے تو میں کبھی کرتی نہیں ہے.
0: آپ نے کس سے کی ہے؟ مالک مکان سے؟
1: نہیں, مالک مکان سے جس نصیب سے ہوتا ہے نا وہ ہو جاتی ہے بس.
0: اچھا, تو محبت کیا یہ دیکھتی ہے یہ کرایہ دار ہے یہ کرایہ دار نہیں ہے, اس سے کرنی ہے اس سے نہیں کرنی؟
1: ہاں بالکل ایسی ہے, محبت نہیں دیکھتی, کرایہ دار ہے یا مکان مالک ہو جاتی ہے بس, چاہے وہ راہ چلتے سے کیوں نہ ہو.
0: راہ چلتے سے بھی ہو جاتی ہے ایسے ہی راستے میں جاتے جاتے کوئی بندہ دیکھا پسند آ گیا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟
1: نہیں, بعض دفعہ نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب جو روزانہ راہ سے گزرتے ہو نا ان کو دیکھتے دیکھتے ان کا رویہ ان کی چال اور ان کی نا کچھ ایسے ہی عادتوں سے پیار ہو جاتا ہے, محبت ہو جاتی ہے.
0: مجھے راہ جاتے ایک بندہ نظر آیا تو آپ کو محبت ہو جائے گی؟
1: نہیں
0: کیا, نہیں کیا, نہیں نہیں کیا ہوتا ابھی کہہ تو رہی ہے ہو جاتی ہے.
1: और नहीं हो जाती है लेकिन बात
0: बंदा सुन रहा है आपका बंदे को कौन अगर सुने
1: नहीं, नहीं,
0: बताना नहीं, जरा मुझे
1: नहीं, मैं तो आपको टॉपिक बताने आई थी आपने तो
0: टॉपिक बता रही था चलो ठीक हो गया ठीक
1: अच्छा,
0: हो गया
1: आपका जो अभी टॉपिक है मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ भाई एतबार ऐसा होता है कि बार सफा जैसे कि हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं यानी इस तरह का मैंने जहाँ तक मैंने इसे समझा कि अगर हम किसी से मशवरा लेते हैं तो हमें उस पर एतबार होता है कि वो हमें अच्छा मशवरा भी देगा यकीन होता है उससे
0: एतबार होता है कि वो आपको अच्छा मशवरा देगा
1: सीधे रास्ते पे चलाएगा कोई गलत मशवरा नहीं देगा अगर हम कोई अपने घर का कोई भी ऐसा सामान हो हम उस पर हमें ट्रस्ट होता है कि हाँ ये बंदा पहुंचा देगा या इसको कोई चीज दो रखवा दो इसके पास तो ये मुझे वापस मिल जाएगी
0: बिल्कुल ठीक है
1: जहाँ तक ये समझे
0: बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक है आपने अच्छा समझा ओके जबरदस्त आई गॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू
1: और जब अभी कॉलर आएंगे ना उन्होंने कहना है कि रिमशा ने फिर से कॉल कर ली तो माजरत मैं तो वैसे ही बताने आई थी अपनी टॉपिक बस
0: अच्छा
1: बात तो लैन लग जानी रिमशा ने कॉल की थी
0: चले ठीक हो गया रिमशा थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी
1: ओके जी आपने ये भी पूछना किराए दर से मोहब्बत करनी चाहिए
0: हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है
1: ओके
0: अच्छा जी रिमशा थी किराएदार से मुहब्बत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ये भी ठीक है जी और फिर कहती हैं चलते चलते किसी से भी मुहब्बत हो जाती है वैसे आपका क्या ख्याल है किसी से भी मुहब्बत हो जाती है मुहब्बत में भी एतबार का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हावी होता है अभी जहाँ पे एतमाद एतबार ट्रस्ट ये चीज़ें नहीं हो वहाँ पे मुहब्बत क्या ही होगी आपका क्या ख्याल है राह चलते भी किसी से नहीं हो सकती रिमशा का तो ख्याल है हो जाती है आई वॉन्ट टू लर्न कि होता क्या है ये ट्रस्ट किस बला का नाम है मेरा सवाल है मैं जानना चाहता हूँ ट्रस्ट कहते किसको आई वॉन्ट टू लर्न इट मोहम्मद सदीक साहब है खैरपुर से सुन रहे हैं और अब्दुल हक लोंड साहब भी सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया जी शाहजेब शाजू हैं इस्लाम की असर जी वालेकुम अस्सलाम तूबा नवाज दिल टूट जाए एक बार दोबारा जोड़ा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है बिल्कुल ठीक है जुहान मुगल है सर जी आज ज़िया के लिए दुआ करें सब सुनने वाले अल्लाह पाक ज़िया भाई को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे आमीन फिजा राजपूत हैं कहती हैं आए आए आ गए जी वकास खान गुड जॉब थैंक यू वेरी मच जी शहीद सफदर सुलेरी हैं कैसे हैं असद भाई आई एम फाइन आप बताएं अभी मोहम्मद है नहीं करनी क्या नहीं करनी आए ये मोहब्बत अच्छा गुलाब सलाम अलैकुम सर जी वालेकुम अस्सलाम मैडम जी कैसी हैं आप 4471 पे मैसेज आया है चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं वाह वाह वाह वाह एक टाइम पे हजारों से हो भी नहीं सकती किराएदारों से हो सकती है हजारों से नहीं होती क्या किराएदारों से हो सकती है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे बताइए आपकी नजर में एतमाद क्या होता है जिसको बनने में पता नहीं इतनी सदियां इतने ज्यादा दिन इतने टाइम क्यों लग जाता है और कभी कभी एक लम्हे में टूट जाता है कभी एक लम्हे में बन भी जाता है एक लंबा अरसा गुजारने के बाद एक चीज बनती है जिसे हम ट्रस्ट कहते हैं और फिर वो टूट क्यों जाता है मतलब एक लंबे अरसे से बनने वाली चीज एक लंबे अरसे में जाके क्यों नहीं टूटती और क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूट जाता है क्या महज एक झूठ की बुनियाद पे एक लंबे अरसे का ट्रस्ट टूट सकता है क्या इसे वाकई टूटना भी चाहिए मेरे अंदर इस तरह के बहुत सारे सवाल चलते हैं आप और मैं जिंदगी में बहुत सारे इस तरह के मामलात से दोचार होते हैं आपने भी मैंने भी बहुत सारे इस तरह के मामलात का सामना किया जहाँ पे आप बताते भी रहते हैं मेरे कहने का मकसद ये नहीं था या मैंने ये बात ऐसे नहीं की बट स्टिल आपको फेस करना पड़ता है अगला बंदा कहता है तुमने मेरा एतमाद तोड़ दिया तुमने मुझे दुख पहुंचाया तुमने दर्द दिया ये एतमाद टूट गया एतबार टूट गया ट्रस्ट खत्म हो गया शेक हो गया आप फिर एफर्ट करते हैं लेकिन मेरे जहन में ये आता है यदि एक लंबा अरसा गुजार के एक चीज बनती है एस्टेब्लिश होती है तो लंबा अरसा गुजारने के बाद एक लम्हे में वो चीज कैसे टूट जाती है मेरा तो पहला सवाल ये होता है और मैं तो यही करूँगा। बहरहाल कभी ये बात करें तो खैर फिर होगी। अभी ये है ट्रस्ट क्या होता है। ट्रस्ट यहाँ पे मैंने ये कहा कि व्हेन यू बिकम प्रिडिक्टेबल, यानी अगला बंदा आपको इस तरह से जान जाए कि आपकी बातों, आपके मानी लफ्ज़ों के, आपकी अदा, आपकी गुफ्तगू, आपका उठना बैठना, कहाँ पे क्या रिएक्ट करेंगे, क्या बात करेंगे, किस तरह से आप रिएक्शन देंगे किस चीज़ का, वो तक भी जान ले या दावा करे जानने का, तो ये भी एक एतमाद और ट्रस्ट की डेफिनेशन होती है। इसके अलावा और भी होती है। आपके लिए क्या है, जुबानी कलामी कुछ भी कह सकते हैं। अपने अंदर देखा करें। मैं सवाल जो लेके आता हूँ, मेरी कोशिश होती है आप अपने अंदर झांकें, मैं अपने अंदर झांकूं, अंदर की बात बताएं, व्हाट यू थिंक अबाउट इट, आपकी नज़र में होता क्या है, दुनिया क्या कहती है, किताबें क्या कहती हैं, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। हर किसी की डेफिनेशन चीज़ों की अपनी होती है, आपकी डेफिनेशन अपनी है। आपके अंदर एतमाद का पैमाना और है, मेरे अंदर एतमाद का पैमाना और है, आपकी मोहब्बत की डेफिनेशन और है, मेरी मोहब्बत की डेफिनेशन और है, मेरे गुफ्तगू के लिए अल्फाज का चुनाव और है, आपके लिए और है। आप किसी ऐसी चीज़ पे हो सकता है किसी शख्स को पसंद करें या किसी पे एतमाद कर लें जिस चीज़ पे मैं ना करूँ, या मैं किसी ऐसी शय पे किसी पे एतमाद कर लूँ जिस पे आप कभी ना करें। चीज़ें तो बड़ी मुख्तलिफ होती हैं हर जगह पे, हर शख्स के लिए। हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक जज्बात से है, जो तोली नहीं जा सकती, जो मापी नहीं जा सकती, महज जानी जा सकती है या महसूस की जा सकती है, वो हर फर्द के लिए मुख्तलिफ है। तो आपका नज़रिया क्या है, आप क्या समझते हैं एतमाद क्या होता, और क्या आपका एतमाद कभी टूटा है, मुझे मैसेज करके बताएं। अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, आपने 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना है 4471 पे। एंड लेट मी सी इफ यू गाइस आर देयर एंड लिसनिंग। सो इसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0421100101। और मेरी पोस्ट है जी FM 101 लाहौर, फेसबुक पे सर्च करेंगे वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, एंड FM 101 चैनल पाकिस्तान वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं मेरी पोस्ट पे। एंड मेरी लाइव है, लाइव वीडियो स्ट्रीम RJ space DOX डॉक्स लिखेंगे मिल जाएगी। एंड थैंक यू वेरी मच जी असमा जी, आपने ज्वाइन किया, और इसके अलावा फराह अफजाल साहिबा आई हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई एम लुकिंग फॉर द डेफिनेशन, दिस इज द क्वेश्चन, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे पास जो एतमाद की डेफिनेशन है वो कुछ ठीक भी है कि नहीं है। कॉल ले रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
3: वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, कौन है हमारे साथ?
3: ये मलक इरफान बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको और भाई ज़िया को शिफाए कुल्ली अता फरमाए, क्योंकि आपकी भी आज ना वो पहले जैसी आवाज नहीं है, वो जो मतलब ऐसा लगता था क्या बात है।
0: हाँ नहीं बस रात का टाइम है ना।
3: तो जो बात है ना एतमाद की, वो तो भाई बात ये है कि अगर किसी पे होने पे आए तो फिर भी एक चीज लेने देने से हो जाता है, अगर टूटने पे भी आए तो। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, हम एक दूसरे के साथ अपने घर वालों की भी बातें शेयर करते रहते हैं, अगर हम नाराज भी हो जाएं तो हमें कोई फिक्र नहीं होता कि यार ये मेरे राज खोल देगा या ये मेरी चीज़ें मतलब जो इनके पास हैं वो कहीं खो देगा। तो अगर हम एक थोड़ी सी गलती कर देंगे ना तो हम एक दूसरे का एतमाद खो देंगे, मतलब बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन एक थोड़ी सी गलती जो होती है ना वो मतलब उस पूरे टाइम को जाया कर देती है।
0: बिल्कुल ठीक है, छोटी सी गलती से सालों की मेहनत रायगां चली जाती
3: है। तो बेशक है, तो वो जो बात हो रही नहीं किराएदार की मोहब्बत है यार, मुझे भी एक अजनबी दोस्त से मोहब्बत हुई थी, मतलब ना एक आस्थाने पे हम जाते थे।
0: अच्छा जी।
3: तो वो भी मतलब वहाँ आता था और मैं भी जाता था, उस वक्त ना मोबाइलों का दौर काम था, मैं मतलब सुनने वालों की कन्फर्म दूर कर दूं कि उसका नाम था मोहम्मद अकरम।
0: अच्छा।
3: तो मतलब मैं उसके साथ ना इतना क्लोज हो गया कि मुझे डॉक्टर भाई मतलब इंतजार रहता था कि कब वो उरस होगा तो उनसे मुलाकात होगी।
0: बिल्कुल सही।
3: तो वो جو عرس لگاتے تھے نا اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے, وہ نا اس دنیا میں نہیں رہے, تو یار اب مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے, اسے کوئی پتہ نہیں میں کہاں ہوں. تو لیکن 8 سال ہو چکے ہیں کہ میں ابھی بھی اس کو بہت یاد کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یار یہ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عز و امان میں رکھے. یہ جو ایسی محبت ہوتی ہے نا, میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ ان سے بچائے.
0: اچھا چلے اللہ اس سے بچا کے رکھے آپ کو. چلے تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار یور کال جی, تھینک یو. وہ اس انداز کی محبت, وہ اس انداز کی مجھ سے محبت چاہتا ہے, میرے ہر خواب پر اپنی حکومت چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں اس کی ضرورت بن چکا ہوں, تو گویا وہ مجھے حسب ضرورت چاہتا ہے. کیا بات ہے, وقت ہو چکا ہے 1:10. 7 اکتوبر 2026 کے سندھ ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں نائٹ تھراپی ود آر دی ڈاگز. ہر وقت ظاہر ہے انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے اور ہر وقت ایک ہی انداز میں آپ گفتگو نہیں کرتے. جیسے آج میں خیر سو کے بھی اٹھا ہوں, سو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور شاید رات کا یہ پہر ہے. ابھی تھوڑا تھوڑا میں اس کے مومنٹم میں آؤں گا, ابھی ٹائم لگے گا, دین آئی ول بی فائن, آ جاؤں گا میں مومنٹم سے آ جاؤں گا. بٹ یس, ایٹ نائٹ تھوڑی باتیں پھر ایسی ہونی چاہیے, کیا کیسے کیوں. تقاضا ہے اعتماد کا, کچھ دور تلک میرے ساتھ چل. تقاضا ہے اعتماد کا, کچھ دور تلک میرے ساتھ چل, میرے قدم سے قدم ملا کر, میرے ہاتھ کو تھام کر, کچھ باتیں کر مجھ سے اپنی, کچھ میری باتیں سن, کچھ بتا اپنے دل کا حال, کچھ تیرے اندر کو جان لوں, کچھ تجھ کو پہچان لوں, کچھ تیری کمزوریاں میں جانوں, کچھ تو مجھے جان کر حیران ہو, کبھی تجھے لگے کہ مجھ سے زیادہ مضبوط تو کوئی شخص ہے نہیں, اور کبھی تو حیران ہو کہ کیا اس سے کمزور بھی کوئی ہو سکتا ہے. میرے ساتھ سفر کر, میرے ساتھ چل, اعتماد بھی آ ہی جائے گا. اوئے یہاں پہ مجھے آ گیا ایک گانا یاد, وہ لگاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے یہ گانا لگاتے ہیں, اور سوٹ کرے گا یہ والا گانا لگانا چاہیے. یس, آئی ایم گونا پلے دیٹ ٹریک. یہ گانا میں روک رہا ہوں, ہاں اعتماد کی بات چلی تو پھر گانا تو یہ ہونا چاہیے. وقت ہو چکا ہے 1:13 ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں نائٹ تھراپی ود آر دی ڈاگز. اچھا جی, نوشین رشید صاحبہ نے اسلام کیا, وعلیکم السلام. عتیق عوان نے اسلام کیا, آر دی ڈاگز بھائی وعلیکم السلام, پروگرام اچھا ہے, آپ کی باتیں تو کمال ہوتی ہیں. عتیق عوان فرام تلاگنگ لسننگ فرام فیصلہ آباد, تھینک یو ویری مچ عتیق بھائی. نوشین راشد صاحبہ, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں, آپ خیریت سے ہیں؟ ساجد علی, اوکے تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے میں نے جینیونلی ٹائم چینج کر لیا. اے یار, آئی لو دس ٹریک, اے بیوٹیفل ٹریک, اعتبار بھی آ ہی جائے گا. دس از آر دی ٹاکس, اینڈ یو کین سینڈ می ٹیکسٹ میسج. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے, 101 لکھیں, اسپیس دیں, اپنا نام اور پیغام لکھیں اور اس کو بھیج دیں 4471 پہ. اینڈ لیٹ می نو یو آر لسننگ. کم آن, فائزہ حیدرآباد سے, مرا بخیر آگلے, بخیر آگلے. سیاں مارا سسٹر بھی سن رہی ہے, آپ کی سسٹر کو بہت سارا سلام ہے فائزہ. انجوائے دس ٹریک. And I'll be taking a call 0422111111. Majibin, I am after a long time. Assalamu alaikum, Majid. Waalaikum assalam. How are you? Sana Rajput, assalam kiya. Waalaikum assalam. Aapke tennis lag gayi thi. Nice song hai na.

देखा है, कोई फायदा नहीं। हम ट्रस्ट करके ये साबित करते हैं कि हम ब्लाइंड हैं और लोग हमें समझते हैं ये फूल है। सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखें और ख़ुद अपनी ज़ात पे ट्रस्ट करें। डोंट ट्रस्ट एनीवन अंटिल यू नो देम कम्प्लीटली। कोई मोहब्बत, कोई प्यार ये नहीं कहता कि आग में कूद जाओ। फर्स्ट वी हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट द पर्सन वी आर गोइंग टू ट्रस्ट। गिव टाइम टू योरसेल्फ। ओके, मैं अदरवाइज भी बात करूं माजमीन, अगर आपको बुरा ना लगे। आई बिलीव कि जब आप ये कहते हैं ना किसी पर एतबार ना करो, तो मुझे लगता है यू डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ, यू डोंट ट्रस्ट योर डिसीजंस। ये किसी और की बात नहीं है। I've been telling you guys, मैं बार बार एक चीज दोहराता आता हूं, बार बार एक चीज बताता आ रहा हूं कि मेरा एक डिसीजन गलत हुआ, मैंने किसी गलत शख्स पे एतबार कर लिया या एतमाद कर लिया, तो वो मेरी अपनी चॉइस थी, मेरा अपना डिसीजन था। और मसला ये है कि जहां आपके मेरे या हमारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं ना जी, किसी चीज पे इंटरेस्ट पे, तो वहां पे फिर हम बातें या छुपाते हैं या घुमाते हैं या सही बात नहीं बताते, जिसकी वजह से हम फिर अगले शख्स को मजबूर करते हैं, या कभी कभी कोई सिचुएशन हमें मजबूर कर देती है गलत बयानी पर, उससे फिर रिश्ते ख़राब होते हैं, टूट जाते हैं और कहते हैं एतमाद नहीं रहा। और इसको इस तरह से भी क्यों नहीं देखा जाता, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे किसी पर एतमाद नहीं करना चाहिए, तो इसका क्या ये मतलब नहीं कि कोई मेरे पे भी एतमाद करने को तैयार नहीं, कोई मेरे इर्द गिर्द भी मेरे पर ट्रस्ट करने को भी तैयार नहीं। आई बिलीव कि आपको रिस्क लेना चाहिए। लाइफ एक दफा मिली है, वन वे रोड है। आरजे जुबिया शफीक आई है, क्या बात है, कहती है जो शख्स आपको अपने आपको अपने असल रंग दिखा दे, इसे नए सिरे से पेंट करने की कोशिश मत किया कीजिए। जी मेहरबानी, शुक्रिया मैडम। किराएदार से मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं, पहले आप ये बताएं, बाकी बातें छोड़े। तो बात है इसकी के एतमाद एतबार, फिर आपको क्या लगता है, अगर आप अल्लान ये कहें कि मुझे किसी पे एतमाद नहीं रहा, तो इसका क्या ये मतलब नहीं कि किसी को भी आप पे एतमाद नहीं रहा। क्या ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ मैं किसी पर ट्रस्ट ना करूँ लेकिन मेरी बातें सारे माने, कहीं ऐसा तो नहीं है, हम सेल्फिश तो नहीं हो जाते इमोशंस में भी। आई बिलीव इट्स बींग सेल्फिश। मेरा ये अपना एक थीसिस है, आप मुझे इसके बारे में बताएं। मरीना बिलाल ने वेलकम किया, थैंक यू वेरी मच। रेहान खान ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। एतबार फकत एहसास है, बिल्कुल सही कहा तूबा नवाज, मुझे भी मोहब्बत हो गई है। अच्छा, ये तूबा भी हमारी इंटर्न है, अल्लाह खैर करे, आपको किससे मोहब्बत हो गई। आज अरहम बट, क्या बात है अरहम, क्या हाल है, मोहब्बत हर रोज होती है सर जी, क्या बात है। छा गया लड़के, मुझे आग मिली ना जरा इसमें बात करते हैं, ठीक है। रेहान खान, जो आपको हर रोज हो रही है मोहब्बत नहीं कमी है। किंजा आइए, हमारी प्रोड्यूसर है, कैसी है मैडम, आप खैरियत से हैं, ठीक है जी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, माजबीन कह रही है आई डोंट ट्रस्ट ऑन माय डिसीजंस, है ना, यू डोंट ट्रस्ट योर डिसीजंस। फरा अफजाल, एतमाद तो वक्त के साथ ही आता है इंसानों पर, लेकिन हर एक को ये सआदत नहीं बख्शनी चाहिए, पहले परखना चाहिए, फिर भरोसा करना चाहिए, और अगर कोई ना निभा पाए तो जाने दीजिए, गलती आपकी ही होती है, आपने ठीक परखा नहीं। हाँ, खुद को काबिल एतबार ज़रूर बनाएं ताकि कोई आपसे शिकवा ना करे। मेरा यही थोड़ा एतराज़ रहता है कि हम जब किसी पे किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हैं, कुछ ऐसी हो, एक होता वर्स्ट सिचुएशन का बन जाना, मोहब्बत के दावे किए या कुछ भी ऐसा हुआ और उसके बाद को बंदा निकलने को जाए, दैट इज़ समथिंग एल्स। और एक होता है ऐसी सिचुएशन बन जाना जहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, वहाँ पे आप तो चाहते हैं आप पे एतमाद किया जाए, आप पे एतबार किया जाए, आपकी सारी बातें मान ली जाएँ, मगर आप
किसी की मानने को तैयार नहीं होता।

0: ये ज्यादती है, ये सेल्फिशनेस है, मैं इसका थोड़ा कायल नहीं हूँ। हेलो,
1: वालेकुम
0: अस्सलाम अंसारी साहब, कैसे हैं आप?
1: मौला का करम है जनाब अली, नसीहत हमारे यहाँ नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी हमारा देख ले कि हमें कितना आप पे ट्रस्ट है, कितनी मोहब्बत है, आई लव यू जानी मेरे
0: सर। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
1: अल्लाह अल्लाह हाफिज रखे आपको। अच्छा जरा थोड़ा सा म्यूजिक कम कीजिएगा, मुझे जरा कुछ बात करनी थी आपसे।
0: जी करें जी।
1: अच्छा जो मुझे खुद साख्ता जिया भाई से जो मेरी यानी जो भी मुझे कुछ था, मैंने उनसे उनके एक प्रोग्राम में हाथ जोड़ के माफी मांग ली थी मैंने।
0: ठीक है,
1: ठीक है सर, क्योंकि अल्लाह उनको फैज दे, क्योंकि जो भी मेरी तरफ से गलत फहमी थी वो मैंने अपने ऊपर ली, मैंने बोला नहीं आप मुझे माफ कर।
0: बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक।
1: नहीं अल्लाह अल्लाह खुश रखे यार, अल्लाह फैज दे उस बेचारे को यार, क्योंकि वो बिला वजह यानी कुछ भी नहीं, गलत फहमी थी, चले तो उसको छोड़े आप, अल्लाह खुश रखे। अच्छा अब आप बात कर रहे हैं एतमाद की यार, एतमाद मुझे बताएं, ये तो मोबाइल अब शुरू हुआ है ना, पहले तो जब लड़का लड़की की शादी होती थी एक दूसरे को देखा भी नहीं होता था यार,
0: वो तो घर वालों पे एतमाद नहीं था होता, मजबूरी होती थी। ऐसे नहीं होता, आप बात कहाँ से कहाँ क्लिक कर रहे, मेरे अब्बा मुझे बताया करते थे, मैं कभी देखा था, कहते मैंने किधर देखना, मेरी अम्मा ने देखा था, मेरी दादी मुझे बताती है, मुझे तो ये नहीं पता था मेरे शादी किसके साथ हो रही है, जब मैं गई हूँ तो मुझे पता चला अच्छा ये है बंदा मेरा, तो वो मैंने देखा मेरी दादी का, मेरे जो दादा थे उनका एज डिफरेंस इट वॉज लाइक 25 ईयर्स, 25 साल का फर्क था।
1: नहीं मेरा और आपके भाभी आंटी जो भी समझे उनका 15 साल का फर्क
0: आपसे।
1: हाँ मेरा, हाँ तो माशाल्लाह उन्होंने मुझे देखा हुआ था,
0: और आपने इतने दुख दिए ना, वो चली गई आप कुछ
1: नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं, मौला का करम है, सब करे मेरे मालिक का,
0: कभी बंदा मानता है ऐसे
1: आए तो यार ऊपर वाले की तरफ से आएगी तो आप रोक लोगे
0: आपको कहना चाहिए था पहले मैं जाऊंगा, मुझे लेके जाओ मैं अकेला रहना पसंद नहीं करता, आपने कहा नहीं मैं अकेला रहूंगा, मैंने जा जाके ना अपने ऑफिस से भिंडियां खानी है।
1: आप यकीन करना डॉक्टर, उसके जाने के बाद ये अभी 5 नवंबर को पहला साल होगा।
0: अच्छा
1: समझे, और उसमें वो हो रहा है कि आजकल के नए कपड़े बदल के जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए,
0: क्यों वो ऑफिस वाली चली गई,
1: वो सब तो शहर छोड़ गया, बाहर जाऊं किसके लिए। आप यकीन करना 2 ईदें गुजर गई हैं वही पुराने कपड़ों में, 5 सलवार कमीज को बिल्कुल नए जोड़े रखे हैं सिले हुए, 1 पैंट शर्ट बिल्कुल नई 0 मीटर पड़ी हुई है,
0: मुझे भेज दे, आपने तो पहननी नहीं।
1: यार तो साइज का अंदाजा नहीं होगा ना, मेरी हाइट तो 5 फीट है,
0: मुझे भेज दे आपकी मेहरबानी।
1: चले चले मैं आपको भेजा। अच्छा जिस तरह आज आपकी आंखें नहीं खुल रही है ना, मैं आपके लिए कुछ शेर रखे हुए वो सुन लीजिएगा, और फिर ये जो आप कह रहे हैं किराएदार, चलो किराएदार पे भी आ जाओ, वो माशाल्लाह हमारे मोहल्ले में आई एक मोहतरमा।
0: आए आए अभी आप कहते हैं जाऊं किसके लिए, अभी आई है मोहतरमा, ताड़ के पूरा रखा हुआ आपने, माफी आप भी नहीं देते।
1: अभी नहीं, अभी नहीं, वो स्कूल के जमाने की बता रहा हूँ मैं आपको।
0: हाँ नहीं अब बात घुमा ले आप, अच्छा है घुमा ले बात को,
1: स्कूल के जमाने की बता रहा हूँ, तो उसमें मकसद ये, अच्छा उसमें क्या सिर्फ वो भी चश्मा लगाती थी और मैं भी नजर का चश्मा लगाता हूँ, ठीक है हम ये समझ रहे सेट हो जाइए हमारे। नहीं भाई वो कुछ नहीं, हमने भाई पर्चा भेज दिया उसको, पर्चे का जवाब कोई नहीं, एक पर्चा भेज दिया, 2 पर्चे भेज दिए, 3रा पर्चा हमारा पकड़ा गया, उसकी अम्मा पर्चा लेके आ गई हमारे घर पे, मेरे अम्मा जी सेम बना रहे जो कपड़े धुले डॉग खुदा जी कपड़े। अच्छा? मैंने उस दिन तो मैंने दुआ कर ली कि नहीं भाई ये पर्चे वाली मोहब्बत नहीं करनी भाई
0: ये भी ठीक है जी।
1: अच्छा अब आपको शेयर से जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपकी आंखें खुल जाएंगी
0: जी, सुनाइए।
1: ठीक है, पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती, पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती, हर कली महव ख्वाब हो जाती।
0: हाय हाय हाय हाय, रात बारह के बाद
1: तुमने डाली ना मैं फिसा नजरें, वरना शबनम शराब हो जाती।
0: हाय हाय
1: हाय, अब इसका जवाब सुने, जवाब सुने,
0: सुनाइए।
1: वो बोलना है कि पत्ती पत्ती गुलाब क्या होती,
0: अच्छा जी,
1: हर कली महव ख्वाब क्या होती, जिसने लाखों हसीन देखे हो उसकी नीयत खराब क्या होती।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, छा गए सर, आप छा गए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
1: भाई की तरफ जाए तो मित्र से पूछ लीजिएगा और मैं हर नमाज में उनके लिए दुआ करता हूँ।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
1: और जो भी,
0: हेलो, लाइन कट गई, गलत बटन दब गया मेरे से। हाय हाय, आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा, इतना मानूस ना हो खिलवत गम से अपनी, तू कभी खुद को भी देखेगा तो डर जाएगा। सही कह रहे हैं। आसिफ लाहौर से, आरजे साहब क्या हाल है। मैं ठीक हूँ आसिफ साहब, आप खैरियत से हैं। गुलाम अली की गजल, इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। वाह वाह वाह वाह, अच्छा इतना क्यों टूट गए वैसे, आप बताएं मुझे। रकीब बलोच हैं भाई जान, सत्ते नसीब ते बावड़ा लंबी जुदाइयां। यार ये मुश्किल सा है, अब मैं किधर से ढूंढूं ये गाना, मैं कोशिश करता हूँ, अगर मिल गया जरूर चलाएंगे। जुल्फिकार अली फ्रॉम लाहौर कैंट, पाकिस्तान आर्मी। सर कैसे हैं आप, उधर ड्यूटी पे तो नहीं खड़े हुए। यार मैं अक्सर गुजरता हूँ, डर ही लगा रहता, तुम रोक ही ना लो। कहते हैं प्यार और एतबार जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं। देखा वहाँ पे भी यही खौफ आ रहा होता है, इन्होंने गड्डी मेरी साइड से लवा लेनी है, इन्होंने लंगर नहीं देता। और आपने भी गाड़ी वाली ही मिसाल दी है, प्यार और एतबार जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं, इनमें से एक भी निकल जाए तो जिंदगी की गाड़ी उलट जाती है। आई लाइक योर प्रोग्राम, काइंडली नंबर आराम से बताएं। सर 042-111-0111-0101, 042-111-0101-0111-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101 मिलाना है, करें ना कॉल जुल्फिकार भाई, आप तो हमारे लिए वैसे काबिल एहतराम है। नवाल है, एतबार किया था उस पर जिसने मेरे दिल को एक टॉय समझा और मुझे छोड़कर चला गया। ओए होए होए, क्या बात है, कौन था वो, इतना कारीगर दुकानदार। सर एतमाद से बढ़कर कुछ नहीं, एतमाद इंसान के खुद अंदर की सच्चाई का नाम है। ये फलसफाना सी बात आपने कर दी, शायराना सी बात कर दी, ये कैसी बात कर दी, कहाँ से लेके आए हैं आप ये बात, इसकी थोड़ी वजाहत करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हमीद गुल साहब, कैसे हैं आप सर? खैरियत से?
2: आप ठीक है सर? खैरियत से हैं
0: जी, मेहरबानी सर।
2: वैसे रात का ये पैर अच्छा है आपके लिए, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी।
0: अभी मुझे भी समझ नहीं आ रही अभी मैं भी थोड़ा यूज्ड टू नहीं हूँ।
2: हो जाएंगे
0: जनाब, बताइए सर। हजूर,
2: वो अकबर मासूम ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, आपके लिए नहीं ना, आपके सुनने वालों के लिए नहीं होगी
0: जी।
2: ये भी एक पहलू है, देखें उनका एक शेर मेरे जहन में उस वक्त आया
0: जी जी,
2: कि बहुत दिनों से यही सोच कर परेशान हूँ। आप दूसरे मिसरे पे गौर कीजिएगा
0: जी जी सर,
2: कि बहुत दिनों से यही सोच कर परेशान हूँ कि तू भी मेरे गुमा ही का एतबार
0: नहीं। आहा, तू भी मेरे गुमा ही का एतबार। अच्छा
2: ये हो रहा है, ये हो रहा है।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
2: हम इसमें उलझे हुए हैं,
0: बिल्कुल ठीक।
2: गुमा का एतबार है ना आपका, तो अब इसको गड़बड़ हो जाता है कहीं ना कहीं।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, होता गुमान से ही है। क्योंकि जब जब जब जब बिखर जाए ना आप, फिर आपको लगता है मैं तो गुमान ही करता रह गया, ये तो कुछ और ही बात बन गई।
2: वो शायर हजरात ने कोई बात छोड़ी नहीं होती है, वरना एतबार के एक और पहलू दिखाएं आपको।
0: जी जी बताएं बताएं।
2: वो मेरा एक पंजाबी का एक बड़ी मुख्तसर सी नज़्म है चार लाइनों की।
0: जी बताइए।
2: ये वैसे इंटरटेन करने के लिए आपके प्रोग्राम के लिए के मेरे घर के पिछवाड़े एक हसीना रहती है। अभी किराएदारों की बात कर रहे थे।
0: जी जी।
2: लेकिन ये किराएदार नहीं है।
0: अच्छा ठीक है। अच्छी बात की आपने। लेकिन
2: मेरे घर के पिछवाड़े, आप इस ख्याल को देखें, मैं किसके ऐसी खूबसूरती से मैंने कोशिश किया इसको बांधने की, मेरे घर के, बड़ा बेहुदा सा ख्याल है लेकिन है
0: हमारा,
2: कि मेरे घर के पिछवाड़े एक हसीना रहती है, मैं उसको पड़ोसी कहता हूँ, वो मुझको पड़ोसन कहती है।
0: अच्छा अच्छा।
2: मेरे घर के पिछवाड़े
0: बिल्कुल
2: एक हसीना रहती है, मैं उसको पड़ोसी कहता हूँ, वो मुझको पड़ोसन कहती है। और मिसरा देखें कि कर लेता हूँ मैं भी स्नान उसकी गहरी आंखों में,
0: कर लेता हूँ मैं भी स्नान उसकी गहरी आंखों में।
2: देखें मावरा बांधा कि कर लेता हूँ मैं भी स्नान उसकी गहरी आंखों में, उनके हाँ तो वैसे भी गंगा उल्टी बहती है।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। I like it. I like it.
2: आज ये कि जहाँ गंगा उल्टी बह रही हो ना, इतबार मानी, वरना इतबार तो आ ही जाता है,
0: वरना
2: ये बात सच। नहीं वो गाना भी है ना, इतबार आ ही जाता। तो मैं आपको एक बात बताऊं,
0: ये
2: अभी एक सीरियस मूड में, आप ना चाहते हुए भी इतबार करना पड़ता है आप।
0: अच्छी बात की है सर आपने।
2: ये दुनियादारी है।
0: बिल्कुल ठीक।
2: और दुनिया, ये दुनियादारी है सर। और दुनियादारी ना भी हो, दुनियादारी ना भी हो, जो दुनियादार नहीं होते हैं ना सर
0: जी,
2: वो भी बड़ा एतबार करते,
0: वो भी बड़ा एतबार करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे।
2: वो इसलिए करते हैं कि वो उसका एतबार नहीं टूटने देते, वो भरोसा जो होता है, वो जो उसके पास आता है, हालांकि उन्हें सब पता होता है, लेकिन वो बड़े लोग होते हैं।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। बहुत अच्छा लगा आज आपसे भी बात हुई मेरी।
2: होगी रात के इस प्यार में,
0: रात के इस प्यार।
2: अल्लाह पाक वो ज़ियानजम साहब को सेहत अता फरमाए।
0: आमीन।
2: उनकी तरफ से अल्लाह जल्द सेहत उनको अता फरमाए और मुकम्मल शफा अता।
0: बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।
2: थैंक यू।
0: बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अमित गुल साहब तो बड़ी अच्छी बात की, बड़ा मजा आया सुन के जी। और अच्छा एतबार वो खामोश यकीन है जिसमें इंसान को बार बार यकीन दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छा उज़्मी खान, वेरी वेल सेड, मज़ेदार बात है, मज़ा आया पढ़ के मुझे। सईद मुनीब अली, हमने लोगों को खोना नहीं सीखा, हमने बस ये सीख लिया है कि हर शख्स को पाना ज़रूरी नहीं होता। वाह वाह यार, कहाँ से लेके आती हैं बातें आप ही सरताश। इस दुनिया में इंसानों के अलावा हर चीज़ वैसी है जैसी दिखाई देती है। अच्छा है, वेरी नाइस। इंसान भी वैसे ही हैं, यकीन करें, चश्मा उतार के देखें। सलामत तो ऑल ने सर, सलामत जी, आप भी सलामत रहे जी। हेलो, अस्सलाम
3: वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी,
3: क्या हाल है
0: जी? फाइन, थैंक यू वेरी मच।
3: मैं ज़ैनब फ्रॉम लाहौर।
0: कौन?
3: ज़ैनब।
0: ज़ैनब फ्रॉम लाहौर, क्या हाल है ज़ैनब?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं।
0: मैं सुना तो रहा हूँ, मैं ही तो सुनाई जा रहा हूँ।
3: मैं आपका टॉपिक है इतवार
0: जी, बिल्कुल।
3: तो मैं इतवार के अलावे हवाले से बात करूंगी कि जो इतवार है, जिनके इतवार किया जाता है, वो हमेशा भरोसा तोड़ देते हैं। तो हमें ज्यादा अल्लाह ताला पे ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं, ये समझते नहीं, इस बात को बहुत छोटी लेते हैं, समझते हैं। तो अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए, तो जो पिछले आपका जो शो था उस पे आपका टॉपिक था वो सॉरी
0: मैं भी भूल गया,
3: पिछला टॉपिक था आपका
0: क्या राज राज राज बताना चाहिए कि नहीं, ये तो पुरानी बात हो गई।
3: नहीं मैं मुख्तसर से बात करूंगी।
0: हाँ हाँ आप करो करो करो,
3: आप राज किसी और से ना शेयर करो, अपने माँ बाप से करो जो हमेशा आपका राज छुपा कर रखते हैं।
0: माँ बाप को टबी बड़ी लगाते हैं, माँ बाप से नहीं शेयर किया जा सकता नहीं किया जा सकता, कैसे करे जी, माँ बाप ने तो फेंटी बड़ी लगानी है, बहुत सारे ऐसे राज है, अगर मैं अपने अब्बा को बताता हूँ तो कुट कुट के मुझे कुटना था बहुत ज्यादा।
3: तो फिर अगर ये बात सोचेंगे तो फिर ये बात गलत हो सकती है कि माँ का दिल मोम होता है।
0: क्या होता है?
3: मोम होता है।
0: नहीं मोम तो हो जाता है लेकिन बच्चा रोएगा तो पहले मारेंगी ना फिर बाद में मोम होगा।
3: नहीं हमें उनको अगर आप अपने माँ बाप से नहीं कर सकते तो अपनी बड़ी बहन से जरूर करना चाहिए।
0: ओ नहीं वो भी जाके अम्मी को बता देती थी, बड़ी मार पड़ती थी मुझे।
3: ये जो हम लोग मर्द हजरात में तो ऐसा नहीं होता, वो भैया को बता भी देते हैं, कई दफा नहीं बताते, लेकिन जो अपनी बड़ी बहन से भी शेयर करते हैं वो बहुत वो राज छुपा के भी रखते, अगर बता भी देती है तो जो वालदैन होते हैं वो कोई से कोई रास्ता निकालते हैं।
0: अच्छा ठीक हो गया, आप किसको बताती हो?
3: मैं तो अपनी बड़ी बहन को भी बताती हूँ।
0: कौन से राज बताएं मुझे भी बताओ एक एक बता दो, चलो मैं किसी को नहीं बताता, बताओ।
3: जो सुनने वाले हैं,
0: सुनने वालों को छोड़ो तुम वो नहीं सुन रहे, उनके कान बंद है, बताओ।
3: नहीं मतलब बहुत ज्यादा राज होते हैं।
0: मसलन बहन को मतलब क्या बताया मुझे, को बंदा अच्छा लगता है?
3: हाँ।
0: अच्छा फिर क्या कहा उसने?
3: वो मशवरा देती है अच्छा, कोई बुरा नहीं।
0: फिर कब शादी कर रही हो?
3: अल्लाह माफ करे अभी तो 17 साल उम्र है।
0: तो बंदा अच्छा लगता है तो शादी तो करनी है ना?
3: जी अभी उम्र छोटी है।
0: चलो जब शादी करो फिर बुलाना, ठीक है?
3: जरूर। अच्छा तो वो रिंचा कहती
0: जी अच्छा जी मोहम्मद रेहान मिर्जा सर बहुत शुक्रिया, आप मुझे हमेशा हौसला देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, यह बंदा गोली देता है हौसला देता और क्या ही कर सकते हैं। एतबार एक पेश कीमत एहसास है जिसका कोई मोल नहीं, इससे खूबसूरत एहसास भी शायद कोई हो, एतबार ढारस है सुकून का सबब है, जिस पर किया जाए उसे ये समझना चाहिए कि वो भी खुशकिस्मत है और फिर इस उसे मान रखना चाहिए। वैसे ये भी होता है कभी कभार नाकाम आशिकों के साथ, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम उम्र कयामत का इंतज़ार किया। बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, अब इस जरताश बेवफाओं से बिछड़ के जो पलट कर देखे आग उस शख्स की आंखों को लगा दी जाए। वाह वाह बड़े जालिम लोग हो तुम सारी अभी यहाँ पे गाना लगाता हूँ जी मैं, जारा है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम आर्थोडॉक्स। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ आप बताएं। कहती हैं तेरी खातर अपनी अना को मिटाना भी मंजूर है, तू रूठे तो तेरे आगे झुक जाना भी मंजूर है। वाह वाह बहुत अच्छा है जारा बहुत अच्छा है, क्या बात है। राना नज़ाकत नाज़ फ्रॉम लाहौर, साथ वहाँ तक मतलब जहाँ तक, अच्छा क्या बात है। गाना सुनते हैं और इसके बाद वापस आते हैं। हाय वक्त हो चुका है 1:56 पूछ दी तारे चारों पासे बातों बातों में बिछड़ने का इशारा करके, खुद भी रोया वो बहुत हमसे किनारा करके, बातों बातों में बिछड़ने का इशारा करके, खुद भी रोया वो बात हमसे किनारा करके। सोचता रहता हूं तन्हाई में अंजामे खुलूस, फिर उसी जुर्म में मोहब्बत को दोबारा करके
4: मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे चल रहंदे रहंदे चल रहंदे मेरे दिल दा हाल मैनू
0: जगमगा दी है तेरे शहर की गलियां मैंने अपने हर एक अश्क को पलकों पे सितारा करके देख लेते हैं चलो हौसला अपने दिल का और कुछ रोज तेरे साथ गुजारा करके एक ही शहर में रहना है मगर मिलना नहीं देखते हैं ये अजियत भी गवारा करके।

0: हेलो जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 1:58 और आज 7 अक्टूबर, बस आपका मेरा साथ यहीं पे मुकम्मल होता है। जाते जाते ज़रा कॉल लेते हैं एक दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नीला जी, आप खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, वेलकम है आपको इस शॉट में भी।
0: बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
1: अच्छा लगा क्योंकि जब आप शुरू में आए तो इसी तरह की टाइमिंग होती थी तो पुरसकून सा एक तहर होता है
0: ना। हाँ जी,
1: अच्छी गुफ्तगू हो जाती है।
0: सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं।
1: आपने जैसे ही सॉन्ग प्ले किया ना, मैं आपको कॉल मिला रही थी कि प्लीज वो लगाएं, एतबार आ ही जाएगा।
0: हाँ, वो देख मैं लगा दिया मैंने
1: और एंड उसी वक्त चल गया ना। डॉक्टर से पूछना चाहूंगी, क्या कैसे हैं?
0: जहाँ ठीक है, दुआ करें बस अल्लाह उनकी सेहत के लिए दुआ करें
1: इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाया।
0: आमीन।
1: दुआ में तो वो याद है, हर वक्त हम याद करते हैं, उन्हें मिस करते हैं, उनकी आवाज को अल्लाह ने सलामत रखे। और टॉपिक आपने बड़ा अच्छा स्टार्टिंग हुई, एतबार रिश्तों का वो एक खामोश सा वो ताल्लुक नहीं बन जाता, जैसे कि एक इमारत उन पे कायम होती, उस पे एतबार पे अगर वो ना हो तो खोखली इमारत हो।
0: सही कह रही हैं आप,
1: ताल्लुक सा एक ऐसा होता है जिसमें एक एतबार से सारी शुरुआत, सारे एहसास, जज्बात वो एतबार पे ही चलते जाते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
1: और अगर वो जैसे कि कांच की तरह कहते हैं ना, टूट भी जाता तो फिर इमारत उसी तरह ढह जाएगी ना।
0: हाँ जी,
1: क्योंकि मजबूती उसकी उसे एतबार से,
0: ठीक है,
1: एतबार होना जरूरी है। और जो लोग कहते हैं कि एतबार एक दफा टूट गया तो दोबारा उसको पॉलिश करने या उसको आजमाने की जरूरत नहीं है, जो एक दफा जिसको आजमा लिया या तो मेरा ख्याल है ट्राई करने में हर्ज नहीं होता, वक्त बहुत बड़ा मरहम है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं,
1: तो इंतजार कर लेता इंसान कभी एतबार करने का मौका भी मिल जाता है।
0: बिल्कुल बजा फरमाया आप,
1: और हमारी मजबूरी और जरूरत है एतबार करना।
0: बिल्कुल 110% यू आर राइट, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। थैंक यू वेरी मच जी। 2 बज गए मैडम,
1: आपने इतनी कॉफी पी है फिर थोड़ी खानी।
0: मैंने कॉफी से मुझे नींद को मेरी डिस्टर्ब नहीं होती, यकीन करें मैं कॉफी पी के सो जाता हूँ।
1: चलो फिर जाओ तो सो जाओ।
0: थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह अच्छा जाते हुए बस यही कहूँगा, एतबार के बारे में बहुत सारी तारीफें कर सकते हैं लेकिन हर किसी की डेफिनेशन अपनी होती है। एतबार, एतबार, एतमाद, ट्रस्ट, इट इज एवरीथिंग अबाउट यू। इसके बारे में कोई भी बात करे, हर किसी का पैमाना अपना अलग होता, हर कोई किसी को किसी अंदाज से जानता है। किसी को पीला रंग पसंद है तो उसे पीले रंग वाले ही लोग अच्छे लगेंगे, जिसको लाल पसंद है उसे लाल अच्छे लगेंगे, जिसे हंसना खेलना पसंद है उसे हंसने खेलने वाले, जिसे उदासी पसंद है उसे उसी मिजाज के लोग, एतबार उन्हीं पे करता इंसान। सो ये नहीं कहा जा सकता कि मुझे जिस शख्स पे एतबार या एतमाद या ट्रस्ट है वो सारे ही उस पर कर रहे हैं, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं जिस तरह का किसी एक के साथ हूँ उस तरह का सबके साथ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आप जिस तरह के किसी एक के साथ हैं उस तरह के आप किसी और के साथ नहीं हो सकते। तो हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक आपके जज्बात से होता है, उसकी कैफियत, उसकी हालत इजहार हर शख्स के साथ मुख्तलिफ हुआ करती है। लेकिन एक चीज़ तय है कि हर वो शख्स जिसकी मौजूदगी में आप सेफ्टी को, तहफ्फुज़ को महसूस करें, एतबार की बड़ी वाज़ह निशानी है। हाँ, जहाँ टूट जाए वहाँ क्या करना है ये आपका फैसला है, दोबारा मौका देना है नहीं देना आपका फैसला है, उसके साथ चलना है नहीं चलना ये आपका फैसला है। लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर दिस, किसी की बेवफाई को, किसी के धोखे को, किसी की गलतियों को, किसी के दगा देने को اپنی ذات کے اوپر اپلائی مت کریں, اپنی ذات کو اس کی سزا مت دیں. دیٹ واز ہز مسٹیک, دیٹ واز ہر مسٹیک, آپ کی نہیں. آپ پہ لازم ہے کہ محبت کی ہے, اعتبار کیا ہے تو کیے جائیے. بس, اور وقت ملے تو اتنا سا بس کریں گے, اپنے اگلے قدم کو سوچ سمجھ کے رکھیں. اسی کے ساتھ اجازت دیں, اور جاتے جاتے کہوں گا میں عشق پہ اب ایک کتاب لکھوں گا, گزرے جو مجھ پہ سارے عذاب لکھوں گا. ابتدا میں جو تھا کبھی مقام میرا, ابتدا میں جو تھا کبھی مقام میرا, اس میں خود کو میں نواب لکھوں گا. میں چھوڑ جانے کی وجہ بھی بتاؤں گا سب کو, کمی مجھ میں تھی, میں خود کو خراب لکھوں گا. میرے چہرے پہ یہ مفلسی ازل سے تو نہ تھی, کتنا حسن تھا مجھ پہ وہ سارا شباب لکھوں گا. میں عشق پہ اب ایک کتاب لکھوں گا, گزرے جو مجھ پہ سارے عذاب لکھوں گا. دس از آر دا ڈاگ سائننگ آف, کل ملتے ہیں 10 سے 12.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

कह दो कि लोगों तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं अपनी जगह अमल किए जाता हूँ। अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि आखिरत में बहिश्त किसका घर होगा। कुछ शक नहीं कि मुशरिक निजात नहीं पाने के।